एफ एम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की चौथी तिथि, तदनुसार दिनांक 25 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं और अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं शेख सादी के विचार।
2: शेख सादी सन 1193 ईस्वी में ईरान में शिराज नामक जगह पर पैदा हुए थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना वतन छोड़ा और उसके बाद लगभग 40 साल तक सारी दुनिया घूमते रहे। उन्होंने हर मुल्क में धर्म, समाज और वहाँ की

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा

0: आकृति को नजदीक से देखा और शहद की मक्खी की तरह रंग रंग के फूलों से शहद जमा करते रहे। उन्होंने जो कुछ देखा और महसूस किया उसे गुलिस्तां और बोस्तां नामक पुस्तकों में लिखा। एक बार एक बादशाह एक अजमी गुलाम के साथ कश्ती में बैठा था। उस गुलाम ने इससे पहले कभी दरिया न देखा था और न ही कभी कश्ती पर सफर करने की तकलीफ उठाई थी। कश्ती जैसे ही चली उसने बेहद रोना धोना शुरू कर दिया और उसका बदन कांपने लगा। उस कारण बादशाह परेशान हो उठे। उसके संभलने की जब कोई सूरत न मालूम हो सकी तो उसी कश्ती में बैठे एक हकीम ने बादशाह से कहा, अगर हुक्म दीजिए तो मैं एक तरकीब से इसे चुप करा दूं। बादशाह ने कहा, किसी तरह अगर ये चुप हो जाए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर हकीम ने उस गुलाम को दरिया में डाल दिया। जब उस गुलाम ने कई बार गोते खाए तो फिर उसे पकड़कर कश्ती में बैठा दिया गया। वो ऊपर आकर एक कोने में चुपचाप बैठ गया और रोना धोना भी उसने बंद कर दिया। बादशाह को ये देखकर बेहद ताज्जुब हुआ और हकीम से पूछा कि ये क्या हिकमत थी। हकीम ने जवाब दिया, बंदा परवर, इस गुलाम ने पहले से डूबने की तकलीफ नहीं देखी थी और कश्ती में रहकर सलामत रहने की कद्र नहीं जानता था, क्योंकि आराम की कद्र वही जानता है जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए। एक आदमी अपने बेटों को नसीहत कर रहा था कि ऐ मेरे जिगर के टुकड़ों, कोई हुनर सीख लो, क्योंकि मुल्क और दुनिया की दौलत भरोसा करने के काबिल नहीं है। ये चांदी और सोना हर वक्त खतरे में है। ये ऐसी चीजें हैं जिसे चोर एक ही बार चुरा ले जाते हैं या खुद इसका मालिक थोड़ा थोड़ा करके खा जाता है, मगर हुनर एक उबलने वाला चश्मा है और जिंदगी के साथ रहने वाली दौलत है। अगर हुनर वाला दौलतमंद न रहे तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि हुनर अपनी जगह पर खुद ही दौलत है। हुनरमंद जहां कहीं जाएगा उसकी कद्र होगी और ऊंची जगह पर बैठेगा। बेहुनर भीख मांगेगा और तकलीफें उठाएगा। बेहुनर लोग हुनरमंदों को नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह जैसे बाजारी कुत्ते शिकारी कुत्ते को देखकर भौंकते हैं और सामने नहीं आ सकते। यानी एक कमीना आदमी जब हुनर में किसी की बराबरी नहीं कर सकता तो शैतानियत से उसकी मुस्तकी निकलता है। जो अक्लमंद जाहिलों के साथ उलझता है उसको ये सोच लेना चाहिए कि उसे इज्जत नहीं मिल सकती, और अगर कोई जाहिल जबान दराजी करके किसी अक्लमंद को चुप कर दे तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि वो जाहिल आदमी एक ऐसा पत्थर है जो मूर्ति को तोड़ता है। खबरदार, तू हरगिज उस आदमी से दोस्ती न कर जो तेरे पास किसी फायदे के लिए आता है, क्योंकि जब वो किसी एक दिन तुझसे फायदा न पाएगा तो तेरे 200 ऐब गिन कर रख देगा। जिसने इल्म पढ़ा और अमल नहीं किया उसकी मिसाल ऐसी है कि हल चलाया और बीज नहीं डाला।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे शेख सादी के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

भोर की पहली किरण संग प्रभु का नाम जो लिया जाए, मन का हर अंधियारा पल में दूर हो जाए। नई सुबह हर पल ईश्वर का वरदान बने।

ईश्वर भक्ति में ऐसा सुख है जो शब्दों में नहीं समाता। ये वो मार्ग है जहाँ मन हर बंधन भूल जाता है। जो हृदय से प्रभु को अपना मान लेता है, उसका हर श्वास भक्ति बनकर ईश्वर तक पहुँच जाता है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। तेरी शरण में आए राम, अब तुम ही पालनहार। डगमग नैया जीवन की तू ही सच्चा पतवार। तेरे चरणों में मिलती है मन को शांति अपार। राम नाम का सहारा ही कर देता है हर भव सागर से पार।

कर्म वही जो धर्म और सत्य की राह दिखाए, जो अपने संग दूसरों के जीवन में भी उजियारा लाए। फल की चिंता छोड़ बस कर्म को पूजा मान ले, ईश्वर भी उसी पर कृपा बरसाए जो निष्ठा से कर्म निभाए।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सावनिया मन भाया तेरी सूरत सबसे न्यारी, तेरी मुरली की मधुर तान लगे जग से प्यारी। एक बार जो तेरे प्रेम के रंग में रंग जाता है, फिर उसका मन बस श्याम नाम ही गुनगुनाता है।

इसी भजन के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज इस कार्यक्रम में आपने हरिओम शरण व नंदिनी शरण, अनुपमा देश पांडे, सोनू निगम, अनूप जलोटा और जगजीत सिंह के गाए भजन सुने।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज की बात। आज की बात सुनने वालों को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। आज है 25 जून और आइए जानते हैं इतिहास में

आज के दिन की खासियत। श्रोताओं, भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। ये दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। श्रोताओं, सरकार द्वारा इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को आपातकाल के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के हुए दमन के बारे में जागरूक करना है। 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करके देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। इस दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। श्रोताओं, ये दिन उन लोगों के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने आपातकाल के दौरान अमानवीय यातनाएं सही और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। श्रोताओं, भारत के आखिरी वायसराय और स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म 25 जून 1900 को विंडसर, इंग्लैंड में हुआ था। इनका मूल नाम लुई फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस था। इन्होंने देसी राजाओं को अपनी रियासतों को भारत संघ अथवा पाकिस्तान में विलयन करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। श्रोताओं, माउंटबेटन 1950 से 1952 ईस्वी तक चौथे समुद्र अधिपति, 1952 से 1954 ईस्वी में मध्य सागर बेड़े के कमांडर इन चीफ और 1955 से 1959 ईस्वी में पहले सी लॉर्ड थे। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान के रूप में विभाजन करके ब्रिटिश हाथों से भारतीय हाथों में सत्ता हस्तांतरण के कार्य में भारी युक्ति कौशल, चुस्ती तथा राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया था। 27 अगस्त 1979 को लॉर्ड माउंटबेटन का निधन हो गया। श्रोताओं, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को अंबाला में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश की चौथी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के संविधान में मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रोताओं, सुचेता कृपलानी इन्हीं में से एक थी। 1948 से 1960 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव रही। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास की प्राध्यापिका भी रही। श्रोताओं, स्वतंत्रता आंदोलन में श्रीमती सुचेता कृपलानी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। 1 दिसंबर 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। श्रोताओं, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ था। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। श्रोताओं, संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण ये ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तलत महमूद तथा लता मंगेशकर ने इनसे कई यादगार गजलें गवाई जिनमें आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे जैसे कि शामिल है। श्रोताओं, मदन मोहन 1950, 1960 और 1970 के दशक में बॉलीवुड फिल्म संगीत के ख्याति प्राप्त निर्देशक थे। अपनी मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं के दिल में खास जगह बना लेने वाले मदन मोहन 14 जुलाई 1975 को इस दुनिया से जुदा हो गए। श्रोताओं, भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण बने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह बेहद महत्वाकांक्षी होने के अतिरिक्त कुटिल राजनीतिज्ञ भी कहे जाते थे। 27 नवंबर 2008 को विश्वनाथ प्रताप सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम विविधा सुनने वालों को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह सुबह जब हम अपने घरों में चाय की चुस्की लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं या अपने बच्चों को नए नए खिलौने लाकर देते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है, जो गाड़ियां हम चला रहे हैं, जो मोबाइल फोन हमारे हाथों में हैं, या जो विदेशी चीज़ें हमारे घरों की शोभा बढ़ा रही हैं, वो हम तक पहुंचती कैसे हैं? श्रोताओं, दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्र के रास्ते जहाज़ों से होता है, और उन जहाज़ों को तूफानों के बीच लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ाते हैं हमारे नाविक। श्रोताओं, आज है 25 जून और आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय

राष्ट्रीय नाविक दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें समुद्र के उन गुमनाम नायकों को सलाम करने और उनका आभार जताने का मौका देता है। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं इस दिन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। श्रोताओं, इस दिन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। साल 2010 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में दुनिया भर के देशों ने महसूस किया कि सैनिक सरहदों की रक्षा करते हैं, किसान अन्न उगाते हैं, लेकिन ये नाविक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया चलाते हैं। इसी बात को सम्मान देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और अगले ही साल यानी 25 जून 2011 को पहली बार आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। तब से संयुक्त राष्ट्र हर साल 25 जून को इस दिन को मनाता आ रहा है, ताकि दुनिया को ये याद दिलाया जा सके कि वो वैश्विक व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन नाविकों का योगदान कितना अतुलनीय है। श्रोताओं, एक नाविक की जिंदगी पहाड़ से जितनी एडवेंचरस या रोमांचक लगती है, हकीकत में वो उतनी ही बड़ी और कड़े इम्तहानों से भरी होती है। जरा सोचिए, 6-6 या 8-8 महीने अपने परिवार से दूर, चारों तरफ सिर्फ नीले पानी के सिवा कुछ नहीं, ना कोई त्योहार अपनों के साथ, ना कोई सुख दुख साझा करने वाला। जब समुद्र में भयानक तूफान आते हैं, लहरें गगनचुंबी इमारतों जैसी ऊंची उठती हैं, तब एक छोटी सी लोहे की चादर पर ये नाविक अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े होते हैं। सिर्फ मौसम ही नहीं, कई बार समुद्री लुटेरों का खतरा और हफ्तों तक बिना नेटवर्क के रहना उनकी मानसिक स्थिति की कड़ी परीक्षा लेता है, लेकिन इसके बावजूद वे कभी पीछे नहीं हटते, ताकि हमारे और आपके घरों तक जरूरत का सामान बिना रुके पहुंचता रखे। श्रोताओं, हर साल इस दिन की एक विशेष थीम होती है। इस साल यानी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2026 की थीम है विश्व व्यापार का भार वहन करना, जोखिमों को वहन करना। ये थीम समुद्री परिवहन में नाविकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो जोखिम भरी और संघर्ष प्रभावित परिस्थितियों के बावजूद वैश्विक व्यापार को सुचारू रूप से चलाते हैं। श्रोताओं, ये नाविकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की बात करती है। श्रोताओं, आज का ये दिन हमसे ये मांग करता है कि हम इन नाविकों को केवल कर्मचारी न समझें, बल्कि उन्हें प्रमुख कार्यकर्ता का दर्जा दें। आज के इस डिजिटल दौर में, जहां हम एक पल भी बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते, हमें नाविकों के लिए बेहतर इंटरनेट सुविधाएं, जहाज़ों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आवाज़ उठानी होगी। श्रोताओं, हम भले ही समुद्र में जाकर उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता को व्यक्त कर ही सकते हैं, ताकि दूर समंदर में बैठा कोई नाविक जब रेडियो सुने तो उसे एहसास हो कि उसका देश, उसके लोग उसे भूले नहीं हैं। तो श्रोताओं, आज 25 जून को जब सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा है, आइए हम सब मिलकर उन लाखों नाविकों को सलाम करें जो लहरों से लड़कर दुनिया को जोड़ रहे हैं। चलते चलते ये खूबसूरत पंक्तियाँ हमारे नाविकों के लिए। किनारे बैठकर लहरों को देखना आसान होता है, जो तूफानों का रुख मोड़ दे वही सच्चा कप्तान होता है। सलाम है समंदर के उन जाबाज प्रहरियों को, जिनके हौसलों से हर मुश्किल सफर आसान होता है। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते

0: समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज अपराह्न 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। रात्रि 8:23 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्रीराम चरितमानस से 135वां प्रसंग। कुमाऊनी लोकगीत आप सुनते हैं लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर और शैलस्वर कार्यक्रम में शाम 5:05 पर। कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर आप सुनते हैं सुबह 11:30 पर। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दोपहर 2 बजे। प्रातः 7:50 पर आज आप सुनेंगे 16वीं एशियाई ताइक्वांडो

चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडल विजेता अखिलेश सिंह से भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे संजय जोशी। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिए का प्रातः 8:23 पर। मिले जुले गीत और गजलों का कार्यक्रम सबरंगों का सुबह 10:05 पर। सुगम संगीत दोपहर 1:15 पर। सबरस रात्रि 8 और पुनः सुगम संगीत सुनिएगा रात्रि 10। दोपहर 12:23 पर अर्पण कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा आपके घर की बगिया में क्या है। साथ ही सुनिएगा हमारे घर की बगिया से महकता हमारा स्वास्थ्य विषय पर श्रीमती खष्टी देवी माली अल्मोड़ा से मंजू बोरा की बातचीत। दोपहर 1:23 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1314वीं कड़ी। दोपहर 2:23 पर खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिएगा पर्वतीय क्षेत्रों में चारा घासों का उत्पादन विषय पर डॉक्टर अनिल सैनी की वार्ता। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा व्यावहारिक ज्ञान से संवरती राहें। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे संविधान हत्या दिवस और योगा और मेनोपॉज। भक्ति संगीत कार्यक्रम में कुछ भक्ति रचनाओं का आनंद लीजिएगा शाम 6:41 पर। शाम 7 किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ। वैज्ञानिक विधि से टमाटर उत्पादन और खेती बचाओ अभियान संरक्षण जुलाई व जल प्रबंधन। साथ ही सुनिएगा खरीफ फसलों एवं फल विपणन विषय पर तारा दत्त तिवारी से भेंटवार्ता। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा रूपक कहानी ऐसे बनती है। पुनः रूपक कल कल गोदावरी आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में सुबह 9:05 पर। सुरबहर कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम में सुबह 11:00। मेरी पसंद कार्यक्रम में दोपहर 12:00। एक ही फनकार कार्यक्रम में दोपहर 2:45 पर। सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम में अपराह्न 3:00 और इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से 135वां प्रसंग।

श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलकारी है, तथापि उचित तो ये था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी

भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।

श्री रामचरितमानस से अभी आप सुन रहे थे 135वां प्रसंग। गायक थे सुरेश वाडकर और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य अब पूरे देश का साझा संकल्प है। प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में 31 अगस्त तक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना अनिवार्य। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत चौधरी ने नैनीताल में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। और कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वर्ष 2047 तक

0: भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य अब पूरे देश का साझा संकल्प बन चुका है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब हम कर सकते हैं और हम करेंगे की भावना विकसित हुई है, जिसने विकास और सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। पहले जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का मुख्य ध्यान केवल बीमारियों के उपचार पर केंद्रित था, वहीं अब उपचार के साथ साथ बीमारी की रोकथाम आधारित स्वास्थ्य प्रणाली को भी प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र मंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में 124 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किया गया है। इसके अलावा अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 4 नए मेडिकल कॉलेज विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और मजबूत होगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को 31 अगस्त 2026 तक सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आधारित हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू कराने और मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उत्तराखंड की स्टेट मिशन निदेशक रीना जोशी ने बताया कि 1 सितंबर 2026 से केवल उन्हीं अनुबंधित अस्पतालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिया जाएगा, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा तक सभी आवश्यक मानकों का पालन कर लिया होगा। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा के भीतर आवश्यक मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पताल प्रोत्साहन राशि के पात्र नहीं होंगे। वित्त सचिव एवं उत्तरकाशी के प्रभारी सचिव डॉ. वी षणमुगम ने जिले में संचालित स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन और स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें जिले में संचालित विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने रिप परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन वे साइड अमेनिटीज का जायजा लिया और इसे ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय उद्यमिता तथा रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकासखंड डुंडा के बीरपुर स्थित सांची ग्राम संगठन द्वारा संचालित हिमालय हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं उलन ग्रोथ सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार हस्तशिल्प और ऊनी उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर सनमुगन ने चिनारसौड़ स्थित मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण कर मोटे अनाजों के प्रसंस्करण और विपणन गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मिलेट आधारित उत्पाद किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को स्वरोजगार, उद्यमिता विकास और स्थानीय उत्पादों के विपणन से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी समन्वयन के निर्देश दिए, ताकि जिले में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से डॉक्टर विनोद पोखरियाल।
0: उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने सभी जिलों को सतर्कता बरतने और सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने बताया कि जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों और यात्रियों की विभिन्न स्थानों पर नियमित जाँच की जा रही है। बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और चारधाम यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारू बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने आमजन से भी किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड

0: खंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत चौधरी ने नैनीताल में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उन्होंने दुग्ध उत्पादन, विपणन, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। श्री चौधरी ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विस्तार, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की प्रणाली को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मनरेगा की समीक्षा के दौरान ग्रामोद्योग मंत्री ने 1 जुलाई से कार्य शुरू होने से पहले सभी लंबित भुगतानों का निस्तारण करने तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ गुरु के नाम अभियान चलाने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने और किसी भी जरूरतमंद को योजना से वंचित न रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा कृषि भूमि संरक्षण के लिए घेरबाड़ योजना संचालित करने, महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन में सुधार लाने तथा लखपति दीदी योजना के तहत अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी बल दिया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के अनुसार स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों के लिए समर्थ पोर्टल पर प्रवेश पंजीकरण अब 30 जून तक किया जा सकेगा। वहीं बीए एलएलबी, बीए एलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 4 जुलाई निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से निर्धारित अवधि के भीतर समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के देहरादून में आयोजित कार्यक्रम की खबर पर अमर उजाला ने लिखा है, विकसित भारत तभी सार्थक जब हर नागरिक हो स्वस्थ। देहरादून लाल पुल हादसे के बाद परिवहन संबंधी नियमों को सख्त कर दिया गया है। दैनिक जागरण इस खबर पर लिखता है, बसों की होगी पड़ताल, चालकों की मेडिकल स्क्रीनिंग। कोलकाता में निर्माणाधीन हादसों के समाचार को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, दुखद, कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरा, 5 लोगों की मौत। इसी खबर पर नवोदय टाइम्स ने लिखा है, कोलकाता में मजदूरों पर टूटी मौत। प्रदेश में एकल महिला स्वरोजगार को लेकर दैनिक जागरण लिखता है, 2000 महिलाओं को मिलेगा एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,

0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य अब पूरे देश का साझा संकल्प है। प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में 31 अगस्त तक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना अनिवार्य। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत चौधरी ने नैनीताल में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए और कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंदीलाल विश्वकर्मा के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं बूंदीलाल विश्वकर्मा के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हूँ आशाया, काम बिगाड़ो अपनो भाई बंदो जग में हूँ।

0: इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी अब संपन्न हुआ। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे बूंदीलाल विश्वकर्मा के गाए कुमाऊनी लोकगीत। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं 16वीं एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडल विजेता अखिलेश सिंह से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है संजय जोशी।
1: श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ है अखिलेश सिंह, जो कि 13th जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित हुई थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे। आप अल्मोड़ा निवासी हैं और आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो अखिलेश, बात यहीं से शुरू करते हैं। आपकी नेशनल चैंपियनशिप की, जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात ये आती है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
2: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैम्पियन और नेशनल रही है, तो उनको देख के फिर मन किया खेलने का।
1: बात आती है नेशनल चैंपियनशिप की, तो 23 में आपने गोल्ड जीता, तो वो सफ़र आपका कैसा रहा?
2: तो नेशनल चैंपियनशिप जो है, ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं और कंपटीशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है, तो उसके लिए बस गेम के, अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है टेम्प्रेरी, पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो तो। तो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको दोनों मैनेज करते हुए चलना है, तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज़ में एक्सेल करना है, अच्छे से बेस्ट देना है। तो टफ था नॉर्मल बच्चों से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप थी। और पर बस पैशन था अंदर और ये था कि हार्डवर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, मेहनत करते गए।
1: मेहनत करते करते आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया, उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी हम कहेंगे ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13th जूनियर एशियन चैम्पियनशिप के लिए मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहाँ पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था उस?
2: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैम्पियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल के लिए। तो वहाँ गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैम्पियनशिप्स में और वहाँ मेडल जीता, वहाँ नेशनल चैम्पियन बना मैं उस टाइम पे। और उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन लिया और उसके बाद कैंप मिला हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारा कैंप लगा था 1.5 महीने का
1: जी।
2: तो फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई इंडिया के बेस्ट कोचेस के साथ।
1: पहली बार जब एशियन चैम्पियनशिप में खेले आप, नेशनल से विदेश में जा

0: अगर खेले तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको, मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ?
1: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने किसी भी कंट्री का।
0: वहाँ पर जब आपके कोचेज होते हैं तो एक आप जब स्थानीय स्तर पर आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, आप जब आप एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेज अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली जिन कोचेज से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
1: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर। जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारे एक अलग रिलेशन होता है जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है, तो उसे सब पता होता है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़े अलग कोचेस मिलते हैं जो एडवांस होते हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, और एक लेवल उनका अप हो जाता है। पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो बस इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कोच तो अपना कोच ही होता है लास्ट में।
0: जी, इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, आप जब पहली बार फाइट करने गए तो क्या था, कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं
1: नर्वसनेस थी थोड़ी, वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती है।
0: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
1: मेरी पहली फाइट चाइना से थी। हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो प्लेयर्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि जो और कंट्रियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं। तो उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है उनकी फैसिलिटीज़, क्योंकि उनको अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे, क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती। भले ही टैलेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है
0: जी, पर मैं ये जानना चाहूँगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट आपका चाइनीज था, तो आप कैसे उसको फाइट कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको, क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहाँ उसके ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ?
1: कोई गेम पढ़ना था उसका, सबसे पहले खेलते गए नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियां देखी कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है, और फिर वहीं से स्कोर निकालने का ट्राई किया। वो अपनी लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, बस एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहाँ पे एडवांटेज लिया, वहाँ से पॉइंट निकाला।
0: तो ये एज ए खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ वहाँ पर?
1: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है ऐसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आंख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत ज़रूरी है। कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है।
0: जी, आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट्स आप फेस करते गए?
1: चाइनीज़ अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में, सेकंड फाइट मेरी इजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी, थर्ड फाइट मेरी कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था।
0: अच्छा,
1: कोरिया से मैं हार गया था।
0: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको लगा कि आप कहाँ लैक करें?
1: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, वो मुझसे हाइट में बड़ा था।
0: अच्छा,
1: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा, हाइट में भी बहुत ज़्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका।
0: टेक्निक वाइज
1: आप मैं कहूँगा
0: टैकल कर रहे थे, मतलब
1: टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पर अब बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई।
0: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है
1: अभी नेक्स्ट? मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खुद पर बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को। और आजकल ये तो है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है गेम्स में, तुम्हें आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफ़ी सारी रेलवे, इन सब चीज़ों में जॉब मिल जाती है
0: इजीली।
1: हाँ, तो उसके साथ तुम अपना गेम भी कंटिन्यू कर सकते हो एक तरीके से।
0: तो अभी फ़िलहाल जो क्या तैयारी चल रही है आपकी?
1: फ़िलहाल तो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो

0: अब कंपटीशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा है।
1: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में, अब आप शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में यहाँ पे कुछ
0: मैं
1: किया है?
0: विक्रम भंडारी सर।
1: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर्स लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफ़ी डिफरेंट होती है, तो क्या चीज़ें आपको अलग से सिखाई जा रही है?
0: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया। टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती हैं और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको

0: जो कोचिंग होती है जूनियर से काफ़ी डिफरेंट होती है, तो क्या चीज़ें आपको अलग से सिखाई जा रही हैं?
1: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया। टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती हैं और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर।
0: अच्छा, स्टेमिना भी इसमें चाहिए होता है, आपको उतनी देर रिंग में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
1: स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टेमिना बिल्ड होता है।
0: जैसा कि मैं मालूम है कि आप सीनियर्स की तैयारी कर रहे हैं और जल्दी ही आप इंडियन सीनियर्स में खेलते नजर आएंगे और कुछ मेडल लाएंगे, हम चाहते हैं कि आप देश का नाम रोशन करें। तो अखिलेश, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे 16वीं एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडल विजेता अखिलेश सिंह से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे संजय जोशी।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत

0: परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
4: गुंजी में

0: जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घुड़े कचरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों चार दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को एक गोल और एक असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के दो गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया।

0: जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुँचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
4: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद लतीफ खां का सारंगी पर बजाया राग ललित। आपके साथ तबला संगत की थी नफीस अहमद खान ने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। एक रिपोर्ट।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्य

0: कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सक्रिय दिया गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। वहीं वेनेसिस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कभी कभी दिल करता है कि जिंदगी की सारी भागदौड़, सारी परेशानियां कुछ देर के लिए पीछे छूट जाएं और हम बस उन लम्हों में खो जाएं जो सुकून देते हैं। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ खामोशी हो, सुकून हो और साथ हो किसी अपने का, क्योंकि जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जहां वक्त ठहर सा जाए और दिल बस इतना कहे, काश ये लम्हा यहीं रुक जाए और दिल बोले, आ कहीं दूर चले जाए हम।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। लावारिस फिल्म से गीत जावेद अख्तर का था और संगीत राजेश रोशन का। फरमाइश करता थे जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। राजबिराज नेपाल से मोहम्मद अताउल्ला, बेगम जीनत जहां, सोनी परवीन, आयशा परवीन, इम्तियाज आलम और रेहान रजा सिद्दीकी। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े। झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। श्रोताओं लीजिए अब पेश है क्या कहना फिल्म का गीत अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। सुपाई साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती और इनके सभी साथी। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाहड़कर, राही, श्रीमती सरिता ग्वाहड़कर, प्रिंस एकांश ग्वाहड़कर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता ग्वाहड़कर, सिद्धांत ग्वाहड़कर, लाडला टुकटुक ग्वाहड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वाहड़कर, सुमित ग्वाहड़कर, कुमारी ध्वनि ग्वाहड़कर, परी। बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत ने। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं क्या कहना फिल्म का गीत अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाज़ों में।

इस गीत के बाद लीजिए पेश है विशाल और शेखर के संगीत निर्देशन में रजत अरोड़ा का लिखा गीत। आवाज़ सुनिधि चौहान की है और फिल्म का नाम है द डर्टी पिक्चर। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें किया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राविया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुषी श्रीवास। कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सोमू और मानस राज। लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, खुशबू, संजू, सामिया, आफिया, मुमताज़, अमान, माही, नीलोफर, शन्नू और शब्बू ने।

0: वो भी ऐप से। फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं परमर्शी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पू भाटिया। अड़ार नादगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं वादा फिल्म का गीत बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है हिमेश रेशमियानी।

इस गीत के बाद लीजिए पेश है समीर के बोलों पर नदीम श्रवण की तर्ज कयामत फिल्म के लिए। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, और इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें किया है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू। राजनाथ गांव से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबेहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने।

श्रोताओं, लीजिए अब पेश है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में रन फिल्म का गीत। समीर के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने और इस गीत के इंतजार में हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर पेश है रन फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। श्रोताओं, लीजिए पेश है शंकर एहसान और लॉय के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की। फिल्म का नाम है सलामे इश्क। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, छोटी बलिया तालुका करजत से अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया और आशू अहमद फूलवाले, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, गुजरात से धीरज भी रबारी।

अपनी फरमाइश की फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम है गीत निर्झर। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के लिए मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, किरण गुप्ता, नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जानवी रंभाड़े, काशी निवास नागपुर से हर्षल रंभाड़े और वैष्णवी रंभाड़े, एमपी रतलाम से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, सहेली रेडियो श्रोता संघ आजाद रोड सनावत से बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा बी खत्री, सादिया बी खत्री, नवासी जिक्रा, मोहम्मद शादाब खत्री, बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शुगुन, शारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह, भवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन। छत्तीसगढ़ से ही हमारे श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अरुण भैरव का लिखा गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए मुझसे शादी करोगे फिल्म के इसी गीत के साथ ही श्रोताओं आज के परमर्शी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के लिए डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा का उपयोग तथा समानता और प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। वेनेजुएला

आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार दो शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। खेलों में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप ए के इस मैच में थापेलो मासेको ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज सुबह मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने विश्व कप समूह चरण के 3 मैच जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: लीजिए, पेश है पय्याम सईदी का कलाम चंदन दास की आवाज में।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए नुसरत फतेह अली खां को।

गुलाम अली की गाई इसी गजल के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा सवरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

पानी देहरादून है। अब आप रागिनी दिनचोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। भारत और चीन के बीच लिपुलेक दर्रे से सीमा व्यापार लगभग 6 वर्ष बाद कल फिर से शुरू होने की आशा है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला प्रशासन के अनुसार भारतीय व्यापारियों का पहला दल 26 जून को तिब्बत के तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा। धारचूला के उपजिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों तक पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया है। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्रे तक पहुंचाने के लिए नाभी ढांग के निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है। गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने अभी से ही अगले साल होने वाले नीट UG की तैयारी शुरू कर दी है। मेडिकल के स्नातक कोर्सों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली ये परीक्षा अगले साल से पेन पेपर की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के जरिए होगी। इसका ऐलान शिक्षा मंत्रालय की ओर से पहले ही किया जा चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 मई को आयोजित किए गए नीट UG का पेपर लीक होने के बाद खड़े हुए विवादों के बाद किया था। उस परीक्षा को रद्द करते हुए 21 जून को फिर से

0: नीट यूजी कराया गया था। ऐसे में दोबारा हुई परीक्षा के सफल आयोजन के साथ ही एनटीए ने अगले साल होने वाली नीट यूजी की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने पर जोर देते हुए स्पष्ट किया है कि देवभूमि में किसी भी प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी या कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि यात्रा मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए। यदि कोई व्यक्ति या समूह प्रदेश की सामाजिक और धार्मिक शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना में चार लंबे पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग आठवां वृत्त नई टिहरी ने इस कार्य के लिए रुचि अभिव्यक्त करने के लिए कंसल्टेंट से आवेदन आमंत्रित किए हैं। टिहरी झील को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। इन सभी पुलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाएगा, जिसमें केबल स्टेड, सस्पेंशन और आर्क जैसी उन्नत ब्रिज तकनीक का उपयोग, हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र को देखते हुए भूकंप रोधी संरचना, 3 लेन हाई कैपेसिटी इको फ्रेंडली डिजाइन तथा पर्यटन आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल होगा। उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने सभी जिलों को सतर्कता बरतने और सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने बताया कि जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों और यात्रियों की विभिन्न स्थानों पर नियमित जाँच की जा रही है। बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में CCTV कैमरों और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। समाचारों का ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए पेश है शीर्षक गीत पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, हमारा आज का शीर्षक है मन।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह सुबह का एक ताज़ा हवा का झोंका चेहरे से टकरा गया। मौसम में एक अजीब सी नज़ाकत थी, जैसे कोई चुपके से कानों में कुछ कह गया हो। जानते हैं, ऐसे सुहाने मौसम में सबसे पहले किसकी याद आती है? उसी की, जिससे हमारा ये नादान मन जुड़ चुका है। ये मन भी बड़ा आवारा है, कभी उसकी हंसी पर ठहर जाता है तो कभी उसकी बातों के ख्यालों में खो जाता है। सुबह की इस पहली चाय के साथ जब आंखें खुली हों और ख्यालों में सिर्फ एक ही चेहरा हो तो मन सचमुच परिंदा बन जाता है।

श्रोताओं, ये मन कभी किसी की कहाँ सुनता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए इसे काम में लगाने की, पढ़ाई में लगाने की, लेकिन जैसे ही उसकी याद का एक छोटा सा झोंका आता है, ये मन सारे काम छोड़कर उसके पीछे चल देता है। कभी कभी मन करता है कि उसे सामने बिठाकर बस देखते रहें, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। उसकी हर छोटी बात पर ये मन मुस्कुरा उठता है, उसकी बेरुखी पर उदास हो जाता है और उसकी एक छोटी सी मुस्कान पर अपनी पूरी दुनिया वार देता है। शायद इसे ही कहते हैं मन का किसी के रंग में पूरी तरह से रंग जाना।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, हमारा आज का शीर्षक है मन। श्रोताओं, जब दिल और मन किसी के पास अमानत की तरह रख दिए जाएं, तो दूरियां भी बेमानी हो जाती हैं। वो भले ही हमारे सामने ना हो, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी आवाज़ का लहजा और उसकी वो बातें हर पल हमारे आसपास ही महसूस होती हैं। ये मन फिर एक ऐसा आईना बन जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी का अक्स नज़र आता है। श्रोताओं, इस दिलकश सुबह में जब हवाएं भी रुख बदल कर बह रही हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो भी हमारे मन की बात उन तक पहुँचाने की साजिश कर रहा हो। कितना खूबसूरत है ना ये एहसास, जब आपका मन आपके पास होकर भी आपका नहीं रहता।

तो श्रोताओं, आज अपने इस प्यारे से चंचल से मन की बात सुन ही लीजिए। अगर कोई दिल के करीब है तो झिझकिए मत, आज उससे अपने मन की बात जरूर कह दीजिए। क्या पता उसका मन भी आपकी इसी आवाज का इंतजार कर रहा हो। श्रोताओं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे किसी के प्यार के रंग से सजाने की देर है। ये जो तुम्हारा मन है ना, मेरे मन से बहुत मिलता है। जैसे सूखी जमीन पर कोई गुलाब का फूल खिलता है। तुम दूर हो तो क्या, तुम्हारे ख्यालों का पहरा है। ये जो हमारा रिश्ता है, समंदर से भी गहरा है।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपने मन, चमेली, पाप और मुन्ना भाई MBBS फिल्मों के गीत सुने। इसी गीत के साथ ही आज के सुरबहार कार्यक्रम से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपने मन, चमेली, पाप और मुन्ना भाई MBBS फिल्मों के गीत सुने। इसी गीत के साथ ही आज के सुरबहार कार्यक्रम से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार अभी आप सुन रहे थे। FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना संतोष आनंद का लिखा गीत। आवाजें थी महेंद्र कपूर और साथियों की, फिल्म का नाम था क्रांति। ऑलिजिया प्रस्तुत है अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में कृष्णा फिल्म का गीत। गीत मदन पाल का है, संगीत है अनु मलिक का।

सैनिक भाइयों, कृष्णा फिल्म के इस नगमे के बाद लीजिए पेश है कुमार सानू और अलका याग्निक में की आवाज में सपने साजन की फिल्म का ये नगमा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। सैनिक भाइयों, इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं संजीव दर्शन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं। फिल्म का नाम है आशिक।

सैनिक भाइयों, आशिक फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। और अब आज के कार्यक्रम के समापन में हम आपको सुनवा रहे हैं धनवान फिल्म का गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम की आवाज़ों में।

0: कपोत्र देवी से अभी आपने सुना ये कुमावनी लोकगीत।
1: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
3: जागो ग्राहक जागो।
0: सुरभार कार्यक्रम लोक सुर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम का अगला लोकगीत है गढ़वाली, जिसे सुर दिया है सीमा अनिल सहगल और साथियों ने।

लोक सुर कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये गढ़वाली लोकगीत। और लीजिए अब प्रस्तुत है कुमावनी लोकगीत, स्वर है प्रकाश रावत और माहेश्वरी बिष्ट का।

प्रकाश रावत, माहेश्वरी बिष्ट और साथियों से अभी आपने सुना ये कुमावनी लोकगीत। लोक सुर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। लीजिए, अब प्रस्तुत है संवेद स्वरों में ये कुमावनी लोकगीत।

संवित स्वरों में अभी आपने सुना ये कुमावनी लोकगीत। लोक सुर कार्यक्रम के समापन में दीजिए प्रस्तुत है शंकर उप्रेती के स्वर में ये लोकगीत।

शंकर उप्रेति के गाय से कमावली लोकगीत के साथ आज का लोक सुर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दोपहर के 12 बजे हैं, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

फिल्म संगीत का प्रोग्राम मेरी पसंद लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी का प्रोग्राम में बेहद स्वागत और साथ ही कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये आंखें भी उनकी किसी नज्म की तरह खूबसूरत हैं, ये आंखें भी उनकी किसी नज्म की तरह खूबसूरत हैं, कोई इन्हें पढ़ ले अगर एक बार तो शायर हो जाए। दोस्तों, ये खूबसूरत आंखें और किसी की नहीं बल्कि 90 के दशक के उस मशहूर अदाकारा की हैं जिन्होंने अपने परिवार की उस परंपरा को तोड़ा जिसमें महिलाओं को फिल्मों में काम करने की कोई इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने परिवार के खिलाफ जाके फिल्मों में काम किया और मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने फिल्म प्रेम कैदी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और अपने अभिनय से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि शोमैन राज कपूर की लाडली पोती करिश्मा कपूर हैं जिन्हें वो प्यार से लोलो कहते थे। और आज है करिश्मा कपूर का जन्मदिन, तो आज का मेरी पसंद सजेगा करिश्मा कपूर की फिल्मों से लिए गए मधुर गीतों से। आइए प्रोग्राम में सबसे पहले सुनते हैं उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी का ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, ये खूबसूरत आंखें और किसी की नहीं बल्कि 90 के दशक के उस मशहूर अदाकारा की हैं जिन्होंने अपने परिवार की उस परंपरा को तोड़ा जिसमें महिलाओं को फिल्मों में काम करने की कोई इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने परिवार के खिलाफ जाके फिल्मों में काम किया और मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने फिल्म प्रेम कैदी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और अपने अभिनय से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि शोमैन राज कपूर की लाडली पोती करिश्मा कपूर हैं, जिन्हें वो प्यार से लोलो कहते थे। और आज है करिश्मा कपूर का जन्मदिन, तो आज का मेरी पसंद सजेगा करिश्मा कपूर की फिल्मों से लिए गए मधुर गीतों से। आइए प्रोग्राम में सबसे पहले सुनते हैं उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी का ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून वर्ष 1974 को अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता शिवदसानी के घर मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। वर्ष 1992 में प्रेम कैदी से करिश्मा फिल्मों में आई और उनका फिल्मों का ये सिलसिला अब तक जारी है। करिश्मा कपूर को उनकी अदायगी का जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो मिला वर्ष 1997 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत।

दोस्तों, करिश्मा कपूर 90 के दशक की सबसे सुंदर और सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। करिश्मा कपूर अपनी फिल्मों में स्टाइलिश किरदार निभाती नजर आई हैं। उनके द्वारा बनाए गए हेयर स्टाइल उस वक्त की युवा पीढ़ी ने बेहद कॉपी किए। दोस्तों, अपने बालों को अलग अंदाज में रंगने वाली अदाकारा करिश्मा बॉलीवुड की वो पहली अभिनेत्री है जिन्होंने पहली बार काले रंग से हटकर किसी और रंग में अपने बालों को रंगा। और यहाँ पर अब जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ वो गीत है हीरो नंबर 1 फिल्म से,

0: मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार।
1: दोस्तों, फिल्म संगीत का प्रोग्राम मेरी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको सुनवा रही हूँ अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर फिल्माए गए चंद नगमे। दोस्तों, करिश्मा कपूर की कुछ मुख्य फिल्में हैं प्रेम कैदी, राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, जीत, हीरो नंबर वन, बीबी नंबर वन, कुली नंबर वन, हम साथ साथ हैं, जानवर, रिश्ते, दुल्हन हम ले जाएंगे, अनाड़ी, हाँ मैंने भी प्यार किया है, जुबैदा, राजा बाबू, जुड़वा, एक रिश्ता, सुहाग, अंदाज, चल मेरे भाई, लहू के दो रंग, धनवान, मुकाबला, गोपी किशन और दीदार। दोस्तों, यूँ तो करिश्मा कपूर की जोड़ी अजय देवगन, सलमान खान, गोविंदा के साथ बेहद पसंद की गई, लेकिन फिल्म सपने साजन में उनके साथ राहुल रॉय पर्दे पर नजर आए थे। इस जोड़ी को एक बार फिर से फिल्म मेघा में दोहराया गया। दोस्तों, फिल्म सपने साजन के लिए करिश्मा कपूर को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म पुरस्कार भी दिया गया। आइए सुनते हैं राहुल रॉय और करिश्मा कपूर की जोड़ी से सजे मेघा फिल्म के इस गीत को।

दोस्तों, अभिनेत्री करिश्मा कपूर की अभिनय क्षमता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनकी फिल्मों के साथ साथ उनके अभिनय में भी निखार आता जा रहा था। इसी दौरान करिश्मा ने श्याम बेनेगल के साथ फिल्म सुबेदा में काम किया। इस फिल्म में करिश्मा के अभिनय को दर्शकों ने बेहद सराहा। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म जुबैदा का ये गीत।

और दोस्तों अब उस फिल्म के गीत की बारी है जिस फिल्म में अभिनय के लिए करिश्मा कपूर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। करिश्मा कपूर की इस बेहतरीन फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। मल्टी स्टारर फिल्म होने के बावजूद करिश्मा ने इस फिल्म में काम करके एक बार फिर से ये साबित किया कि काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि शिद्दत से किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। आज करिश्मा टेलीविजन रियलिटी शो में तो नजर आ ही रही है, साथ ही वेब सीरीज में भी काम कर रही हैं। करिश्मा कपूर सदैव अपने अभिनय से हमारा मनोरंजन करती रहे।

और सदैव स्वस्थ रहे, यही कामना करते हैं हम आज उनके जन्मदिन पर। और अब दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत आप सबके लिए।

दिल तो पागल है फिल्म के इसी नगमे के साथ आज के मेरी पसंद प्रोग्राम से अपनी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दोस्तों आज का प्रोग्राम केंद्रित था अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर। फिल्म संगीत मेरी पसंद अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण।

0: ભૂમિ મંજુ બોરા પ્યાર ભરી નમસ્કાર સ્વાગત છે દગડીઓ આપુ સબ જાણ્યાક આપણ મનપસંદ કાર્યક્રમ એપણક આજક અંક મે દગડે દુની ભર મે કેને ઘૂમે આવો ઇથા ઉથા રિશ્તેદારી મે નહી જાઓ લેકિન સુકૂન આનંદ ભલ કા ચિતાયું બતાઓ સબ સમજ ગયા હનાલા ને કે ઉ જાગ છો હમર ઘર જો આનંદ જો ખુશી જો ઘર મે રહેભર મિલે ઉ તો કહે નહીં મિલ સકે ઓર જબ ઘર મે આંગન મે फूल फल साग पात नन नन जस क्यारी हो तो आहा तन मनक दगे आँखों गला सुकून मिल जा मल्ला हरी भरी है जा तेरे पहले तो हम पहाड़ी होए गोनुपन रोनी वाला है आँखों का आदत है जया हरी भरी देखने देखो दगड़े चाहे कोई कह ले रू अब तो सब गमलों में बड़े बड़े फूल और हरी भरी पातों वाल पौन लगून फगे कत्ती आगिल पिछाड़ी जाग बची छू जब तो क्यारी जसला बड़े देनी सबके घर बगिया में हाजरी फूल तुलसी गुलाब पाती गुड़हल एलोवेरा और ले जाने के छू और क्यारियों में धनी लासन हरी साग सब लग देनी जब हमू को ताजी साग न मिल जा और स्वास्थ्य न मिलो और जो गमलों में फूल खिलनी हरी भरी गमल ढक भरी रोनी उनको देख दे मन प्रसन्न है जा और खल बखत सद उपयोग लह जा दगड़े यसले कही जा कि जब हम हरी भरी पात पतीलों दग बात करनो उन्ना दग बखत बितोनो तो खिली खिली फूल को देखनो तो हापी हापी मुखरम चमक और प्रसन्नता आ जाए सरेला भल चितायूं और उनको बार बार देखना मन करो और ल कोई आया जब तो उला तारीफ करनी कि अपन घरक बगिया कदुक भल लागने कभे तो दगड़े इसी का आपू सब जानिया बगिया में ले के ना के तो जरूर है होना और होने चाहे जब तो गमलों में फूल पाती लगे अपन घरक आंगन और बगिया का महक सच्चा ये तो है के बात घरक बगिया अब कार्यक्रम में आगे बढ़ो और सुनो यह संदेश
1: अरे वाह पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी
2: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है
3: आप भी ध्यान रखें सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से
5: अनजान ऐप से बचें
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए

0: योजने ग्रामीण महिला श्रीमती खष्टी देवी ग्राम घुरसू बटी पोस्ट ऑफिस एनटीडी अलमाड़। जब हम देखो हम क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता करूंगो तो हम देखो कि नर घरक आंगन में पाखम सीढ़िया में बरंड में इन्होंने विभिन्न प्रकार गमले लग रहे और जदू जाग इनर अखिल बच रहे उमे इनुल नन नन जग क्यारी म्यारी ले बढ़ रहे आहा देखने में कदू सुंदर लागू। तो यही विषय के लिए बेर हम करी एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जैक विषय छू की हमार घरक बगियाल महते हुए हमार संपूर्ण स्वास्थ्य और ये विषय में हमार जगह बातचीत करने लाग रही एक ग्रामीण महिला श्रीमती खष्टी देवी ग्राम घुरसू पोस्ट ऑफिस एनटीडी अलमाड़ बटी। सबोहर पहली तो दी आपुक स्वागत छू हमार कार्यक्रम अपनक आजक अंक में। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: दी। सबोहर पहली तो ये बताओ की जदुगले या आपुक पाखम बरंडम आंगन में या गमले लाग रही इनमें जो विभिन्न प्रकार बगिया आपुल खिला रही और विभिन्न प्रकार फल फूल पातूल लादी रही इना नाम के छन?
1: इना नाम गुड़हल छू पारिजात अश्वगंधा और एलोवेरा और यह नमन गिलास और रोजमेरी गुलाब और यह सो पौधा छू हम आंगन में सतावरी।
0: ये तो हगाई फूलों के नाम और जो अखिलवा आपूल यह क्यार बढ़ रहे ये क्यार में बखत बखत में हर मौसम आधार पर आपू के लगू छा?
1: आजकल तो हमारे सीजन में मूल हूँ उगल हूँ चूल्हे हूँ और मेथले बिनु आप सीजन में धनी ल हूँ आप आजकल तो सब सीजन में मतलब बुण भगी असली आजकल चू उगल मूंग धनी ये चीज भी नु मटर बाकुल लगुनु आज देश गोदु पहाड़ गोदु कागाल लोग आप सब सीजन चरण हुए सब लगुनु
0: दे जस की हमें देखनो नहीं कि आजकल जद उले पलायन होने लग रहा ठुल ठुल खेत बंजर पड़े और उनमें झाड़ पात उग रहा लेकिन अपुल यहाँ रभेर नन नन कमरों में रभेर ले अखिल बटी जद उले आप जाग छू यक भरपूर उपयोग कर रहा तो आप इनको इनमें मेहनत कर छा ये तो भाग चीज आपको लग रही तो कसी आपको प्रेरणा मिली कि मैं यह सब चीज के करूँ कभी?
1: मेरे ख्याल खाली नहीं बैठी मैं गमलू में गुड़ाई करूँ खाद डालूँ और टाइम टाइम पर पानी दिनूँ टाइम टाइम पर जैसी बच्चे पालने वैसे फूल पौधे ला पाली जानी बहुत केयर करूँ पड़े और फूल ने कीड़े तो नहीं लग गए कहीं पत्ते खराब तो नहीं हो गए ये कभी देखूँ पड़ू मैं गुड़ाई ला करूँ पड़े पानी डाल पड़ू हर तीस हर दिन और मैं देखना चाहूँ बीज को पत्ते खराब हो गए निकालू पड़ू बहुत केयर चाहे बहुत देखना पड़ू या पेड़ कसरो कोई पेड़ खराब हो गमलो बड़े बदलना पड़ू।
0: दी जो ये गमलों में आप बोले तो विभिन्न प्रकार के पौध लग रही और इनमें बहुत हमारे औषधीय पौध ले छन जदू का नाम आबुल पहले हमको बता ये एक गमलों में एक का पौध हो नहीं इनमें बीज लग फिर इनको सारी ले जा सकू?
1: पहले तो गमलो में एक का पौध हल फिर ज्यादा वो फल जला जब वो सारी सकू जदू सारन हम उदू अलग अलग लू दू फल एक घीच घीच में निहुन और अलग अलग सारन हम ये केयर करू बहुत बढ़िया फल हो
0: जिसके आपुल मेरे को बहुत चीजों नाम बता तो एक एक अभेर अगर आप वो बताला कि इनर के लाभ हूँ और हम इनको घर में लगा ले सकनू कभी लेकिन लगू हूँ तो बहुत लोग लगा दे नहीं मिल कदू जाग देख रहो कि गमलों में विभिन्न प्रकार फूल पौध लगाई होनी और हमको कदू चीजें नाम ला पता नहीं हूँ उन्हें उपयोग ला पता नहीं हूँ बस हम मेहनत करनू और ये अकली जी लगा दे की हम घर साज रहो हमार भीड़ पाख और सीढ़ी हमार भरत है सुंदर लगने कभी बुढ़बार पहली बटी के है जब मैं रसो में जबेर कदू चीज ली होनी है आप जीवन जदुक ले आपू पा अनुभव छू आप आगे लू देख रहो नाल आप नानती नो लीजिए अपन नात पोता लीजिए तो इसमें अपन दो भाग गमले लग रहे हमें सब पहले हम ये जान चुके जो अश्वगंधा आप बात बताए गमलों में जो आप सामुड़ी लग रहे हैं मैं बीज ले देखने लग रही तो ये अश्वगंधा के लाभ हूँ?
1: अश्वगंधा बहुत लाभ हूँ अश्वगंधा जोड़ो में दर्द और कमर दर्द जलब है मतलब बहुत उपयोगी दर्द फर्द में बहुत काम हुआ बहुत उपयोगी अश्वगंधा
0: जो अश्वगंधा बात हम करने लग रहे हो तो ये कसी काम हुई है बीज जो काम होनी की पात जो काम होनी की जड़ जो काम हो कसी काम जो है
1: यह दाना काम होनी यह चूरन बढ़ू यह पत्तला काम होनी काड़ा बढ़ू है और यह दाना चूरन बढ़ू जड़ ला काम है यह क्या मतलब खराब मन नहीं जानी क्योंकि मैं रू अश्वगंधा
0: तो जो आप दाना बात करना चाह उन दाना चूर्ण बने भैया जोड़ो में कसी लगू है भाई
1: वो जोड़ो में लगू नहीं पा वो खाई जा वो चूरन बढ़ जा बढ़ू वो खाई जा।
0: अच्छा चूर्ण बने भैया वो खान है तब वो हमारे जोड़ो दर्द को दूर करो दी अब यह दूसर गमलों में जो मेरे देखे ना जो अबुल मेरे नाम बता छी कि यह नाम पत्थर चट्टा छो गए ये क्या काम हो?
1: पत्थर चट्टा ला बहुत काम हूँ यह पथरी में पत्थर चट्टा लूनी पत्थर चट्टा का धूली धो भेर ब्याल का छत में धरती धो धावे रहते वल पड़ो तुषार पड़ो हमारे तुषार पड़ी का तुम खाली पेट पानी का पियो तुम्हारे पथरी में बहुत काम करो पत्थर चट्टा पहाड़ी दवाई में बहुत बढ़िया उपयोगी पत्थर चट्टा।
0: अब यह गुड़हल फूल जो छो यह हम पूजा पाठ में ले प्रयोग करू और बस सुंदर लागू जब ये खिल जाए जैसे आपको गमलों में खिल रहो तो गुड़हल हमारे घरेलू उपयोग के हूँ?
1: गुड़हल बहुत उपयोगी छू गुड़हल सदा हरियर रूम हूँ रूढ़ी चौमान बहुत बढ़िया।

0: गछ हम जातन पुजनु इन फूल उन का पुजनु और या कुद किस्म हम गुड़हल और या गुड़हल या सुमला हर सदा बाहर हरियर हूं कभी नहीं सुकन गुड़हल बहुत गुण छन।
1: अच्छा तो यह बड़ गुणकारी पौध छू जो सदा हरी रू और विभिन्न प्रकार हूँ गवे। देखो आप गमदम में तो ये तो बढ़िया ये गुड़हल हरो लाल रंग और देवता का पूजना काम ले यो नहीं रहे। अब यह दूसरे जो आगे बैठी गमदम के दिखे ना दूसरा वाल अबुल नाम मेरे को बता रहे मेरे को याद जो नहीं अबुल सतावरी को है नाम। तो ये सतावरी ये जो झाड़ जो हूँ यह सतावरी नाम तो है एक दूसरा नाम लो होंगे
0: पहाड़ी में हम घरों बना यद है कैरू होनी यह जड़ होनी जस पता पता जड़ोनी है जड़न का खुदनी है जड़ला काम नहीं हमला खा सकन गाय बासन का दिन जो गाय बस दूध खराब हो स्मेल ही उमर कूट भी ना गुर बासन का दिन दूध लो बढ़ोनी दूध स्मेल नहीं और हमारे नानतीन होनी हम यार टहनी का दरवाजे पर लगोनी और गलत नज़र नहीं लागन गलत चीज़ नहीं आ सकनी आखिर ये बोला बहुत उपयोगी चीज़ है हमारे घरों में।
1: हाँ बिल्कुल दी सही कुना चाहे मिगले याद जो उन्हें ना कि मैं लग कई जगह में देख रहा हूँ जब नाना नानती नहुनी कहें हम जानू ना ये बत्यास लिबे दूध लिबे तो द्वारों में खिड़की में वो झाड़ जा टांगी हुई देखी हूँ तो समझ में नहीं उनके चो। अच्छा यही हो जाओ
0: यही भे सतावरी हम पहाड़ में कैरू को नहीं उसे सतावरी को नहीं दें या दवाई काम लो या दवाई बनी या टहनी या सब्जी ला बढ़ाएँ कल्लू नहीं मार्च में नहीं कल्लू नहीं जहाँ कल्लू ली नहीं बाजार में बिकनी है ये सब्जी बहुत बढ़िया है तो ये शुगर का काम लूँ या शुगर का कंट्रोल करूँ।
1: अच्छा तो सतावरी देखो यह नाम पता चल जाना सतावरी मतलब सौ चीज में काम होने वाली चीज है ये सतावरी। और बिहारा हावला ये रोकने हो कि लेकिन मैं कई जगह देख रहा हूँ ना द्वारों में खिड़कियों में उनको लटकूनी जब नाना नानतिन होनी तो अब यह सब जगह लागू और आपू लग रहा हो एलोवेरा लग रहा हो या एलोवेरा आपू जो लग रहा हो यह के चीज में प्रयोग कर सी
0: एलोवेरा बहुत काम हो एलोवेरा जली में हूँ एलोवेरा चेहरा में काम हो एलोवेरा बालन में काम हो एलोवेरा बहुत एलोवेरा बहुत उपयोगी सर बालों में लगाओ और या शैम्पू बढ़ूँ और जली में लगूनी एलोवेरा का।
1: अच्छा अगर हम घर में गमला में हम एलोवेरा लगा रहो जब हम अपने बालों में ले एक लगा सकूँ। अच्छा तो अपन बता जली में लगा सकूँ एक काटभेरिया जो भीतर में चिपचिप जो पदार्थ हूँ उसको घसन हो ना
0: वही गुला बढ़िया फेस में जस्ट तुम अलग काटो साबुन नहीं लगाओ फेस में ऊपर नेचुरल लगाओ ताजी बहुत ग्लोई दू चेहरा में।
1: अच्छा चेहरा में ले यह हमारे एक ताजगी और एक चमक आ जाए। और दी जैसे यह कैरोक झाड़क बार में अपुल बता सतावरी जैसे कही कि झाड़ जैसे बगल में गमला आई देखिनो यह नाम के बता छे अपुल
0: रोजमेरी छू रोजमेरी लग रहा रोजमेरी बहुत कामक छू रोजमेरी चाय बड़े रोजमेरी बालना लीजिए उपयोगी छू बहुत बढ़िया छू यह बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बढ़ू चाय बहुत बढ़िया छू रोजमेरी
1: दी जैसे कि रोजमेरी बार में आपको कुना छा कि यार हम चाह ला

0: घरोपना हम पहाड़ में गुर्जो कुनु
1: गुर्जा
0: गिलोई हाँ उसी गिलोई कुन घरोपना हम गुर्जो कुनु गुर्जा लग बहुत पेड़न में जाए बहुत फल हुए बहुत फूल हुए।
1: अच्छा अच्छा ये एक नाम और मेल पड़ो अमृता लकुनी ना दिएगा
0: अमृता लकुनी हाँ
1: लेकिन ये गुण अमृत समान छन। देखो जदूला पेड़ बनो बाद में आप बता और थोड़ा बहुत अपने एक अनुभव आधार पर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनो ये तो आप लग रहे आप खुद आप अनुभव आधार पर बतूना छा आप ये प्रयोग कर छा तो अमृता गुण बार में सुनो सही बात आप कहो कि कोरोना काल में तो सब लीजिए अमृत समान होगा भेद। अब एक के चीज छू
0: पारिजात छू पारिजात पेड़ छू या दर्द मला काम हूँ या बहुत बढ़िया छू पारिजात बहुत उपयोगी चीज छू दर्द में बहुत काम करूँ या लोग बहुत बहुत दूर बलूनी।
1: अच्छा और ये जो लंबे लंबे घास जो देखी नो दूसरे गमलों में ये के छू
0: नेमन गिलास छू
1: यह के प्रयोग नहीं हो पे
0: ये अगला चाय में डालनी नमन गिलास बहुत बढ़िया काम हूँ या चाय में डालनी और बढ़िया हूँ चाय।
1: अच्छा मैं एक जाग कह जरो छी तली कुछ उजाने कुछ गाड़े उजान तली तो कहले वो पैकेट में बंद करो छी लेमन ग्रास टी का भी जब हम लेकर चाह में खीतो ना दी तो वो निमोजा खुशबू होने छी उई चुके हो।
0: हाँ हाँ बहुत बढ़िया निमोजा खुशबू है मैं तुम अदरक निकला चाह में यह खीतो बहुत बढ़िया चाय स्वाद सुधर जा।
1: अच्छा हो ये पैकेट तो लियाऊ मैं वो मैं निमोजा खुशबू होने छी तो दी यह तो आप बहुत बढ़िया बात बताए की दू बाग गमलू में आप चीज लग रही कभी और एलियो आगे बटी बाढ़ में के हरो पा हरी साग में
0: हरी साग में उगल हरो चू हरो मूल हरो धनी हरो और गोदू लगर की लोग लगर की आज तो टाइम नहीं है अब हल देश गोदू पहाड़ गोदू लोग गोदू काकार तोरिया सब लगर की चिचन
1: बहुत सुंदर दी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया इधु बहुत चीज आप आगिल बटी लगे रे और प्राकृतिक रूप शुद्ध फूल ला आपो पाचन फल ला आपो पाचन और यह साग पात ला आपो पाचो दी जब आप यह हरी भरी बगिया देखा आगिल बटी तो आप मन प्रसन्न
0: तो बहुत बढ़िया लागू मैं बैठना आदर ना मगर फूल पौधे बहुत पसंद छन मैं फूल लागू कति बोलो जून मैं फूल लू अपन गार्डन में लगा जून मेरे बहुत प्यार सन फूल बहुत पसंद छन।
1: जैसे की एल आपू और ये मेरे बातचीत का हमारे रेडियो दगड़ी सुन लाग रहे तो आपू हमारे रेडियो दगड़ियों को के संदेश दे चला
0: आपू लोग जब आपू घरों में रुसा आप अपन गमलन में हर चीज लगा सकता और गमलों में बहुत चीज हूँ तुम सब्जी लगाओ लहसुन लगाओ धनिया लगाओ और मूला लगाओ सब्जी उगे लीजिए भला अपन घर नहीं बैठा अपन शो पीस ला है जहाँ अपन सब्जी ला खाई जाए और बहुत बढ़िया हूँ यह धरती हबेला आजकल गमलों में बढ़िया उगलना बहुत बढ़िया हूँ सब्जी हब्जी अपन करण हूँ तुम क्या मतलब कर सा चूल्हा कुणन ले हमारे बुजुर्ग हरिया हुए चूल्हा कुणन हरिया हो उस हमारे पहाड़ अब हमारे हो हमारे लिए बानर के धरन ला रहा हम उनका भीतर उपजुन रहो सब्जी जेल सु गमलों में उपजुन हम
1: बिल्कुल सही बात कहे की हमारे बुजुर्ग चूल्हा कुण में हरिया उगा ये तो बहुत एक वैज्ञानिक कारण है की उन्होंने यह बात को सिद्ध करो कि अगर लगन कोई चीज कर छा वो कहला हजा का भेद अब लियो एक बहुत ठुल संदेश एल हमारे श्रोताओं को दे कि खाल नहीं बैठो और अपन गमलों में के ना के अब लगा सकता और भी प्रयोग कर सकता कभी दी अपुल अपुल कीमती बकर हमको दे और अपन घर बगिया में गमलों में जेल चीज लग रहा यह भल भल जानकारी हमको दे अब अनुभव हमारे जगह साझा करी और अपन कीमती बकर हमको दे यह लीजिए अपन कार्यक्रम तरफ अब खूब खूब धन्यवाद दगड़ियो अल्लाह हम सुन लाग रो जी एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जय एक विषय जी हमारे घर बगिया में महकने वाला हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य जमा हमारे जगह बातचीत करने लग रहा जी एक ग्रामीण महिला श्रीमती खष्टी देवी ग्राम घुड़सू पोस्ट ऑफिस NTD अलमार बटी
2: देखो लियो मैं एक बात कौन जानू कि ना तो कभी हम बखत हवे पिछाड़ू छे और ना बखत हवे आखिल दौड़न छे बल्कि बखत अक दगड़ दगड़ कदम बटी कदम मिला हुए रिटर्न छे जिसके आप कार्यक्रम में बखत है पूछ गो एक लोकगीत तक आओ सुनू गोकुल सिंह बेस्ट और दगड़ियों गाई या लोकगीत

लगड़े हो जैस कि थोड़ी देर पहले मैं कौन लग रहा छे कि ना बखत हवेर पिछाड़ उन चें ना बखत हवेर आगे दौड़ चें बल्कि बखत दगड़ दगड़ हिटन चें। अगर हम बखत तक दगड़ दगड़ हिटूल तो निश्चित हमको वो बखत तक हिसाब सफलता ले मिले और हमार काम ले पूरहल। जिसके आयल हमारे यहाँ कार्यक्रम में समा बना हुआ हम जान लग रो हमार बखत हूँ फजा कि आजक अपना अंक बटी आप लोगों बटी हम आगे लियो तो लगड़े हो आगे अपना अंक में नहीं।

विषयों को ले बेर हम फिर हाजिर होल। जब तक हम यही कूचूल कि आप सब दगड़ी स्वस्थ रहा मस्त रहा अपने स्वास्थ्य तक ध्यान धरिया और जो जलवायु मौसम पर्यावरण यह सबक ध्यान धरते हुए अपन खान पान ध्यान धरते हुए स्वस्थ रहा। ऐपणक अंकक आज प्रस्तुत करता छी दीपिका पंत। आखिर कार्यक्रम में फिर भेंट है। अब दियो आज्ञा। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अर्पण। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की

अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि दी। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने अल्मोड़ा में आपदा प्रबंधन और मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरकाशी के 9 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने सतोपंत चोटी पर सफल आरोहण किया। पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश। और निर्जला एकादशी स्नान पर्व पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे सभी लोगों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की और उस काल को भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गईं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल ने उन अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को भी उजागर किया जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया और संविधान में निहित आदर्शों को कायम रखा। श्री मोदी ने कहा कि संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। लोक निर्माण विभाग के सचिव और अल्मोड़ा जिले के प्रभारी सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने अल्मोड़ा में आपदा प्रबंधन व मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सचिव को जिले में की गई तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण, कंट्रोल रूम की स्थापना, विभागीय नोडल अधिकारियों की तैनाती, मशीनरी की व्यवस्था, खाद्यान्न और दवाओं का अग्रिम भंडारण तथा वैकल्पिक मार्गों की पहचान के कार्यों पर पूरा ध्यान दिया गया है। प्रभारी सचिव ने प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मानसून की तैयारियों को लेकर सभी जिलों के प्रभारी सचिव अपने अपने जिलों में जाकर समीक्षा कर रहे हैं।
1: जी के निर्देश हैं कि प्रभारी सचिव हर एक जनपद में जाके अपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जाके मानसून की तैयारियों के बारे में रिव्यू करें और देखें कि क्या क्या तैयारी हो रही है जिससे कि आम जनमानस को कम परेशानी हो क्या

0: प्रिपेयरनेस करनी चाहिए, रोड बंद होने की स्थिति में क्या काम करेंगे, बिजली पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं, सारी तरह की तैयारियों को रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ अल्मोड़ा।
1: राजधानी देहरादून में किराए की बाइक के संचालन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि देहरादून में रेंटल बाइक के लिए बड़ी संख्या में लाइसेंस जारी किए गए हैं, लेकिन कई संचालकों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। आरटीओ की टीम ने अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
2: रेंटा बाइक जो चल रही हैं उनके संबंध में कुछ शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी, क्योंकि देहरादून के अंतर्गत रेंटा बाइक के काफ़ी लाइसेंस दिए गए हैं और जनरल शिकायतें ये थी कि जहां पर बिजनेस चल रहा है वहां पर बिजनेस नहीं किया जा रहा है, कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं, साथ ही जो गाड़ियां चल रही हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और जो लोग रेंट पर लेते हैं उनको प्रॉपर हेलमेट भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और मसूरी से ये शिकायतें विशेष करा रही थी। तो ये अभियान हमने कल भी चलाया था, आज भी चलाया है। तो कल लगभग 35 ऐसी गाड़ियों के चलान किए थे जो कि नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके थे और साथ में कुछ गाड़ियों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे या प्राइवेट गाड़ियां भी संचालित पाई गई लाइसेंस पर, तो ऐसी 9 गाड़ियों को सीज भी किया गया और आगे भी अभियान जारी है और ऐसे लाइसेंसेस को चिन्हित करके उनके अगेंस्ट निलंबन की या फिर उनको निरस्त करने की संस्तुति भी की जाएगी।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: हिमालय संरक्षण, स्वच्छता और जिम्मेदार पर्वतारोहण का संदेश लेकर उत्तरकाशी के पर्वतारोहियों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। समुद्र तल से करीब 7,075 मीटर ऊंची माउंट सतोपंथ चोटी पर 9 सदस्यीय दल ने सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। भीषण ठंड, बर्फीले तूफानों और शून्य से नीचे तापमान जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए टीम ने शिखर फतह किया। पर्वतारोही प्रवीण राणा ने बताया कि 3 सप्ताह तक चले इस अभियान में दल ने कठिन हिमालयी मार्गों को पार करते हुए सफलता हासिल की।
4: इसमें जो कि अभी माउंट सतोपंथ गंगोत्री एरिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक और चैलेंजिंग पीक है उसको क्लाइम किया है अल्पाइन स्टाइल में। तो ये हमारा ध्येय क्या था, मेन मकसद था कि क्यों ना हम अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट में है इस तरह का एक मैसेज दें हिमालय में कि लोग गंदगी कम करें, तो इसी हिसाब से हमने जो है अल्पाइन स्टाइल में क्लाइम किया। तो उसके लिए हमने पूरा सामान खुद लेके गए, राशन खुद लेके गए और कम से कम रिसोर्सेज हमने इसको क्लाइम किया। तो ये जो है एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहा पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस। हमने गंगोत्री से शुरू किया और जो फाइनली जो हमारा समिट कैंप तक जो प्लान किया हुआ था 10-12 दिन का, बट उसमें बर्फ ज्यादा गिर गई और इसकी वजह से 6-7 दिन हमको और ज्यादा लग गए उसमें। और फाइनली हमने 18 तारीख को जो है 6:30 बजे जो है पीक को क्लाइम किया और सेफली वापस आए।
1: वहीं पर्वतारोही आजाद सिंह राणा ने बताया कि अभियान के दौरान दल के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए क्षेत्र से 15 किलो कचरा इकट्ठा कर उसे वापस लाया।
5: हमने जो ये एक्सपीडिशन अपना शुरू किया था 2 जून से गंगोत्री से शुरू किया था, जहाँ से गंगोत्री से और समीर तक का जो हमारा ये सफर रहा है ये हमने 3 जो हमने बेस कैंप तक इसमें कैंप लगाए थे। जब समीर करके हम नीचे आए तो जो हमने मुहिम लेके चली थी अपनी स्वच्छ भारत अभियान वाला, तो उसमें हमने क्या किया 15 kg कूड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क तक लाया।
1: निर्जला एकादशी स्नान पर्व के अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मेला क्षेत्र को विभिन्न जोनों और सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। BDS टीम और डॉग स्क्वाड रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और प्रमुख घाटों की निगरानी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से CCTV कैमरों के माध्यम से भीड़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात हैं जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अफवाहों पर रोक लगाने, भीड़ नियंत्रण, यातायात डायवर्जन और श्रद्धालुओं के साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने पौड़ी में मंडल के जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से मुहर्रम और अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि देहरादून और हरिद्वार जिलों में विभिन्न स्थानों पर मुहर्रम जुलूस प्रस्तावित हैं, जबकि टिहरी गढ़वाल में एक स्थान पर जुलूस निकाला जाएगा। आयुक्त ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने, ताजिया कमेटियों, धर्मगुरुओं और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को होटल, अस्पताल, मॉल, कोचिंग संस्थानों, कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अग्नि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करने और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान हत्या दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि दी। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने अल्मोड़ा में आपदा प्रबंधन और मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरकाशी के 9 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने सतोपंथ चोटी पर सफल आरोहण किया, पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश और निर्जला एकादशी स्नान पर्व पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। पेश है प्रोग्राम सुगम संकेत। सुगम संगीत प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ।

गुलाम अली से अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल। सुगम संगीत प्रोग्राम में लीजिए पेश है शाहिद अख्तर का कलाम, फनकार हैं हरिहरन।

हरिहरन से अभी आप सुन रहे थे शाहिद अख्तर का कलाम। और अब आज के सुगम संगीत प्रोग्राम के आखिर में लीजिए पेश है सागर सदीकी का कलाम। फनकार हैं गुलाम अली।

गुलाम अली से अभी आप सुन रहे थे सागर सिद्दीकी का कलाम। इसी के साथ आज का सुगम संगीत प्रोग्राम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1314वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, X, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद

0: आस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
0: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
1: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधे का।
0: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
1: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
0: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी

0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
1: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
2: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
3: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
1: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
2: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
2: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
2: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
4: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।

0: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में

0: आता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
2: जी।
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
2: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
2: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
2: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
2: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
2: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
2: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
2: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
2: जी। इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
2: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
2: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
2: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
3: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
3: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार,
4: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
3: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं।

0: जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं, उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1314वीं कड़ी अभी आपने सुनी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम के पहले लोकगीत को स्वर दिया है अनीता कंडारी और नरेंद्र सिंह नेगी ने।

नरेंद्र सिंह नेगी और अनीता कंडारी के स्वर में अभी आपने सुना ये लोकगीत। उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम के अगले लोकगीत को स्वर दिया है अनीशा गुसाई ने।

उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कुछ गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम के समापन में जो लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है संवेद स्वरों में।

0: संवेद स्वरों में गाए इसी लोकगीत के साथ आज का उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कुछ गढ़वाली लोकगीत। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियाँ आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
2: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया।

0: झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
1: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
2: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
2: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
8: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशंस को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
2: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
9: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत

0: सेवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदि सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। किसान भाइयों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में चारा घासों का उत्पादन विषय पर ये पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर अनिल सैनी।
2: किसान भाइयों, आज हम पर्वतीय क्षेत्रों में चारा उत्पादन विषय पर बात करते हैं। जैसा कि सभी को विदित है, हमारे देश में पशुपालन व्यवसाय कृषि का पूरक है तथा कृषि से जुड़े कृषकों की आय में वृद्धि हेतु यह एक लाभप्रद व्यवसाय है। पशुओं हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त चारा उत्पादन एवं उपलब्धता में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु हरे चारे की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे पशुओं को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा मिनरल प्राप्त होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में चारा घासों का महत्व मिट्टी बांधने एवं भूकटाव को रोकने में अति महत्वपूर्ण है। आज के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य रूप से उत्तम गुणवत्ता युक्त एवं वर्षभर चारा उत्पादन करने वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाना है। इन फसलों को मुख्यतः अन्न उपजाऊ परती ढालदार खेतों की मेड़ों, पंचायत भूमि एवं चरागाहों में लगाने हेतु पशुपालकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि में चारा उत्पादन करने की संभावना कम होती है, अतः हमारे पास चारा उत्पादन हेतु जो स्थान उपलब्ध होते हैं वे हैं खेतों की मेड़ों पर, कृषि भूमि के समीप, अधिक ढालदार भूमि एवं पंचायती वन क्षेत्र इत्यादि। इन सभी क्षेत्रों में हम घासों को कैसे लगा सकते हैं, इसके 3-4 विधियां हैं, जिसमें से पहली है बीजों को सीधे छिड़क कर। हम बीजों को उनके आकार के आधार पर, जिनकी मात्रा 2 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है, हम इनको छिड़कते हैं। दूसरी विधि है पौधालय में पौधे तैयार करके। इस विधि में पहले घास की पौध तैयार कर ली जाती है, उसके उपरांत 10 से 15 मीटर के पौधे की ऊंचाई होने पर, खेतों में पर्याप्त नमी होने पर हम पौधों को रोपण कर देते हैं। तीसरी विधि है कल्ले में पौध तैयार करके खेतों में रोपित करना। इस प्रकार रोपण को खेतों को मेड़ों पर, कृषि भूमि के समीप की ढालू भूमि पर, कम ढालदार वन भूमि पर तथा अधिक ढालदार वन भूमि पर लगाया जाता है।

अच्छी उत्पादकता हेतु 10 से 15 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से हम डालते हैं। चरागाहों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में हम उच्च गुणवत्तायुक्त हरे चारे के उत्पादन पर ध्यान देते हैं, अतः इसमें सामान्य घास के अलावा दलहनी वनस्पतियों का होना भी आवश्यक है। इससे लाभ यह होगा कि जहां साधारण घासों में प्रोटीन की मात्रा 5 से 7% होती है, वहीं दलहनी चारे में प्रोटीन की मात्रा 16 से 18% होती है एवं इसको मिलाने से एक पौष्टिक चारा प्राप्त होता है। अब वर्ष भर चारा उत्पादन करने के लिए हमें खरीफ मौसम में, जायद मौसम में, रबी मौसम में चारा उत्पादन करना होता है। इसके अलावा हम मिलवा खेती एवं बहुवर्षीय घासों का भी उपयोग करते हैं। वर्ष भर चारा उत्पादन में सबसे पहले हम खरीफ मौसम की बात करते हैं। खरीफ मौसम की मुख्य फसलों में है मक्का। मक्का दो प्रकार की होती है, पहली संकर मक्का, दूसरी संकुल मक्का। इसकी चारा प्रजातियों में संकर मक्का की चारा प्रजातियाँ हैं प्रोटीन गंगा 2, गंगा 5, गंगा 7, कंचन, नवीन। संकुल मक्का की प्रजातियों में अफ्रीकन टॉल एवं विजय। चारे की मक्का की बुआई हेतु 50 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बुआई ऊंचे क्षेत्रों में अप्रैल में, मध्य क्षेत्रों में मार्च से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। इस फसल की हमें 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। अन्य फसल है लोबिया। इसकी उन्नतशील प्रजातियाँ हैं यूपीसी 287, 5286, 5287, रशियन जॉइंट, ईसी 4216। इसकी बुआई हम लाइन में करते हैं जिसकी लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है। बुआई करने से पूर्व 25 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश खेतों में देना चाहिए। यह फसल 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है तथा इसका उत्पादन 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ज्वार, यह काफ़ी पौष्टिक, स्वादिष्ट एवं सुपाच्य चारा होता है। यह फसल काफ़ी हद तक सूखे को सहन कर लेती है। इसकी उन्नतशील किस्मों में SSG 988, 855, PC 29, MP Cherry, Pant Cherry 5-6, CSS 20 हैं। इसकी बुआई मार्च से जुलाई के मध्य की जाती है तथा बीज दर 30 से प्रति 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। इसके दो कटान होते हैं, पहला फूल आने पर तथा दूसरा उसके 45 दिन के अंतराल पर। इससे हम 1200 से 1500 क्विंटल चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर लेते हैं। मकचरी, मकचरी चारे को अधिक वर्षा एवं अल्पकालीन जलभराव वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी उन्नत प्रजातियाँ हैं मकचरी इम्प्रूव्ड। स्थानीय किस्में भी उपलब्ध हैं। इसमें खेत की तैयारी में हमें 40 से 45 किलोग्राम नत्रजन, 150 किलोग्राम गोबर की खाद बुआई से पूर्व डाली जाती है। पहली कटाई के बाद 30 से 40 ग्राम नत्रजन अवश्य देना चाहिए। पहली कटाई दाना निकलने से पूर्व ही कर ली जाती है और इसकी उपज 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। नंदी घास, यह चारा स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होता है और इसकी उन्नत किस्में नंदी PSS 1 है तथा वर्षा आरंभ होने पर जून के अंत में इसकी बुआई की जाती है। पहली कटाई रोपण के 65 से 70 दिन बाद और अन्य कटाइयाँ इसके 30 से 35 दिन के अंतराल पर की जा सकती हैं। इसकी 3 से 4 कटाई प्राप्त होती हैं तथा इसकी उपज 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। गीनी घास, यह आंशिक रूप से छायादार क्षेत्र में उगाई जा सकती है। इसके चारे को सूखे चारे के रूप में तथा साइलेज के रूप में संरक्षित किया जाता है। 1500 मीटर की ऊंचाई तक इसको हम उगा सकते हैं। खेत में तैयारी करने के लिए 150 से 200 क्विंटल गोबर की खाद तथा 1 क्विंटल नत्रजन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए, जिससे कि फसल अच्छी प्रकार से बढ़वार ले सकती है। कोएक्स घास, यह एक वार्षिक हरा चारा वाली फसल है। इसका उत्पादन सिंचित एवं नम जगहों पर अच्छा होता है। इसकी ऊंचाई 1 से 2 मीटर तक होती है तथा 2000 मीटर की ऊंचाई तक इसको हम लगा सकते हैं। उन स्थानों पर जहां मक्का एवं असंचित धान होता है, उन स्थानों पर भी इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। यह चारा सभी के लिए सुपाच्य होता है। इसको बीज को उपचारित करके मई जून में बोया जाता है तथा इसे लाइन से लाइन की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखकर एवं बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज दर 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसकी उत्पादन 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है एवं घास बीज उत्पादन

0: उत्पादन भी 2 से 4 क्विंटल तक प्राप्त होता है। अब हम रबी चारा फसलों की बात करते हैं। इसमें प्रमुख फसल है जई। यह रबी मौसम की फसल है जिसकी 2 कटाई ली जाती हैं। यह चारा पौष्टिक होता है तथा इसकी बीज दर 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसकी खेत की तैयारी में भी 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश बुआई से पहले दिया जाता है। नत्रजन की आधी मात्रा बुआई से पहले तथा आधी मात्रा बाद में दी जाती है। इसकी उन्नतशील प्रजातियाँ जो है UPO 94, 212, OS 6, HO 851, 822, 991, 992 हैं। इसकी बुआई 20 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। पहली कटाई 55 से 60 दिन के पर सतह से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर तथा दूसरी कटाई पहली कटाई के 45 दिन के उपरांत कर देनी चाहिए। इस फसल का उत्पादन 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त किया जाता है। दीनानाथ घास, यह चारागाह सुधार घास कहलाती है एवं सुपाच्य होती है क्योंकि इस घास में बीज उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक होती है, अतः इसे हम खेतों एवं चारागाहों में प्रयोग करते हैं। इसकी उन्नत किस्में बुंदेल 1, बुंदेल 2, पूसा दीनानाथ घास है। बुआई जुलाई से अगस्त के माह में की जाती है। बीज दर 6 से 7 किलोग्राम हेक्टेयर उपयुक्त रहता है। पहली कटाई बुआई के 75 से 95 दिन के मध्य सतह से 20 सेंटीमीटर ऊपर से करनी चाहिए। इसकी पैदावार 900 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जाती है। बरसीम सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी चारा फसल है। इसकी 4 से 6 कटाइयां प्राप्त की जाती है। यह पौष्टिक चारा समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई क्षेत्र तक भी प्राप्त किया जा सकता है। इसकी बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तथा बीज को राइजोबियम कल्चर से ट्रीट करके इसकी बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तथा इसके बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके ही बोना चाहिए। इसकी उन्नतशील प्रजातियां वरदान, मस्कावी, जवाहर बरसीम, BL10, BL22, BL180, UPB110 हैं। इसकी उपज हमें 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। अन्य रबी की जो घास है वह है रिजका। इसको ल्यूसर्न भी कहते हैं तथा यह एक बहुवर्षीय दलहनी फसल है। इसका चारा पौष्टिक होता है तथा यह जमीन में काफ़ी नीचे से नमी को प्राप्त कर लेता है। इसकी स्थानीय प्रजातियाँ भी होती हैं। इसकी जो मुख्य प्रजातियाँ हैं वह सिरसा टाइप 9, LLC 3, सिरसा टाइप 8, NDRI सेलेक्शन 1, आनंद लूरसन 3 इत्यादि हैं। इसकी बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बोया जाता है। बहुवर्षियों को मेड़ों पर तथा एक वर्षियों को खेतों में छिटका विधियों से बोया जाता है।
1: पर्वतीय क्षेत्रों में चारा घासों का उत्पादन। अभी आप डॉक्टर अनिल सैनी से ये पूर्व प्रसारित वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ आज का खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब एक नजर हमारी इस सभा के शेष और हमारी सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर में दोपहर 2:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार आप सुनेंगे, जो केंद्रित रहेगा अभिनेता आफताब शिवदसानी पर। अपराह्न 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम।

शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स, रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन। हमारे ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है शाम 5:05 पर कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर आप सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे दीपा उपाध्याय के स्वर में कुमावनी लोकगीत। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी का समय रहता है शाम 5:15, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा व्यावहारिक ज्ञान से सवरती राहें। उत्तरायण कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय रहेगा संविधान हत्या दिवस। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे। कलाकार होंगे सोनू निगम और अशोक खोसला। गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे शाम 6:50 पर। शाम 7:30 पर कुमावनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे। किसानवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7 बजे, जिसमें आज की बात का विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ। इसी कार्यक्रम में आज की सलाह दी जाएगी वैज्ञानिक विधि से टमाटर उत्पादन पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे खेती बचाव अभियान संरक्षण जुताई और जल प्रबंधन विषय पर क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। सरकार की 12 वर्ष खरीफ फसलों के उत्पादन एवं फल विपणन विषय पर तारा दत्त तिवारी से भेंटवार्ता किसानवाणी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:40। रात्रि 8 बजे सबरस प्रोग्राम आप सुनेंगे, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे चंदन दास, नीना मेहता, राजेंद्र मेहता, जगजीत सिंह और साथियों के स्वरों में गीत और गजल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष का समय रहेगा रात्रि 9:15। रात्रि 9:30 पर रूपक कहानी ऐसे बनती है और रात्रि 10:30 पर रूपक कल कल गोदावरी आप हमारे स्टूडियो से सुनेंगे। रात्रि 10 बजे सुगम संगीत प्रोग्राम होगा। यदि रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले और इस सभा के शेष कार्यक्रमों की

FM 14.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार।

एक ही फनकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी का प्रोग्राम में बेहद स्वागत और साथ ही कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे आज के फनकार हैं अभिनेता आफताब शिवदासानी। आज है इनका जन्मदिन। श्रोताओं, आफताब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार वर्ष 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया से की। इसके अलावा फिल्म शहनशाह, चालबाज, अव्वल नंबर, सीआईडी और इंसानियत जैसी फिल्मों में आफताब बतौर बाल कलाकार ही नजर आए। करते हैं आज के एक ही फनकार प्रोग्राम का आगाज आफताब शिवदासानी की फिल्म फुटपाथ के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, आफताब शिवदसानी का जन्म वर्ष 1978 में 25 जून को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। वर्ष 1999 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त से उन्होंने बतौर अभिनेता अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए उन्हें नवोदित कलाकार का सर्वश्रेष्ठ जी सिने पुरस्कार और स्टार स्क्रीन पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें वर्ष 2001 में शामिल फिल्म है कसूर, जिसके लिए उन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जी सिने पुरस्कार और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म कसूर का ये गीत।

आफताब शिवदासानी की कुछ मुख्य फिल्में हैं कुसूर, हंगामा, क्या यही प्यार है, क्या कूल हैं हम, फुटपाथ, प्यार इश्क और मोहब्बत, आवारा पागल दीवाना, मुस्कान, मस्त, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई आपसा। श्रोताओं, फिल्म मस्ती, कुसूर और मस्त के लिए आफताब शिवदासानी ने फिल्म पुरस्कार जीते। हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल और कन्नड़ सिनेमा में भी आफताब शिवदासानी ने काम किया। आफताब अब भी कई फिल्मों में सक्रिय हैं अपने अभिनय के जरिए। उनकी फिल्म मुस्कान का ये गीत अब आपके लिए।

श्रोताओं, मुस्कान फिल्म के इसी नगमे के साथ आज का एक ही फनकार कार्यक्रम अब संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्म संगीत एक ही फनकार अभी आप सुन रहे थे, जो केंद्रित था अभिनेता आफताब शिवदसानी पर। एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रोग्राम सदाबहार फिल्मी गीत।

आज का सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी का प्रोग्राम में बेहद स्वागत और साथ ही कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम में आपसे बात होगी हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अलबेले संगीतकार के बारे में जिसने हिंदी सिनेमा को न जाने कितने सुरीले और अर्थपूर्ण गीत दिए हैं। मोहब्बत बयां करनी हो, मोहब्बत की बेचैनी, मोहब्बत की गहराई बतानी हो, दिल के दर्द को बयां करना हो या सस्पेंस यानी रहस्यमयी परिस्थिति दर्शानी हो, प्रेमिका की खूबसूरती बयां करनी हो या करनी हो शिकायत, जिंदगी के हर रंग दिखते हैं उनके संगीत में। उनके संगीत में इतने रंग होने के बावजूद उन्हें ताउम्र ये मलाल रहा कि उन्हें हिंदी सिनेमा का कभी भी कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। श्रोताओं, ये संगीतकार हैं संगीतकार मदन मोहन, जिन्हें आज भी फिल्मों की गजलनुमा गीतों के लिए याद किया जाता है। चलिए आगाज करते हैं आज के सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम का मदन मोहन के सुरों से सजे जेलर फिल्म के इस खूबसूरत

श्रोताओं, आज संगीतकार मदन मोहन की जयंती है। 25 जून वर्ष 1924 को मदन मोहन का जन्म बगदाद में हुआ था। इनका पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। इनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस बल में महालेखाकार के पद पर कार्यरत थे। तबादले के साथ साथ मदन मोहन अपने पिता के साथ पंजाब पहुंचे। इस दौरान लाहौर में रहते हुए मदन मोहन ने लाहौर के करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत की कुछ बारीकियां सीखी। फिर कुछ समय बाद इनका परिवार मुंबई आ गया। मदन मोहन की पढ़ाई मुंबई से ही पूरी हुई। मदन मोहन भी अपने पिता की भांति सेना में भर्ती हो गए और यहाँ 2 साल तक उन्होंने लेफ्टिनेंट के रूप में कार्य किया। मदन मोहन का मन संगीत में पूरी तरह रमा था। उन्होंने सेना छोड़ दी और वर्ष 1946 में वे आकाशवाणी लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में शामिल हुए। मदन मोहन के संगीत से सजा एक और खूबसूरत गीत आइए सुनते हैं अनपढ़ फिल्म से।

श्रोताओं, वर्ष 1946 और 48 के दौरान संगीतकार एस जी बर्मन और श्याम सुंदर के साथ साथ मदन मोहन ने एक सहायक के रूप में कार्य किया। मदन मोहन रहस्यमय फिल्मों के संगीत के लिए बेहद मशहूर हुए। वर्ष 1950 में फिल्म आंखें से उन्हें बड़ी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने मुकेश और शमशाद बेगम के साथ काम किया था। इसी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी के साथ उनके लंबे सहयोग की शुरुआत हुई। वर्ष 1951 में उनकी अगली फिल्म आई अदा, जिसमें लता मंगेशकर के साथ उन्होंने काफ़ी गीत बनाए, जिनका पार्श्वगायन लता मंगेशकर ने किया, क्योंकि दोनों ने उनकी कई फिल्मों के लिए गीत गाए। यहाँ पर सुनते हैं मदन मोहन के संगीत से सजी रहस्यमय फिल्म वो कौन थी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, मदन मोहन की संगीत की खासियत थी कि जब भी वे गीत बनाते थे उन गीतों में शास्त्रीय राग तो सुनने को मिलते ही थे, साथ ही सुनने पर उन गीतों में गजलों का एहसास भी होता था। फिल्म नौनिहाल का ये गीत सुनते हैं जो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की ख़ास आवाज़ के लिए बनाया था।

श्रोताओं, वर्ष 1950 के दशक के उत्तरार्ध, 1960 के दशक और 70 के दशक के आरंभिक दशक में मदन मोहन के करियर का सबसे बड़ा मोड़ आया। इन दशकों में उनके द्वारा रचित गीतों में अदालत, अनपढ़, दुल्हन एक रात की, मेरा साया, दस्तक, हंसते जख्म, हीर रांझा, महाराजा और मौसम जैसी कई फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत तैयार किया। वर्ष 1970 के दशक में मदन मोहन ने मोहम्मद रफ़ी के साथ कई हिट नंबरों की रचना की, जिनमें होके मायूस तेरे दर से सवाली न गया, तेरे दर पे आया हूँ और लैला मजनू के लिए बारदाएं मोहब्बत, इस रेशमी पाजीब की झनकार के सदके, अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए जैसे खूबसूरत गीतों को मदन मोहन ने अपने संगीत से सजाया। जहां एक ओर उनके गीत गजलों का एहसास कराते थे, वहीं मोहब्बत के रंग से सराबोर ये गीत मोहब्बत की दीवानगी भी बयां करता है।

श्रोताओं, मदन मोहन के संगीत को नामांकन तो मिलता, लेकिन उन्हें जीते जी किसी भी फिल्म के संगीत के लिए फिल्म पुरस्कार नहीं मिला। वो फिल्म फेयर कार्यक्रम में तो जाते लेकिन मायूस होकर ही लौटते। और जब मदन मोहन के संगीत को पुरस्कार दिया गया तो पुरस्कार था उनके जीवन का एकमात्र राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो मदन मोहन को फिल्म दस्तक के रागों पर आधारित गीतों के लिए दिया गया। इस फिल्म के गीतों में बेहद सुरीली रागमाला तो है ही, साथ ही फिल्म दस्तक के एक बेहद दिल को छूने वाले गीत के लिए खुद मदन मोहन ने पार्श्वगान किया। आइए सुनते हैं मदन मोहन की आवाज में उन्हीं के संगीत से सजा दस्तक फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, 14 जुलाई वर्ष 1975 को लीवर सोरोसिस से संगीतकार मदन मोहन ने मुंबई महाराष्ट्र में इस फानी दुनिया से विदा ली। संगीतकार मदन मोहन को की कुछ मुख्य फिल्में हैं हकीकत, हंसते जख्म, मौसम, आपकी परछाइयां, जहां आरा, अदालत, देख कबीरा रोया, दुल्हन एक रात की, साहब बहादुर, संजोग, दिल की राहें, जब याद किसी की आती है, बावर्ची,

एक कली मुस्काई, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारी। श्रोताओं, संगीतकार मदन मोहन को संगीत से सजे ऐसे उनके गीत हैं जो कभी ना भूलने वाले गीत हैं। और आज भी एक गीत जो अब मैं कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवा रही हूँ, आज भी वो गीत ऐसा है जो मोहब्बत में डूबे हुए दिलों की धड़कन है।

मदन मोहन के संगीत से सजी आपकी परछाइयां फिल्म के सिनेमा के साथ आज के सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सदाबहार फिल्मी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के ठीक 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपनी अगली सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 4 बजने वाले हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: वरुण वाजपेयी VSN। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं, जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण वाजपेयी VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन एस्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी इस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ, एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स 3 सन्स ऑफ माई पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमिक की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेज, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज NCC कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर्ड फॉर, आफ्टर ड्यू में ग्रेजुएशन क्लेयर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज, और फिर IMA ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं, जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा,
0: okay, मतलब पूरा वो।
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली JNK का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में, क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा, एंड देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहां से एक एकेडमिकली ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई,
0: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस
1: वो वापस घूम फिर के वापस
0: घूम फिर करके आया। लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा था।
1: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है। अच्छा। तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते रहे। हाँ जी, तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से।
0: अच्छा।
1: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में, तो ऑपरेशनली इट्स डिफिकल्ट।
0: ओके, तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी देर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेज। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है, तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं, एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोज, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती है कुछ टाइम के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ विकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा अलग सैंक्टिटी होती है। बट हाँ, फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी।
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहां पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि

0: मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली चिंगचिप करके, वहां पे आपको सैनिक्स को एस्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाए, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा और वहां पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहां पे हमने सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई। अच्छा। जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
1: अच्छा।
0: तो एक बार एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे बिकॉज दैट इज अ प्राइमरीली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अफसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल विच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस उन्हीं के वो टेबल तक आए। बट इट वॉज अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल्स स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
1: अच्छा।
0: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
1: अच्छा।
0: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
1: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो अब पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
0: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
1: अच्छा।
0: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास छठे में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे है,
1: पूरा लाइफ स्टाइल।
0: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को एस्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल तो आपके साथ में आप कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं। तो ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। ठीक है साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकल्केट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वाज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूं कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं।
1: अच्छा।
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी। तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देखा गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है और वो फल फूल रहा है और सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको

0: प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
1: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में पांच टीचर्स लिए आते हैं, पांच टीचर्स और करीब छः सात का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैनेज कर, 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को
0: जी
1: शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
0: बस,
1: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट आपके आँख कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
0: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
1: हमेशा
0: तो एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहाँ आ गया कि शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
1: नहीं सर, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में ये स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, क्योंकि हम सब शायद फेड हो जाएंगे किसी न किसी टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
0: हमेशा के लिए,
1: हमेशा
0: के लिए। और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते रहेंगे।
1: जी जी,
0: तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
1: मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
0: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, ये सब काम उसमें शामिल थे जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त वो क्षण वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको बीएसएम से सम्मानित किया गया
1: जी,
0: तो वो जो मोमेंट था?
1: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से अपने दम से किया पूरा का पूरा
0: जी।
1: हाँ, पर ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने जो मेरे ऊपर उच्च अधिकारी थे उन्होंने उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वाज एक्चुअली अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
0: सर ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था
1: जी।
0: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है
1: जी,
0: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
1: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है, तो अपने आप में बस सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
0: बिल्कुल जी। सर एक चीज यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
1: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
0: ठीक है,
1: जिसको कि एनटीए कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पांचवे में हैं
0: जी,
1: दे कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन।
0: ओके,
1: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
0: अच्छा,
1: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अप्लाई करें तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं।
0: ओके,
1: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती है जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहाँ पर दाखिला होता है, पर यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक आदर्श डाले आते हैं
0: जी,
1: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना डाली जाती है, ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य जाना ही है, पर वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है। हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, चॉइस हो सकती हैं, पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिलता है।
0: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो मजबूत हो जाते हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सर इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
1: यस यस, अगर गूगल करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशंस की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों की अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है जिसपे की जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं।

0: को जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके, तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर सामने आ जाएगा उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो पांचवी पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
0: या जो पास आउट
1: हो चुके हैं
0: हाँ, वो 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल
0: तो 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके, हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स हम देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हेंगे रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ अंजलि लोड फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं।
0: okay.
1: तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माय रोल वाज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम है, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: okay. तो ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एकेडमिक्स में आकर के
1: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम ए इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड, से एक अकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
1: जी, बट हाँ, चार साल हो गए वहां पे। इन 4 सालों में एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है, एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में। और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा।
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा। ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी
0: जी,
1: करी
0: जी।
1: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
0: जी। तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। तो लखनऊ वाला पीजीआई दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, चूंकि और प्लस पीएचडी भी हैं जो कि सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं जहाँ पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे

0: फायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए आप, प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं। जहाँ
0: अगर हम एक लेमैन के हिसाब से समझें या आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो ये बता रहे हैं आप?
1: संस्थान में जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है। अच्छा। कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इम्पोर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे किसी भी पेशेंट के सारे रोगों को उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
0: ओके।
1: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये है कि जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा
0: सर। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताया उनको और बेहतर।
1: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माय ओन डिस्पोजल। यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज और अलग अलग एनवायरमेंट से आती है, तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में, एक तरीके से जहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पे, जहाँ फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, पर द फैक्ट इज की यस बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
0: जी। तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जॉशन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
1: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू, तो वही टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
0: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं,
1: फिर आगे बढ़ते हैं।
0: सर, इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग, एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
1: जी जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक, नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की। अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेज को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, और उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया, तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92, एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए, बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
0: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट था।
1: जी,
0: और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
1: हाँ,
0: इसमें फिर किस तरीके का आपको,
1: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जो जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है, तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
0: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से, मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
1: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
0: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
1: मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज़्यादा से यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
0: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
1: जीवन शैली है,
0: जीवन शैली है, वो एक लाइफ
1: वे ऑफ लाइफ
0: और बहुत ही स्पेशल है,
1: समझता हूँ।
0: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो।
1: जी,
0: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं?
1: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इनफ, सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है, वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि NCC हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर सो मेनी एप्लीकेंट्स, 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं। तो देयर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाएं, नेवी में जा पाएं, एयरफोर्स में जा पाएं। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे। तो वो एक बहुत बहुत वो दुश्वार है।
0: एग्जैक्टली। सर एक चीज यहाँ भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जहाँ आपने बताया कि NCC से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
1: I also got a chance to stay in NCC battalion also. तो NCC में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
0: अच्छा,
1: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में और वो अपना NCC का 11th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है।
0: अच्छा,
1: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक NCC का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी। तो एग्जाम आपको NCC एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपीयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपीयर स्ट्रेट फॉर द SSB आपने पास कर लिया।
0: अच्छा।
1: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि NCC को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं,
0: कम से कम उनके अंदर वो चीज, वो
1: राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड, दैट स्पिरिट
0: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोश और जज्बा और देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है और उसका जानिशार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम PGI के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी एडवांसमेंट हो रहा है, AI का भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है AI हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
1: जी बिल्कुल।
0: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें।
1: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
0: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण बाजपेयी वीएसएम।

आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो वसंत देश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की फिल्म का ट्रैक। आप भी इंजॉय करें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से। 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जिसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट नेगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है। आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI
1: विल
0: अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
1: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में
1: जी।
0: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर

0: स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास फिफ्थ पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास छठे और क्लास नवे में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम एनटीए कराता है और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस, वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन।
0: ओके
1: जी,
0: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: सर। एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर, एनआरजे सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आवर नेशन। आई गिव रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड। वंदे मातरम, भारत माता की जय,
1: भारत माता की जय।
0: तो ये इनका मैसेज था और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं। लेकिन हम सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है
1: जी।
0: तो
1: जी,
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम उसी जिंदगी में लाइफस्टाइल में, तो वो सोशल मीडिया के भी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं वो, आपने अपने तौर पर जो चीज़ें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा
1: जी। जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
0: ओके,
1: तो यही क्लास ट्वेल्थ पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी फोन पे ही इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं
0: जी।
1: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं पांच लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे, या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल रही है।
0: रील्स का जो इस तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे।
1: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी जवान पीढ़ी पौध खराब हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज शॉर्ट तो है ही। आप जैसे मैंने पहले बोला, इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीज़ों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है।
0: सर, एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है
1: जी,
0: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता
1: जी।
0: तो इससे बचने का कोई तरीका, जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं, 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
1: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी हैं।
0: किताबें
1: देखिए साहब, आप
0: बिल्कुल
1: एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है। तो देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट यस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है,
0: ये बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो

0: आपके साथ मैं लवली निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा पर्व और आजादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहले संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक लेख साझा करते हुए ये बात कही। श्री शेखावत ने अपने लेख में आपातकाल के दौर और उनके दौरान लोगों की स्वतंत्रता तथा आकांक्षाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभा

0: राष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंग मनिनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता, रखरखाव की समीक्षा की है। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने गुणवत्ता जवाबदेही बनाए रखते हुए परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 घायल हो गए हैं। स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। इस बीच जापान के उत्तर पूर्वी भाग में आज सुबह 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, इनमें 4 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शैलस्वर कार्यक्रम में लीजिए, आज सुनिए दीपा उपाध्याय का गाया ये कुमावनी लोकगीत।

दीपा उपाध्याय के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का शैल स्वर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा व्यवहारिक ज्ञान से संवरती राहें, साथ ही सुनेगा रोजगार समाचार और आज का इतिहास भी। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज चर्चा होगी संविधान हत्या दिवस, साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे योगा और मोनोपोज विषय पर लमगड़ा के योग प्रशिक्षक हरीश सनवाल से की गई भेंटवार्ता, भेंट करता होंगे हरीश सिजवाली। सोनू निगम और अशोक खोसला की गाई भक्ति रचनाओं का आनंद लीजिएगा संध्या 6:41 पर। किसान वाणी कार्यक्रम में शाम 7:00 आज की बातें का विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, साथ ही इसी कार्यक्रम में सुनिए तारादत्त तिवारी से की गई भेंटवार्ता, विषय होगा सरकार के 12 वर्ष खरीफ फसलों के उत्पादन एवं फल विपणन। 7:40 पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष आप सुनते हैं रात्रि 9:15 पर। सबरस कार्यक्रम का प्रसारण समय होता है रात 8:00 और सुगम संगीत सुनेगा रात्रि 10:00। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपक कहानी ऐसे बनती है। 10:30 पर पुनः सुनेगा रूपक कल कल गोदावरी। ये थी रूपरेखा इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। 6:05 पर विचार बिंदु, जिसके पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा आराधना। आज की बात हम लेकर आते हैं प्रातः 6:40 पर। 6:45 पर देशभक्ति गीत और विविधा कार्यक्रम होगा 6:50 पर। कल रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून

देहरादून केंद्र से रिले होंगे। रामचरितमानस गान पाठ से अगला प्रसंग सुनेगा प्रातः 7:10 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा का प्रसारण समय हुआ प्रातः 7:45। घर संसार कार्यक्रम में कल दिन में 12:30 पर बहनें सुनेंगी सामाजिक बने रहने की खूबसूरती विषय पर अल्मोड़ा की वरिष्ठ महिला श्रीमती पार्वती भंडारी से प्रीति जाटव की क्षेत्र संकलित बातचीत। 2:30 पर आप सुनते हैं खेती की बातें कार्यक्रम। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी सुनेगा कल दिन में 1:30 पर। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा अच्छे श्रोता बने और अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। सिने जगत के अंतर्गत जानेगा गायक नितिन मुकेश के बारे में। 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में कल चर्चा के विषय होंगे मुहर्रम, छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती, योगा फॉर मोबिलिटी एंड बैलेंस विषयों पर। शाम 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम में आज की बातें का विषय होगा पर्वतीय क्षेत्रों में एलोवेरा की खेती। साथ ही सुनेगा भेंट वार्ता खेती बचाओ जैविक खेती के फायदे विषय पर। कल रात 8:00 आप सुनेंगे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशे की जद में युवा कैसे करें पहचान और नशा मुक्ति का समाधान विषय पर मनोवैज्ञानिक सुश्री दुर्बा पंत से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे संजय जोशी। कल सुबह 8:30 पर शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे। सबरस कार्यक्रम होगा 10:05 पर। सबरस रात 8:00। सुगम संगीत सुनेगा दिन में 1:15 पर और रात्रि 10:00। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे लता मंगेशकर और चंदू आत्मा। कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी प्रातः 7:30 पर और शैलसम शाम 5:05 पर। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दिन में 2:00। लोकसुर कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा कल सुबह 11:30। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत कल आप सुनेंगे गीत निर्झर कार्यक्रम में सुबह 9:05 पर। 10:35 पर सुरबहार कार्यक्रम में सुबह 11:00 सैनिकों के लिए। दिन में 12:00 मेरी पसंद। 2:45 पर फिल्म संगीत एक ही फनकार। अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम। फिल्म संगीत कल शाम आप सुनेंगे 7:40 पर और रात्रि 10:30 पर। कल रात्रि 9:15 पर होगा इंद्रधनुष कार्यक्रम और रात्रि 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र मीनाक्षी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यवहारिक ज्ञान से संवर्ती राहें विषय पर। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, किताबें हमें जीना सिखाती हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमें जीना आसान बना देते हैं। अक्सर हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा डिग्रियों को हासिल करने, किताबें रटने और परीक्षाओं में अव्वल आने में बिता देते हैं। बेशक ये किताबी ज्ञान हमारी बौद्धिक प्रगति के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि जब जीवन असल इम्तिहान लेती है, तब कौन सा ज्ञान काम आता है? तब काम आता है हमारा व्यवहारिक ज्ञान, हमारा अनुभव और हमारा कॉमन सेंस। किताबी ज्ञान हमें ये बता सकता है कि कोई समस्या क्या है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमें सिखाता है कि उस विपरीत परिस्थिति में शांत रहकर रास्ता कैसे निकालना है, हमारे

कई लोग हैं जो शायद कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन अपने पारंपरिक हुनर, सूझबूझ और मेहनत से समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। चाहे वो खेतों में पसीना बहाता किसान हो या प्रकृति के बीच रहकर हस्तशिल्प को सहेजता कोई आम इंसान, उनका यही व्यवहारिक ज्ञान उनकी और हमारी संस्कृति को संवारता है। ज्ञान चाहे कितना भी हो, जब तक वो आचरण और व्यवहार में न उतरे तब तक वो केवल सूचना मात्र हैं। इसलिए आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम केवल किताबी पन्नों तक सीमित नहीं रहेंगे। हम अपने बड़ों के अनुभवों से सीखेंगे, अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे और अपने ज्ञान को कर्म में बदलेंगे। क्योंकि जब हमारा ज्ञान व्यवहारिक होगा तभी हमारा समाज, हमारा देश सही मायने में आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, व्यवहारिक ज्ञान हम सभी के जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। तो चलिए, अब हो चला है समय आपके मनोरंजन का, तो पेश है आप सभी के लिए यह खूबसूरत सा गीत।

0: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में बढ़ते हैं हमारे आज के अंक रोजगार समाचार की ओर और जानते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण रोजगार समाचारों के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के 1500 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आयु सीमा न्यूनतम 21 व अधिकतम 30 वर्ष दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर विजिट कर सकते हैं। ESIC के अंतर्गत प्रोफेसर के कुल 118 पदों पर आवेदन मांगे हैं। अंतिम डेट इसकी 27 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट esic.government.in पर विजिट कर सकते हैं। इसरो ISTRSC में मौका अप्रेंटिसशिप के 95 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। इसके लिए योग्यता ITI डिप्लोमा, BTEC व अन्य पात्रताएं दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कीजिए istro.government.in पर। AAI CLES में असिस्टेंट के 62 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसकी लास्ट डेट 2 जुलाई 2026 है और इसके लिए पात्रताएं 12वीं व अन्य निर्धारित पात्रताएं दी गई हैं। अधिक जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट aaiclas.aro से ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एम्स भोपाल में भी सीनियर रेजिडेंट के 57 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2026 है और पात्रताएं इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, MD व अन्य निर्धारित पात्रताएं दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है aimsbhopal.education.in। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण रोजगार समाचार। चलिए कार्यक्रम युववाणी में अब सुनाते हैं आपको वार्ता। वार्ता का विषय है ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन और वार्ताकार हैं चंद्रा आर्या।
1: आदिम काल से लेकर आज के इस डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग तक मानव सभ्यता के विकास की कहानी वास्तव में ऊर्जा के नियंत्रण और उपयोग की कहानी है। आग की खोज से लेकर पहिए के आविष्कार तक और औद्योगिक क्रांति से लेकर आज के बड़े बड़े कारखानों और स्पेस रॉकेट्स तक हर जगह ऊर्जा की मुख्य चालक शक्ति रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक और यहां तक कि सोते समय भी हम किसी न किसी रूप में बिजली, इंटरनेट, वाहनों या गैजेट्स का उपयोग कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो ऊर्जा के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना असंभव है। लेकिन पिछले 2 दशकों में हमने अपनी ऊर्जा की असीमित भूख को शांत करने के लिए प्रकृति का बेरहमी से दोहन किया है। हम मुख्य रूप से

जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर निर्भर रहे हैं। ये वे संसाधन हैं जिन्हें बनने में पृथ्वी के गर्भ में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा है। विज्ञान हमें चेतावनी दे रहा है कि जिस गति से हम इनका उपयोग कर रहे हैं, अगले कुछ दशकों में ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं नवीकरणीय संसाधन के बारे में। सरल शब्दों में कहे तो नवीकरणीय ऊर्जा से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जो ऐसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती है जो कभी समाप्त न होते और जो उपयोग के बाद स्वतः ही प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। इसे हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, यानी जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। जीवाश्म ईंधन के विपरीत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के लिए हमें जमीन को मीलों गहरा खोदकर पर्यावरण को तबाह करने की आवश्यकता नहीं होती। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर बिखरी हुई है, सूर्य की किरणों में, बहती हुई हवाओं में, नदियों के उफनते पानी में, समुद्र की लहरों में और यहाँ तक कि हमारी धरती के भीतर की गर्मी में भी। यह प्रकृति का वह मुफ्त उपहार है जो अमीर, गरीब, विकसित, विकासशील हर देश के लिए समान रूप से उपलब्ध है। जब हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो इसे मुख्य रूप से 5 या 6 बड़े स्तंभों में विभाजित किया जा सकता है। आइए प्रत्येक को गहराई से समझें। सौर ऊर्जा। सूर्य हमारे सौरमंडल की ऊर्जा का एकमात्र और अंतिम स्रोत है। भारत जैसे देश के लिए जहां वर्ष में 300 से अधिक दिन धूप खिली रहती है, सौर ऊर्जा एक वरदान है। आइए चलिए जानते हैं यह काम कैसे करती है। छतों या खुले मैदानों में लगे सिलिकॉन से बने फोटोवोल्टिक सेल्स सूर्य की किरणों को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इसके अलावा सोलर थर्मल सिस्टम के जरिए सूर्य की गर्मी से

0: सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। चलिए अब जानते हैं जल विद्युत ऊर्जा के बारे में। यह नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे पुराना और आज भी सबसे बड़ा वाणिज्यिक रूप है। इसके काम करने का तरीका जानते हैं। नदियों पर बड़े बांध बनाकर पानी को ऊंचाई पर रोका जाता है। जब इस पानी को तीव्र गति से नीचे गिराया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा भारी टर्बाइनों को घुमाती है जिससे बिजली बनती है। और इसकी विशेषता ये है, ये भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। टिहरी बांध जैसी परियोजनाएं इसका उदाहरण है। बायोमास और बायोगैस ऊर्जा, यह हमारे ग्रामीण भारत और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। आइए जानते हैं यह कार्य कैसे करती है। पेड़ पौधों के अवशेष, कृषि अपशिष्ट, पशुओं का गोबर और शहरों का जैविक कचरा, इन सबको जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है तो मीथेन गैस बनती है जिसे बायोगैस कहते हैं। इसके अलावा गन्ने की खोई या कुछ विशेष पौधे जैसे जेट्रोफा से बायो डीजल और इथेनॉल जैसे जैविक ईंधन बनाए जाते हैं। इसके लाभ इस रूप से हैं, यह न केवल ऊर्जा देता है बल्कि कचरा प्रबंधन की समस्या को भी हल करता है। भूतापीय ऊर्जा, हमारी पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक गर्मी और पिघला हुआ लावा है। कई जगहों पर यह गर्मी गर्म पानी के झरनों या भाप के रूप में सतह पर आती है। जमीन के अंदर गहरे कुएं खोदकर इस प्राकृतिक भाप को बाहर निकाला जाता है और इससे टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। चलिए अब हम जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकताएं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हमारे पास कोयला और तेल मौजूद हैं, तो हम इन नए संसाधनों पर अरबों रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं। इसके तीन सबसे बड़े कारण हैं, जिसका पहला कारण कुछ इस प्रकार है। आज हमारी धरती बुखार से तप रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम का चक्र बदल चुका है और कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ तबाही मचा रही है। इसका मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधनों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जीरो कार्बन उत्सर्जन की श्रेणी में आते हैं। ये वायु प्रदूषण को समाप्त करते हैं और हमारी हवा को सांस लेने योग्य बनाते हैं। चलिए दोस्तों, इसका हम दूसरा कारण जानते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80-85% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। इसके लिए हमें हर साल लाखों करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है। यदि हम सौर और पवन ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाएं, तो हमारा यह पैसा बचेगा जिसका उपयोग हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम तीसरा कारण जानते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र केवल बिजली नहीं देता बल्कि रोजगार के नए द्वार खोलता है। सोलर पैनल बनाने, उन्हें स्थापित करने, पवन चक्कियों के रखरखाव और नई तकनीकों के अनुसंधान में लाखों इंजीनियरों और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम जानते हैं इसकी चुनौतियाँ और समाधान। यह सच है कि अक्षय ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन इस राह में कुछ वास्तविक चुनौतियाँ भी हैं जिसे हमें स्वीकार करना होगा। जिसका पहला कारण यह है, मौसम पर निर्भरता। सूरज रात में नहीं चमकता और हवा हमेशा एक गति से नहीं चलती, इसलिए 2400 घंटे एक समान बिजली मिलना मुश्किल होता है। इसका समाधान कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक बड़ी बड़ी लिथियम आयन और ग्रीन हाइड्रोजन आधारित स्टोरेज बैटरियों पर काम कर रहे हैं ताकि दिन में बनाई गई बिजली को रात के लिए स्टोर किया जा सके। इसका दूसरा कारण है उच्च प्रारंभिक लागत। एक आम किसान या नागरिक के लिए घर पर सोलर सिस्टम लगाना शुरुआत में थोड़ा महंगा होता है और इसका समाधान है, सरकारें इसके लिए भारी सब्सिडी दे रही है, जैसे भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अंत में यही कहना चाहूंगी कि नवीकरणीय ऊर्जा अब एक केवल वैज्ञानिक विषय या सरकारी नीति नहीं रह गई। यह समय की सबसे बड़ी पुकार है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमे, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध उपयोग हमें प्रदूषण और विनाश के अंधकार की ओर धकेल रहा है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा हमें एक सबसे सुंदर और स्वस्थ प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग है। यह लड़ाई केवल सरकारों या बड़ी कंपनियों की नहीं है, एक नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है। आइए आज इस मंच से हम सब यह संकल्प ले कि हम ऊर्जा के इन प्राकृतिक स्वच्छ और कभी न खत्म होने वाले संसाधनों का बढ़ावा देंगे, अपनी धरती को बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा संसार सौंपेंगे जहां हवा शुद्ध हो, पानी साफ हो और ऊर्जा अटूट हो।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ता का विषय था ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन। वार्ताकार थी चंद्रा आर्या। अब एक बार फिर से दोस्तों ले चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर और सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, वक्त की सुइयां लगातार चलती रहती हैं, लेकिन कुछ तारीखें, कुछ दिन वक्त के सीने पर अपने गहरे निशान छोड़ जाते हैं। जब हम पलट कर इतिहास के पन्नों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि आज हम जहां खड़े हैं उसके पीछे अतीत की कौन सी बड़ी घटनाएं रही हैं। आज तारीख है 25 जून, तो आइए जानते हैं कि आज का ये दिन इतिहास के झरोखे से हमारे लिए क्या कुछ समेटे हुए हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो आज का दिन स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे संवेदनशील दिन माना जाता है। आज से ठीक 51 साल पहले यानी 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत देश में आपातकाल लागू किया था। यह आपातकाल 21 महीनों तक यानी मार्च 1977 तक लागू रहा। चलिए अब इतिहास के उस पन्ने की तरफ बढ़ते हैं जो हर भारतीय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और सीने में गर्व भर देता है। साल था 1983 और तारीख 25 जून। लंदन का ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान क्रिकेट की दुनिया में तब वेस्ट इंडीज का एक छत्र राज हुआ करता था और भारतीय टीम को कोई कम आंकने की भूल भी नहीं करता था। उन्हें अंडरडॉग माना जाता था, लेकिन कपिल देव के नेतृत्व में कपिल स्टेवल्स ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं थी। भारत ने फाइनल में शक्तिशाली वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराकर पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था। अगर हम वैश्विक इतिहास और कूटनीति की बात करें तो आज का दिन एक महाविनाशक युद्ध की शुरुआत का गवाह है। आज के दिन 1950 में उत्तर की सेनाओं ने अचानक दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया था। इस घटना ने कोरिया

0: 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: दोस्तों, कार्यक्रम में हो चला है समय अंतिम चरण का, तो चलिए जान लेते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। हमारा कल का प्रश्न था, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, जिसका सही उत्तर है भारत के चौथे राष्ट्रपति VV Gree थे। अब नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, कोरियाई युद्ध कब शुरू हुआ। अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर और भेजना चाहते हैं हमें, तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9411001112। कल फिर होगी मुलाकात एक नए रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी रेडियो मित्र मीनाक्षी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के हरीश सिंह सिजवाली नमस्कार। श्रोताओं, आज एक दिन यानी 25 जून के संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करी जा जै कारण छु कि 25 जून 1975 एक रात हूँ हमारे देश में आपातकाल लागू करी गई थी। यह दिन हमन के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के याद दिलों। 25 जून 1975 आपातकाल आज़ादी के बादक इतिहासों सबसे काऊ अध्यायों में एक छू। यह दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबित कर दी गो और प्रेस एक स्वतंत्रता के लिए अंकुश लगा दी गो और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खामोश कर दी गो। 25 जून 1975 में 21 मार्च 1977 तक यह अवधि आपातकालीन अवधि मानी जाए। यह दिवस उन लोगों के याद करने के लिए मनाई जा जनूल आपातकालीन समस्याओं के भोगो और यह दिन उन्हीं वाली पीढ़ी के लिए नागरिकों के अधिकार और लोकतंत्र रक्षा में संविधानक महत्व के बारे में शिक्षित करूँ। तो सो तो यह अच्छी बातचीत कार्यक्रम में अगला आपको सुन लग रहा गोकुल विष्ट और दगड़ियों गई यह लोकगीत।

0: श्रोता वाला बोल सुनो गोकुल विष्णु और दुगुनियों का ये लोक गीत।
1: घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
3: जागो ग्राहक जागो।
1: सुनील
0: कार्यक्रम में अगला बहुत सुन लग रहा योग और मेनोपॉज विषय पर योग प्रशिक्षक हरी सनवाल लमगढ़ करी गई भेंट।
4: हमारे साथ भेंट वार्ता पर उपस्थित हैं योग प्रशिक्षक हरी सनवाल जी, विकास खंड लमगढ़ से। सनवाल जी नमस्कार।
5: नमस्कार जी। नमस्कार
4: सनवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनवाल जी, आप आज हमारे ये ग्रामीण महिलाओं को थोड़ा सा योग के विषय में समझाएंगे कि इनको कौन कौन से योग आसन जो हैं इनको करने चाहिए और योग करने से इनको क्या फायदा होगा।
5: जी, तो इसमें यह है कि हम जैसे हम लोग सोचते हैं कि गांव में काम धंधा करते हैं महिलाएं, तो कहते हैं हम कहीं भी किसी से योगा के लिए कहते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि हम तो काम धंधा करते हैं तो योग ऑलरेडी हो जाता। अधिकतर लोगों का कहना ये होता है गाँव में, क्योंकि योग एक ऐसी क्रिया है उसके बहुत फायदे हैं। हम अगर शारीरिक मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो वो चीजें नहीं मिलती हैं उसमें।
4: बिल्कुल,
5: क्योंकि योग एक ऐसी चीज है कि योग नाम से ही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है इसमें।
4: जी।
5: और जैसे कहा भी गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा, जो श्लोक दिया गया है चित्त वृत्ति निरोध, कि हमारे चित्त की जो भी वृत्तियां हैं, हमारे शरीर में जो भी कमियां हैं उनका निरोध करना, उनको ठीक करना हमारे योग में लिखा गया है। तो योग से एक हमारा जो योग होता है तो उससे बहुत सारे फायदे हमारे शरीर में होते हैं, और खासकर महिलाओं के लिए जो आज के समय में जो हमारा खान पान बिगड़ते जा रहा है, दूषित हो रहा है, तो उससे भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है महिलाओं के। हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है जिससे, क्योंकि महिलाओं में अनियमित माहवारी का होना और पीरियड के दौरान अधिक रक्तस्राव होना या फिर उसका क्या कहते दर्द अधिक होना, तो ये चीजें बहुत सारी हैं जो महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत, और जो सफेद पानी निकलना जिसे श्वेत प्रदर रोग कहते हैं, ये चीजें जो होती है महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। और कुछ लोग बता भी नहीं पाते हैं, कुछ लोग बताते हैं तो डॉक्टर उनको दवाई देते हैं, लेकिन आज के समय में जो है कि इंग्लिश दवाओं से हम एक दवा खाते हैं तो उसमें कई बीमारियां और भी हो जाती हैं उसके साथ साथ। योग एक ऐसी चीज है कि उसमें हमें समय लेना है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। बाकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसमें कुछ आसन ऐसे हैं जो जैसे बद्धकोण आसन है। बद्धकोण आसन एक जैसे बटरफ्लाई, हम तितली आसन उसको कहते हैं।
4: जी।
5: दोनों पैर मिला के हम उसमें पैरों को हिलाते हैं तितली की तरह, और उसमें सांस लंबी लंबी सांस भरनी होती है। हम अभी अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी बैठ के मैट में या चटाई में बैठ के सुबह सुबह हम खाली पेट उसको करेंगे तो इसमें हमें बहुत आराम मिलेगा। पीरियड के दौरान जो दर्द होता है उसमें भी आराम मिलेगा, और जो हमारी अनियमित माहवारी होती है उसमें भी आराम मिलेगा। और साथ में है मलासन है, एक मलासन ऐसा है कि घुटनों के बल हमको बैठना है, जैसे हम पखाने में बैठते हैं उसी तरीके से बैठना है हमने, घुटनों के बल मलासन उसको कहा जाता है। और दूसरा आसन होता है उसी में मलासन भाग टू होता है, उसमें हम मलासन वॉक करते हैं, उसमें जैसे हम बैठे हैं पखाने में जब हम बैठते हैं तो उस तरीके से बैठ के हमने चलना है, थोड़ी देर हमने चलना है और लंबी लंबी सांसें लेनी है उसमें, उससे भी हमको आराम मिलेगा। और दूसरा है वज्रासन, दोनों पैर मोड़ के हमको बैठ जाना है वज्रासन की तरह, वज्रासन में बैठ जाना है और लंबी लंबी सांसें लेनी है। इसको तो हम कभी भी खाना खाने के बाद भी अगर हम इस आसन को करते हैं तो हमारी पाचन क्रिया भी ठीक होती है, और साथ में ये जो पीरियड के दौरान हमारा दर्द होता है वो भी कम होता है। साथ में एक आसन है हमारा जो दीवार के सहारे हम पैरों को खड़ा करते हैं, और जैसे दीवार है उसके सहारे लेट के पैरों को दीवार पर खड़ा कर देते हैं, तो धीरे धीरे सांस लेते हैं और उसको पैर जितनी देर हम ऊपर रख सकते हैं उतना धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, तो उससे भी हमारे पीरियड में और जो अनियमित माहवारी होती है और जैसे मिसकैरेज की समस्याएं हो जाती हैं, PCOD की समस्या हो जाती है, तो इसमें भी हमें उसमें आराम मिलता है। हमारे शरीर में जो

0: पंच प्राण हैं, प्राण अपान उदान ज्ञान और समान, ये हमारे जो प्राण कोशिकाएं होती हैं ये हमारे संतुलित होते हैं। और साथ में एक है हैप्पी बेबी पोज है, जिसको जैसे बेबी हमारा जब छोटा बच्चा होता है तो पैरों को ऊपर करके वो अपने पैरों को पकड़ के हंसता है, हैप्पी बेबी पोज कहा गया है इसको। तो इस आसन को भी कर सकते हैं हम, उसमें अपने पैरों को हाथ ऊपर पीठ के बल लेट जाते हैं, पैरों को ऊपर करके वो हाथों से पैरों को पकड़ते हैं और लंबी लंबी सांस लेते हैं। इस आसन से भी हमें बहुत आराम मिलता है पीरियड के दौरान जो दर्द होता है और दिक्कतें होती हैं। और इसी में फिर एक आसन होता है शवासन में लेट जाते हैं, पीछे पीठ के बल लेट गए हम, पूरा शरीर ढीला छोड़ गया, उसके बाद बटरफ्लाई की पोज में अपने पैरों को मिलाते हैं, दोनों पैरों को मिला के बटरफ्लाई की तरह लिहाज करते हैं। तो इसमें भी हमें, क्योंकि महिलाओं को मैं जो इसलिए बता रहा हूँ कि आज के समय में जो ज्यादातर एक तो अनियमित महामारी और दूसरा पीरियड का समय पर ना आना और दर्द होना, तो ये चीजें और मिसकैरेज का होना, ये बहुत सारी महिलाओं में समस्याएं हैं। और इसमें साथ साथ फिर हम अनुलोम विलोम एक प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम, दाएं नाक से हम लंबी सांस भरते हैं और दाएं नाक बंद करके अंदर खींचते हैं, फिर बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से छोड़ते हैं, उसी को बार बार अभ्यास करते हैं, 2.5 सेकंड में सांस बाहर लेते हैं दूसरी नाक से फिर अंदर खींचते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इसमें बहुत लाभदायक है। और इसमें फिर हम एक करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, दोनों उंगुलियों से जैसे कान बंद करते हैं और उंगुलियां माथे पे आंखों पे रखते हैं और भौंरे की गुंजन करते हैं, ओम का उच्चारण हम मनीमन करते हैं भौंरे की गुंजन की तरह, तो इससे भी बहुत हमें आराम मिलता है। और वैसे मैं यूट्यूब में भी बताते रहता हूँ, अगर कोई अगर उसमें भी देखना चाहे, मेरा है योगी हरी सनवाल करके यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि योग ऐसा है देखने से होता है, बताने से तो हम बता देंगे लेकिन जब वो देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं, क्रियाओं को देखने से पता चलता है कि हम कैसे इस क्रियाओं को करते हैं, तो उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। तो ये चीजें हैं सर, वैसे तो बहुत सारे आसन प्राणायाम है, तो क्योंकि अब इसमें समय की भी बाध्यता होती है, ये चीजें हैं
1: जी। सनवाल जी जैसे कि महिलाएं जिस समय जैसे मासिक धर्म में होती है
0: जी,
1: या रजो धर्म में होती है, तो उस समय मतलब सुनने में आता है कि उस समय जो है मानसिक तनाव काफी ज्यादा होता है।
0: हाँ।
1: तो उस समय जैसे आपने बताया कि भ्रामरी है या फिर
0: ये बहुत फायदा करता है उसमें, क्योंकि उनका मानसिक तनाव भी दूर होगा और साथ में जो शारीरिक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। जो बाकी तो मैंने जो आसन बताए वो तो जो शारीरिक कतें या फिर दर्द है उसके लिए है, लेकिन जो दिमाग के लिए जो हमारे को संतुलित करेगा तो वो ये प्राणायाम बहुत लाभदायक है।
1: सुनवा जी, बहुत ही लाभदायक बातें आपने हमारे ग्रामीण अंचल की महिलाओं को बताई, जो कारोबार में अपना इतना ज्यादा व्यस्त हो जाती है कि योग करने का तो मतलब उनको समय ही नहीं होता, लेकिन
0: बिल्कुल नहीं होता।
1: हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना है कि महिलाओं से कि आप चाहे 15 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए,
0: हाँ 10 मिनट निकालें, 5 मिनट निकालें, शुरुआत में अगर समय नहीं है तो 5 मिनट, धीरे धीरे उसको अगर अपने जीवन में हम योग को जीवन में लाएंगे तो एक तो बीमारियां नहीं होंगी, दूसरा हमें दवा गोली के सहारे नहीं रहना पड़ेगा और स्वस्थ रहेंगे लंबी उम्र तक।
1: तो सुनवाल जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे ग्रामीण अंचल की महिलाओं को और क्या संदेश देना चाहेंगे योग के विषय में?
0: मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को भी योग को अपनाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आज महिलाएं क्या है, अपने बच्चों को देखती हैं, पति को देखती हैं, लेकिन अपना ध्यान कभी नहीं रखते हैं। अधिकतर महिलाएं, ये होती हमारे घरों में भी होता है, अपना खाना खाएंगी या नहीं खाएंगी वो उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो महिलाएं अपना शरीर का भी ध्यान रखें, तभी वो परिवार का भरण पोषण करेंगी, परिवार को भी पालेंगी और पति की भी सेवा का तभी कर पाएंगी जब वो स्वस्थ रहेंगी। तो इसके लिए उनको योग का भी साथ लेना है, योग भी करना है और खान पान पर विशेष ध्यान रखना है अपने खान पान पर। मैं यही कहना चाहूंगा कि महिलाएं अब दूसरों का हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है, लेकिन अपना ख्याल भी उनको रखना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे ग्रामीण महिलाओं को जो भी बताई है, आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सनवाल जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: योगा और मेनोपोज विषय पर योग प्रशिक्षक श्री हरीश सनवाल द्वारा करी गई भेंट।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र।

0: तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, योग हमारे जीवनक आधार छु और सबों के योग निरंतर करण से हैं। योगल ठुल ठुल रोग दूर है सकनी और स्वस्थ शरीर हमार विकास हों। श्रोताओं, हमार ग्रामीण अंचलों की महिला योग बहुत कम करनी। अगर इन्हें योग करने की बात अगर करी जाए तो ये बतौनी कि इनके योग करने का वक्त बिल्कुल नहीं मिलन। अपन कामन में इतना ज़्यादा व्यस्त है जानी कि जेल इनू में अनियमित महामारी गर्भपात जैसी समस्या बहुत देखने उन लग रहे। मासिक धर्म सही वक्त पर नहीं हों या कष्टदायी होने लगे योग के निकलने के कारण छू। यह सब समस्याओं के दूर करने की क्षमता योग में छू। तो आपको चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट निकालो, योग जरूर करो। योग में आपको कहें अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी, तितली आसन जैसे बद्ध कोण आसन लो कही जा, मलासन, वज्रासन, हैप्पी बेबी पोज आसन, सवासन, यह सब योग आपको कहें निरंतर रोज करना चाहिए। जैर आपको दिनचर्या बहुत फल है जाए और मानसिक तनाव को कम करने की शक्ति योग में छू। श्रोताओं, आपको योग में अगर थोड़ा ध्यान डाला तो आपको कहें दवाई में अगर छुटकारा पाँचो तो योग कहें अपने जीवन में शामिल करण हो। आपको शरीर के अगर स्वस्थ धारणा लीजिए, आपको कहें आपको मासिक धर्म के सही धारणा लीजिए, रजो धर्म संबंधित जो तो रोग छन यो योग कर भेद सब ठीक है सकनी। मन अशांत होने पर ले योग बहुत सहायक हों। देख लीजिए आपको योग दगड़ आज बटी नाता जोड़ो। तो श्रोताओ, यह तीसरी बातचीत कार्यक्रम में अखिल हम आपको सुनो लग रहे हैं विमला बोरा और दगड़ियों गाई यो लोकगीत।

श्रुत वल्लभन सुनो विमला बोरा और दगड़ियों के ये कुमाऊनी लोकगीत में और कार्यक्रम में अगला वो सुन लग रहा रेखा उन्यालक गई गढ़वा लोकगीत।

0: श्रोता वाला बोल सुना रेखा उन्हें अलग गई जो गढ़वाल लोक की।
1: घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
3: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अखिल आपको सुनो लग रहा प्रहलाद सिंह मेहरा गई जो कुमाऊनी लोक गीत।

श्रोताओं, प्रहलाद सिंह मेहरा गई यही लोकगीतक दगड़ी। आज अग उत्तरायण कार्यक्रम संपन्न करने का बखत है गो। भोल फिर भेंट होल, तब तक अग्नि जी हरी सिजवाली के दियो आज्ञा। नमस्कार।

0: और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
1: मिलते हैं ना इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
0: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
0: और परिणाम?
1: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
0: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
3: श्रोताओं विले तो आप लोग सुनी रेवार और रेवार की आगे लो तो सुनी हीरा सिंह राणा के स्वर मंच कुमाऊनी गीत। और श्रोताओं समय रही उत्तराखंड मंच प्रादेशिक समाचार का, आओ सुनो थोड़ी देर मंच उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:28 होने वाले हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलों की 4098 पात्र बालिकाओं के बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बाल सुधार गृह व किशोरी गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और निर्जला एकादशी पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान हत्या दिवस पर आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने सत्ता बचाने के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और संविधान की मूल भावना को आघात पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के त्याग, साहस और संघर्ष के कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित हो सकी। श्री धामी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए उनके संघर्ष को सदैव स्मरण रखा जाएगा।
1: जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा के महान निर्माताओं ने देश को समर्पित किया था आपातकाल के दौरान, उसी संविधान को तार तार करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए लोकतंत्र को बंधक बनाया, संविधान की गला घोटने का घोर अपराध किया और उस वक्त सारे अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और जो भी उस सरकार के खिलाफ बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। देश की जनता को भय और दमन के वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, न्यायपालिका को भी बंधक बना लिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी और क्या था। और कांग्रेस का जो विभत्स चेहरा था वो पूरे देश के सामने आया और एक परिवार के आगे, अहंकार के आगे लोकतंत्र और संविधान उसकी धज्जियां उड़ा दी गई।
0: नंदा गौरा योजना के तहत आज हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलों की 4098 पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डीबीटी के माध्यम से इन बालिकाओं के बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 2025-26 में प्रदेश की 33,251 पात्र बालिकाओं को इस साल 26 फरवरी को ही योजना का लाभ दिया जा चुका था। श्रीमती आर्या ने कहा कि हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले की कुछ पात्र बालिकाओं की आवश्यक औपचारिकताएं व जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके कारण उन्हें उस समय लाभ नहीं मिल पाया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज इन पात्र बालिकाओं को योजना की सहायता राशि प्रदान की गई।
2: हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी।

0: दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया है। और मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से नंदा गौर योजना का लाभ प्राप्त करते हुए वे बालिकाएं आगे ऊंचे मनोबल के साथ में उच्च शिक्षण में भी अध्ययन कर रही हैं और निश्चित रूप से एक लैंगिक समानता को लेकर जो भी हमारा लक्ष्य है उस और भी निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
1: कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आज उत्तरकाशी जिला मुख्यालय स्थित स्मार्ट कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर वहां संचालित आधुनिक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें कंट्रोल रूम में स्थापित सीसीटीवी नेटवर्क, रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया। कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न स्थानों की निगरानी संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में तकनीक के प्रभावी उपयोग की सराहना की। उन्होंने आमजन की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्मार्ट निगरानी प्रणाली का और अधिक प्रभावी ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आज केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बाल सुधार गृह व किशोरी गृह का स्थलीय निरीक्षण कर वहां संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आवासीय संस्थानों में रह रहे बच्चों और महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
3: मैंने जो नारी निकेतन का और जो हमारे अंडर 18 के जो बच्चे होते हैं उनका जो निरीक्षण किया, उसमें जो व्यवस्थाएं उससे रिलेटेड या उनको जो हमारा जो प्रोबेशन ऑफिसर और एक पूरा पैराफर्निलिया देख रहा है तो उनको रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए और उनसे इंटरेक्शन भी किया गया। उनकी समस्याओं या उनके जो फ्यूचर प्लान है, उनको बच्चों के जो स्टडीज कर रहे हैं, कई सारी बच्चियाँ स्टडी कर रही है, जो अंडर 18 जो बच्चे हैं एडोलेसेंस वाले वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को समझने की भी कोशिश की और उनकी जो ओवरऑल व्यवस्था है उनको भी मेरे द्वारा देखा गया।
1: निर्जला एकादशी के अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। विशेष रूप से हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही, जहां भक्तों ने माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। वहीं आश्रम अखाड़ों में भी निर्जला एकादशी पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान, जलदान और अन्नदान करने से हजार अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। वहीं स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की व्यापक व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से स्नान कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ विकास खंड के मक्कू गांव में 14 दिवसीय रिंगाल व बांस शिल्प प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। SBI RCT रुद्रप्रयाग की ओर से संचालित इस निशुल्क प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रतिभागियों के रहने और भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई है। RCT के निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखंड की पारंपरिक रिंगाल कला को संरक्षित और प्रोत्साहित करने में भी अहम भूमिका निभा रही है।
4: SBI RCT रुद्रप्रयाग द्वारा मक्कू ग्राम में जैसा कि 14 दिवसीय बांस एवं रिंगाल उत्पाद का जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में हमारे पास 30 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हमारे द्वारा उनको बांस एवं रिंगाल से जो उत्पाद है, स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध संसाधन है, उनसे क्या क्या उत्पाद बना के वो अपने स्वरोजगार में वृद्धि कर सकते हैं वो इस पूरे प्रोग्राम में सिखाया जा रहा है। इससे क्या होगा, एक तो रिंगाल की जो कला है उसका संरक्षण भी होगा, दूसरा जो रिंगाल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है उससे महिलाएं अपने नए नए उत्पाद बना के जैसे कि टोकरी हो गए, डस्टबिन हो गए और कई तरह के सजावटी सामान हो गए उससे अपने स्वरोजगार में बढ़ोतरी कर सकती है।
1: प्रशिक्षक वीरेंद्र बर्थवाल ने बताया कि ये प्रशिक्षण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

0: यहाँ पे जो है समूह की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सीख रही हैं। इसमें इनको जैसे डस्टबिन हो गया, पेन स्टैंड हो गए, इसके अलावा टोकरियां हो गई, अन्य जो रिंगाल से जो फैंसी आइटम है वो तैयार करना सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो रिंगाल से ज्वेलरी, क्लचर, क्लिप ये बनाना सिखाया जा रहा है। और ये रूट जो है यात्रा रूट है, यहाँ पे देश विदेश से बहुत से यात्री आते हैं, कई होम स्टे यहाँ पे है, तो आने वाले टाइम पे ये एक अच्छा स्कोप भी है इनके लिए मार्केटिंग का। और रिंगाल जो है यहाँ पे बहुत मात्रा में होती है, उस रिंगाल से बहुत अच्छे खूबसूरत प्रोडक्ट इनके द्वारा अभी तैयार किए जा रहे हैं। और 14 दिवसीय प्रशिक्षण में इनको पूरी कोशिश की जाएगी ये अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाएं ताकि इनकी आजीविका बढ़ सके।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नंदा गोरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलों की 4098 पात्र बालिकाओं के बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बाल सुधार गृह व किशोरी गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और निर्जला एकादशी पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है सोनू निगम का गाया ये भजन।

0: अशोक खोसला के गाए इसी भक्ति वंदन के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 6:50 होने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारे देहरादून केंद्र से रिले होगा।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून। अब आप सुनेंगे गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मीना उनियाल। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों थे श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोकतंत्र सेनानियों और उनका परिजनों थे सम्मानित करी। आपातकाल थे भारतीय लोकतंत्र का इतिहास का काला अध्याय बते। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यन ने नंदा गौरा योजना का तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला की 4098 पात्र बालिकाओं का बैंक खातों में 19 करोड़ रुपयों से ज्यादा की धनराशि हस्तांतरित करी और निर्जला एकादशी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान करी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल का दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का बाबत दृढ़ संकल्पित रहा लोगों थे श्रद्धांजलि अर्पित करी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बोली कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला छे। प्रधानमंत्री ने बोली कि ये दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं निशाना पर रहना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि 25 जून 2075 कोण लगेगे आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का इतिहास का एक काला अध्याय है। उन बोली कि तात्कालीन सरकार ने सत्ता बचाना को नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन करी। प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगे और संविधान की मूल भावनाओं थे आघात पहुंचेगी। संविधान हत्या दिवस पर आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों और उनका परिजनों थे सम्मानित करी को बोली कि लोकतंत्र सेनानियों का त्याग साहस संघर्ष का कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित हुआ। श्री धामी ने बोली कि लोकतंत्र की रक्षकों ने करेंगे उनका संघर्ष सदन याद रखे जाल।
3: जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा के महान निर्माताओं ने देश को समर्पित किया था आपातकाल के दौरान, उसी संविधान को तार तार करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने अपनी सच्चा को बचाने के लिए लोकतंत्र को बंधक बनाया, संविधान की गला घोटने का घोर अपराध किया और उस वक्त सारे अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और जो भी उस सरकार के खिलाफ बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। देश की जनता को भय और दमन के वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, न्यायपालिका को भी बंधक बना लिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी और क्या था। और कांग्रेस का जो विभत्स चेहरा था वो पूरे देश के सामने आया और एक परिवार के आगे, अहंकार के आगे लोकतंत्र और संविधान उसकी धज्जियां उड़ा दी गई।
2: हिमालय संरक्षण स्वतंत्रता और जिम्मेदार पर्वतारोहण का संदेश लेके उत्तरकाशी का पर्वतारोहियों ने बड़ी उपलब्धि हासिल करी। समुद्र तल बटे करीब 7,075 मीटर ऊंची माउंट सतोपंत चोटी पर 9 सदस्यीय दल ने सफल आरोहण कर तिरंगा फेरे। ठंडू बर्फीला तूफानों और शून्य से तापमान जनित चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करी की टीम ने शिखर फतेह करी। पर्वतारोही परवीन राणा ने बताई कि 3 सप्ताह तक चली अभियान में दलन कठिन हिमालय बाटों थे पार करी की सफलता हासिल करी।
4: इसमें जो कि अभी माउंट सतोपंत गंगोत्री एरिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक और चैलेंजिंग पीक है उसको क्लाइम किया है अल्पाइन स्टाइल में। तो ये हमारा ध्येय क्या था, मेन मकसद था कि क्यों ना हम अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट में है इस तरह का एक मैसेज दें हिमालय में कि लोग गंदगी कम करें। तो इसी हिसाब से हमने जो है अल्पाइन स्टाइल में क्लाइम किया। तो उसके लिए हमने पूरा सामान खुद लेके गए, राशन खुद लेके गए और कम से कम रिसोर्सेज हमने इसको क्लाइम किया। तो ये जो है एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहा पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस। हमने गंगोत्री गुवाहाटी से शुरू किया और जो फाइनली जो हमारा समिट कैंप तक जो प्लान किया हुआ था 10-12 दिन का, बट उसमें बर्फ ज्यादा गिर गई और जिसकी वजह से 6-7 दिन हमको और ज्यादा लग गए उसमें। और फाइनली हमने 18 तारीख को जो है 6:30 बजे जो है पीक को क्लाइम किया और सेफली वापस आए।
2: वखी पर्वतारोही आजाद सिंह राणा ने बताया कि अभियान का दौरान दलक सदस्य ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे कि वह बटी 15 किलो कचरा इकट्ठा करके वे थे वापस लें।
5: हमने जो ये एक्सपीडिशन अपना शुरू किया था 2 जून से गंगोत्री से शुरू किया था, जहाँ से गंगोत्री से और समीर तक का जो हमारा ये सफर रहा है, ये हमने 3 जो हमने बेस कैंप तक इसमें कैंप लगाए थे। जब समीर करके हम नीचे आए तो जो हमने मुहिम लेके चली थी अपनी स्वच्छ भारत अभियान वाला, तो उसमें हमने क्या किया 15 kg कूड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क तक लाया।
6: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छे।
2: नंदा गोरा योजना का तहत आज हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला का 4098 पात्र बालिकाओं थे लाभान्वित करेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने DBT का माध्यम से यूं बालिकाओं का बैंक खातों में 19 करोड़ रुपयों से ज्यादा की धनराशि हस्तांतरित करी। ये अवसर पर उन बताई कि 2025-26 में प्रदेश की 33,251 पात्र बालिकाओं थे 26 फरवरी 2026 को ही योजना का लाभ दिए गए थे। श्रीमती आर्यन बोली कि हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला का कुछ पात्र बालिकाओं की आवश्यक औपचारिकताएं न व जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई साहब, जिसका कारण उन्हें वे बगत लाभ नहीं मिल छाया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यूं पात्र बालिकाओं थे सहायता की राशि DBT का माध्यम से प्रदान करेंगे।
7: हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकती, अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है। DBT के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया है और मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से नंदा गौर योजना का लाभ प्राप्त करते हुए वे बालिकाएं आगे ऊंचे मनोबल के साथ में उच्च शिक्षण में भी अध्ययन कर रही हैं और निश्चित रूप से एक लैंगिक समानता को लेकर जो भी हमारा लक्ष्य है उस और भी निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
2: निर्जला एकादशी का अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धा और आस्था का उद्भव संगम दिखना कुंड मिल। देश का विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करी। विशेष रूप से हर की पेड़ी पर श्रद्धालुओं का तांतो लगी रहे, जख भक्तों ने माँ गंगा माँ आस्था की डुबकी लगे कि भगवान विष्णु का स्मरण करे। आश्रम अखाड़ों में भी निर्जला एकादशी पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुए। धार्मिक मान्यताओं का अनुसार निर्जला एकादशी का दिन गंगा स्नान जल दान और अन्नदान करण से 1000 अश्वमेध यज्ञ का समान पुण्य मिलो। देहरादून का जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आज केदारपुरम स्थित नारी निकेतन बाल सुधार गृह व किशोरी गृह का स्थलीय निरीक्षण कर वक्त संचालित व्यवस्थाओं का जायजा ले। ये दौरान उन आवासीय संस्थानों में रहने वाला नौनियालों और जनानों थे दिए जाने वाली सुविधाओं सुरक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा करी।
8: मैंने जो नारी निकेतन का और जो हमारे अंडर 18 के जो बच्चे होते हैं उनका जो निरीक्षण

0: किया, उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उससे रिलेटेड, या उनको जो हमारा जो है प्रोबेशन ऑफिसर और एक पूरा पैराफर्निलिया देख रहा है, तो उनको रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए और उनसे इंटरेक्शन भी किया गया, उनकी समस्याओं या उनके जो फ्यूचर प्लान है, उनको बच्चों के जो स्टडीज कर रहे हैं, कई सारी बच्चियां स्टडी कर रही है, जो अंडर 18 जो बच्चे हैं एडोलेसेंस वाले वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को समझने की भी कोशिश की और उनकी जो ओवरऑल व्यवस्था है उनको भी मेरे द्वारा देखा गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: तमाम मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों से श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोकतंत्र सेनानियों और उनका परिजनों से सम्मानित करी। आपातकाल थे भारतीय लोकतंत्र का इतिहास का काला अध्याय बते। कैबिनेट मंत्री रेखा रन नंदा गोरा योजना का तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला की 4098 पात्र बालिकाओं का बैंक खातों में 19 करोड़ रुपयों से ज्यादा की धनराशि हस्तांतरित करी और निर्जला एकादशी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान करे। यादगढ़ ही गढ़वल में प्रादेशिक समाचारों का यू अंक समाप्त हो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

किसानवाणी कार्यक्रम सुमेर सभा श्रोतान के अभुदबड़ी मनी साग नमस्कार। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का प्रायोजक छिन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, हमारे सरकार द्वारा हमारे किसान मन खी लीजिए कई एक योजनाएँ चल रही और उमबटी एक योजना हमार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छू, जैक शुरुआत हमारे देशक प्रधानमंत्री जूल 18 फरवरी 2016 करी। श्रोताओं, यह योजना मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, किरणल हमल या फिर कोयले बीमारी कारण हमारे किसान मन की खेतों की फसल में होने वाले नुकसान बारे में किसानों के वित्तीय सहायता और उनके सुरक्षा प्रदान करना छू। किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के आर्थिक मदद दिन और उनार आय के स्थिरधारण योजना प्रमुख लक्ष्य छू। श्रोताओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों 2026 सीजन जी किसानों पंजीकरण शुरू है। यह जी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 निर्धारित कर रहे। योजना के अंतर्गत किसानों का केवल 2% प्रीमियम खरीफ फसल जी देना पड़ा और उसी में रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% हूँ, और जबकि बैंक बची हुई प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जमा करा। ये मैं कवरेज स्थिति देखी जाओ तो सूख पड़न, बाढ़ उड़, ओलावृष्टि या फिर किरण हमले और प्राकृतिक आपदा में होने वाले फसल नुकसान पर सुरक्षा में दी जाए। और यह लीजिए आवेदन करना लीजिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक,

खसरा खतौनी और फसल बुआई प्रमाण पत्र जरूर हो जाए। जेल अफो नज़दीकी जनसेवा केंद्र CSC या फिर कृषि कार्यालय पर जब आवेदन कर सकता। और मैं प्राकृतिक आपदा या फिर बीमारी के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों के नुकसान की जो सूचना छू उके 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग या फिर बीमा कंपनी या फिर PMFBI पोर्टल पर देना होगी। यह एक बिना दावा राशि में आपको कहूँ कि परेशानी है सकूँ तो आपको तुरंत अगर आपको कोई फसल नुकसान है तो आपको समय रहते 72 घंटे भी देर यह एक सूचना आपको देना पड़ेगा। जेल आपको यह सहायता राशि मिल जाओ।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जो

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला घोषणा नु खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत संरक्षण, जुताई और जल प्रबंधन विषय पर राजकीय विवेकानंद इंटर कॉलेज अलमाड़ा सामाजिक विज्ञान सहायक अध्यापक श्री रघुवर जोशी जी करिए बातचीत, और इंदु गंभीर प्रणागरी मनीष सहा।
7: इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के सामाजिक विज्ञान के सहायक अध्यापक श्री रघुवर जोशी जी से। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पहले तो आपको नमस्कार।
8: नमस्कार
7: जोशी जी। जैसा कि हमारा पूरे देश में अभी खेत बचाओ अभियान जो है वो 1 जून से 30 जून तक चल रहा है
8: जी,
7: तो इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चलाए जा रहे हैं किसानों के लिए। तो आज हम आपसे जानेंगे कि जो किसानों के लिए है संरक्षित जुताई और जल प्रबंधन हम कैसे करें।
8: जैसे कि जो है आज हम संरक्षित जुताई और जल प्रबंधन विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि संरक्षित जुताई और जल प्रबंधन होता क्या है। संरक्षित जुताई मीन्स होता है कि जिसमें हम जो है जो मिट्टी है, मिट्टी को बहने से यानी कि उसका इरोजन होने से बचाना है उसको, और दूसरा जो दिन प्रतिदिन जो हमारा जल का जो स्तर है वो कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल, और जो वैसे भी फ्रेश वाटर है तो उसकी भी गुणवत्ता में धीरे धीरे कमी आ रही है, इसको भी संरक्षित करना है
7: जी।
8: तो पहले हम जानेंगे संरक्षित जुताई होता क्या है। तो संरक्षित जुताई ये होता है जिसमें हम जो है खेत की कम से कम जो है उसकी गहराई तक जो हम परंपरागत विधियों और आधुनिक विधियों से जो खेत की जुताई करते थे

0: तो अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि जब जो हम परंपरागत विधियों से खेत की जुताई करते थे तो उससे बहुत ज्यादा जो है सॉइल इरोजन होता है। तो अब अभी नितांत आवश्यकता ये पड़ रही है कि हमें जो है थोड़ी सी अपनी जो मेथड है उसको चेंज करना होगा, कि जो है खेत की जो मिट्टी है वो संरक्षित रहे। इस विधि में ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि जिसमें हम खेत को कम से कम जोतें और उसमें जो है खेती अपनी तैयार करें। मतलब खेत को पहले क्या होता था, पहले से कि खेत को तैयार किया जाता था, तब उसमें सीड बोए जाते थे, तब जाकर के जो है फसल तैयार होती थी। अब इसमें ऐसा है कि बगैर आप जो है खेत को प्रिपेयर किए बगैर, तो उसको तैयार किए बगैर जो है उसमें सीड ड्रिल की मदद से जो है बीज बो दिए जाते हैं, जिससे जो है खेत की जो मृदा है वो बहने से बच जाती है।
1: बिल्कुल जोशी जी, जैसा कि इसमें देखा भी जाता है जोशी जी की, जैसे कि जो मिट्टी है, मिट्टी को पूरी तरह जो हमारे खेत होते हैं उसमें पलटने के बजाय उसमें कम से कम जुताई की जाती है, और जो हमारे फसल है उसके जो कम से कम हमारे जो 30% जो उसके अवशेष बच जाते हैं वो खेतों की सतह पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है।
0: जी। तो क्या होता था कि जैसे गांव घरों में जो है, जैसे उत्तराखंड से हम बिलोंग करते हैं, तो उत्तराखंड के गांव में जो है परंपरागत जो हमारे लकड़ी के हल होते थे उससे जुताई होती थी। तो उससे
1: बिल्कुल
0: खेत से जो मिट्टी पलटती है तो उससे सॉइल इरोजन होने का ज्यादा जो है संभावना रहती है। तो आजकल आधुनिक विधियां जो आ गई हैं, जैसे छोटे ट्रैक्टर आ गए हैं, उससे खेत की अच्छी जो है खुदाई भी हो जाती है और जो है मिट्टी बहुत ज्यादा जो है पलटती नहीं है, तो जिससे मतलब मिट्टी बहने से बच जाती है। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा किसान भाइयों को कि वो लोग जो है आधुनिक विधियों का प्रयोग करके के अपनी फसल बोए और जिससे मिट्टी हमारी बहने से बच सके।
1: जोशी, जैसे आपने कहा कि किसानों के लिए अब हम आधुनिक चीजों का उपयोग करें, अब क्या होता है कि जैसे हमारा ये पहाड़ है, पहाड़ का क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमारे जो किसान लोग होते हैं, किसान भाई बहन लोग होते हैं, वो क्या होता है कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको इन चीजों का ज्यादा अनुभव भी नहीं होता है, तो उनको हम सामान्य तरीके से कैसे समझा सकें कि वो भी इस चीज के लिए आगे आए और जो उनकी खेती है वो भी उनकी फसल जो है वो अच्छी हो और खेती भी उनके सुदृढ़ हो।
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। किसान भाइयों को हम इस मेथड से हम जोड़ पाए, इसके लिए जो है हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं कृषि विभाग के द्वारा। जैसे वो गांव में कैंप लगा सकते हैं, उनकी मिट्टी की जांच करा सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: या फिर जो है या फिर जैसे जो है सीड जब उनको वितरित किए जाते हैं उस टाइम पे अपनी आधुनिक विधियों के बारे में उनको बताएं, जिसमें कम लागत में आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। कुछ डेमो क्लासेज उनकी चलाई जा सकती हैं या डेमो अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके के किसानों को उस दिशा में हम ले जा सकते हैं। असंभव कुछ नहीं है,
1: जी
0: यदि अगर थोड़ी सी अगर पूरी शुद्धता के साथ अगर जो है उसमें डिपार्टमेंट अगर काम कर सके तो जरूर जो है किसान भाई उससे जुड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बस हमें जरूरत है कि थोड़ी उनको जागरूक करना और जो नई नई चीजें आजकल अपडेट होती हैं कृषि के क्षेत्र में उसके बारे में उनको भली भांति जानकारी देना।
0: जी
1: जोशी जी, अब ये तो थी संरक्षित जुताई के बारे में बात, और इसी को हम आगे चल के बात करते हैं कि कृषि में जल प्रबंधन कैसे किया जा सकता है।
0: हाँ, कृषि में जल प्रबंधन, जैसे कि ये जो दोनों टॉपिक हैं एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल,
1: जी,
0: एक एक संरक्षित होगा तो दूसरा अपने आप ही कंजर्व हो जाएगा। तो
1: बिल्कुल
0: अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन पे। तो जैसे कि आज जो है दिन प्रतिदिन जो है जल की मात्रा में भी और उसकी गुणवत्ता में भी जो है कमी आई है। अब बड़ा चैलेंज आज जो है देश के सामने ये है कि जल प्रबंधन कैसे किया जाए। तो जल प्रबंधन के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि हम जो हमारे जो वेटलैंड होती है पहाड़ में, बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया होता है, तो वहां पर हम जो है क्या छोटे छोटे खाल खंतियां ट्रेंचेज इत्यादि बना सकते हैं क्या? मैं कहूंगा कि बड़े खाल खोदने से अच्छा है कि हम जो है एक एक दो दो ढाई ढाई फीट के छोटे छोटे ट्रेंचेज बना सकें, वृक्षारोपण कर सके, गहन वृक्षारोपण, जिससे क्या होगा कि हमारा जो एक तो जो वाटर है
1: जी
0: ग्राउंड वाटर उसका लेवल बढ़ जाएगा, दूसरा जो है हमारा मिट्टी भी बहने से बच जाएगी। क्योंकि मोटो हमारा यही है आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि सॉइल इरोजन होने से भी बचाना है और दूसरा जो है ग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ाना है। तो
1: जी
0: जब हम एक काम को अगर करते हैं तो दूसरा अपने आप ही ठीक हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: इसके लिए और भी तरीके हैं, जैसे हम जो है छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण तो करते ही करते हैं, बाकी जो वर्षा का बहता हुआ जो जल है उसके लिए भी जो है टेप करके के उसको छोटे छोटे ट्रेंचेज के माध्यम से उसको खाल खंतियों में संरक्षित कर सकते हैं। और बाकी जो है जो हम अन्य उपयोग के लिए जो पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी सोच समझ करके इस्तेमाल करें, खाली नलों को, नलों से जो टपकने वाला पानी है उसका रिपेयरमेंट करें ताकि जो है पानी वेस्ट न जा पाए।
1: बिल्कुल। और एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि जो जल प्रबंधन है और इसका संरक्षण आज इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है?
0: हाँ, जल प्रबंधन और इसका संरक्षण आज इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो हमारी जो है जो अपना इंडियन कल्चर है उससे बिल्कुल दूर जा रही है। तो
1: जी
0: उनको पता ही नहीं होता है कि ये खाल हैं, खंतियां हैं, ये ट्रेंचेज क्या होते हैं। एक अभी एक होल मेथड भी होती है जिससे जो है बड़े बड़े जो खाल न खोद करके के संबल होते हैं या कोई ऐसे ऐसे सुराख करने वाली चीज होती है जिससे पूरे एरिया में जो है सुराख कर दिए जाते हैं।
1: जी
0: उससे क्या होता है कि मिट्टी भी कटती नहीं है और जो वर्षा का पानी जब होता है तो उन होल के माध्यम से पानी अंदर जाता है। और
1: जी
0: इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि जो जंगली जानवर जो होते हैं तो वो रात्रि के समय में जब पानी वानी पीने के लिए आते हैं तो कई बार जब हम बड़े बड़े खाल खोद देते हैं तो उसमें वो गिर भी जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं।
1: जी
0: जब हम छोटा इनका आकार रखेंगे तो आसानी जंगली जीव जंतु भी पानी पी लेंगे
1: जी
0: और पानी भी हमारा कंजर्व हो जाएगा। आज इसलिए ये आवश्यक हो गया है क्योंकि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो आज इन सब चीजों से दूर दूर जा रही है। वो
1: बिल्कुल
0: करना तो कुछ नहीं चाहती है लेकिन फैसिलिटी सब उनको चाहिए होती है। तो
1: बिल्कुल
0: लगातार हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इसलिए जो है ग्लेशियर ना पिघल पाए, जो हमारे वाटर सोर्स हैं चाहे वो तालाब हों, नदियां हों, ग्लेशियर हों, तो वो संरक्षित रहेंगे, तापमान में वृद्धि नहीं होगी, वृक्षारोपण होता रहेगा, तो ये सब जो है ऑटोमेटिक सब जो है संरक्षित होते चले जाएंगे और हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ होता रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो आजकल जलवायु परिवर्तन है उसमें क्या हो रहा है कि जल की जो उपलब्धता है और उसकी आपूर्ति है वो भी उसको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है।
0: जी
1: तो जोशी जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझाया, और जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं वो आपकी बातों को सुनकर समझकर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और जल का प्रबंधन भी करेंगे और जो अपनी खेती है उसको भी अच्छी तरह करेंगे। आपने हमारे साथ बात करी और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोता वल्ला अपन सुनी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत संरक्षण, जुताई और जल प्रबंधन विषय पर राजकीय विवेकानंद इंटर कॉलेज अलमड़ा सामाजिक विज्ञानक सहायक अध्यापक श्री रघुवर जोजुदगर करेगी बातचीत और इन दुकान भेंट करना आग्रह मनीष साहब।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता कार्यक्रम में अगला पुगु सुनो एक भेंट वार्ता। सरकार के 12 वर्ष खरीफ फसलों के उत्पादन और फल विपणन विषय पर तारादत्त तिवारी जी का करेंगे भेंट वार्ता और इन लोग भेंट करना नागरी कृष्णा लटवाल।
4: सो भारत में मानसून शुरू होते ही खरीफ सीजन की तैयारियां भी तेज हो जाती है। देश की कृषि अर्थव्यवस्था में खरीफ फसलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है क्योंकि धान, मक्का, सोयाबीन और हमारे जो

0: पर्वतीय अंचल में उगाई जाती है, गहत, भट, मूंग, उड़द और सोयाबीन। तो इन फसलों को किसान भाई उगा रहे हैं और इस दौरान ये फसलें उगाई जाती हैं। तो इन फसलों का सीधा असर हमारे किसानों की आय और हमारे देश के खाद्यान्न उत्पादन पर भी पड़ता है। स्वतः हमारे पर्वतीय क्षेत्र में खरीफ सीजन में फलों की तुड़ाई भी की जाती है, क्योंकि फलोत्पादन एक हमारे यहाँ का प्रमुख आय का साधन है। तो ऐसे में खरीफ फसलों में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं इस पर और साथ ही फलोत्पादन उसके विपणन पर हम बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है तारा दत्त तिवारी जी को। तिवारी जी हमारे बीच में आए हैं ग्राम सभा और पोस्ट हरतुला विकास खंड रामगढ़ जिला नैनीताल से। तिवारी जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार।
0: पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही रहेगा कि खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी आप किस प्रकार से कर रहे हैं?
1: जी अगर मैं अपने 6,500 फीट की ऊंचाई की बात करूं तो हमारे वहां पर कुछ दलहनी और बाकी सब्जी उत्पादन जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी यह मुख्यतः है और कुछ दलहनी फसलें, कुछ ही चुनिंदा जिसमें से कुछ बेल वाली भी हैं जो पेड़ पर लगती हैं, जिनमें पेड़ पर ही फली लगती है तो उन्हीं को हम उत्पादन करते हैं, बाकी बागवानी का काम हमारा है।
0: तो बागवानी के अंतर्गत अभी आपके पास कौन कौन से फल आपने लगा रखे हैं?
1: फल तो सभी हैं, आड़ू, पुलुम, खुमानी तो करीब करीब अब जो है मार्केट जा चुका है या कुछ लोगों का बचा है जो अब लास्ट करीब करीब हो रहा है। इसके बाद मुख्यतः नाशपाती और सेब और कुछ वैरायटियां आड़ू की, तो यह चीजें अभी जाएंगी। सेब में बहुत सारे सेब भी हैं, कुछ अर्ली है, कुछ देर में चलता है, तो यह करीब करीब 1.5 से 2 महीने का पीरियड रहता है।
0: अच्छा ये बताएं कि खरीफ सीजन में फलों की जो तुड़ाई है उसका कार्य भी जोर शोर से पर्वतीय क्षेत्र में होता है, तो आप किस प्रकार से कर रहे हैं?
1: तुड़ाई तो लगता है जो हमारा जो दाना तैयार हो गया है, तो जैसे आड़ू में आप देखते हैं जो कलर देता है या पुलम जब पूरा लाल हो जाता है, और पुलम में भी 2-3 वैरायटियां ऐसी हैं जो आपको थोड़ा लाल पर तोड़ लेना पड़ता है, जैसे सरसुमा है वह पूरा लाल अगर हो गया तो फिर वो गलना शुरू हो जाता है, लेकिन सेंट्रोजा एक प्रजाति ऐसी है जो पूरा लाल होने के बाद भी कुछ दिन तक मतलब ठोस रहती है। तो इसी तरीके से देखना पड़ता है कि कौन सा फल तैयार हो गया है और कौन सा फल अगर हम रुके तो खराब हो सकता है, तो इसी तरीके से उन पेड़ों से छटाव करके ही हम फल तोड़ते हैं।
0: तिवारी जी पर्वतीय क्षेत्र में कभी कभी हल्की बारिश भी हो जा रही जिससे यातायात में भी कई बार व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में जो आपका फल की जो तुड़ाई है उसको अगर लंबे वक्त तक संरक्षित करना हो तो आप किस प्रकार से करते हैं?
1: वैसे अगर हम देखते हैं फल तुड़ाई जब बारिश हो जाती है तो जो हमारे जो तापमान है वह गिर जाता है, तो जब तापमान गिरता है जो हमारे जो फल पकने की जो तेजी है उसमें कमी आ जाती है, तो जब बारिश अगर हो गई तो हमारा जो फल है वो धीरे धीरे पकता है। और बारिश क्योंकि यह अभी मानसूनी बारिश तो नहीं है, तो यह बारिश अगर 2-3 घंटे हो गई तो उसके बाद रुक भी जाती है। जब थोड़ा सा फल में पानी की कमी हो गई तो हम तुरंत जाके उसकी तुड़ाई करते हैं। आड़ू की अगर बात करते हैं तो आड़ू थोड़ा सा क्योंकि उसमें जब हम उसको अगर गीला तोड़ते हैं और उसमें पेटी में अगर उसको डाल देते हैं तो उसमें फफूंदी आने का खतरा रहता है। बाकी पुलम और खुमानी में अगर ऐसा कुछ है नहीं, उसको आप गीले में भी तोड़ सकते हैं। हाँ उसको आप फैला लेंगे आप किसी कपड़े के ऊपर तो एकदम से आपका कपड़ा जो है उस जो नमी है वो क्योंकि नमी या पानी उसमें है तो नीचे आ जाएगा तो कपड़े में कपड़ा उसको सोख लेगा।
0: जी तिवारी जी सेब और नाशपाती की भी आपने बात की, तो ये तो नाशपाती जो यहाँ का पारंपरिक फल है और सेब जो है जो एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत पूरे उत्तराखंड में सेब के नए बागान स्थापित किए गए, तो आपके पास कौन कौन सी इनकी जो प्रजातियां हैं वो उपलब्ध हैं?
1: एप्पल मिशन में तो हमने काम नहीं किया क्योंकि उसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। हमने जो हम पारंपरिक खेती कर रहे हैं सेब की तो उसी पर हम काम कर रहे हैं, नई वैरायटियां जो है हम उनको लाके और बहुत सारा काम अभी जो हमारे ये आपका रूट स्टॉक वाला पेड़ है जो एप्पल मिशन के अंतर्गत आए हैं तो उनकी भी यहाँ पर अब जो हम पारंपरिक नर्सरियाँ बना रहे हैं तो उसमें उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब ग्राफ्टिंग करके कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं और कुछ लोगों ने उस एप्पल मिशन के अंतर्गत जो वैरायटियाँ बाहर से आई थी तो उनको यहाँ पर लगाकर इस हमारी नर्सरी में तो उसमें कुछ लोगों ने कामयाबी कर ली है, क्योंकि पानी रूट स्टॉक का जो पेड़ होता है उसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो भौगोलिक जो हमारी परिस्थितियाँ हैं वो बहुत विषम है क्योंकि बहुत जगह पेयजल की भी समस्या है और पेयजल नहीं होगा तो हम बगीचे में कहाँ से देंगे, तो इसलिए हम ये

0: यही वाला जो हमारी पारंपरिक खेती है, हम इसी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। भले आड़ू पुलम खुमानी की नई वेराइटियाँ हैं जो अर्ली बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो इन पर ज़्यादा हम काम कर रहे हैं।
1: अच्छा तिवारी जी, अगर हम बात करें ग्रेडिंग की, तो फलों में ग्रेडिंग करना एक ज़्यादा लाभ पाने का माध्यम हो सकता है, तो आप भी फलों में ग्रेडिंग करते हैं?
0: बिल्कुल, यह सब वही बात आ गई, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती है, मौसम के हाथ में होती है। अब हमारा फल में साइज तब आएगा जब उसको टाइम पर पानी, मतलब बारिश मिलेगी या उसको खाद पानी अच्छी मिलेगी। खाद से भी महत्वपूर्ण, मतलब गोबर की खाद या जो भी हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जैविक डाल रहे हैं या जो भी डाल रहे हैं, जब तक हमको बारिश उसके मुताबिक नहीं मिलेगी तो हमारा जो साइज नहीं बन पाएगा। इसलिए फिर ग्रेडिंग का तो तभी बन पाएगा जब हमको पर्याप्त बारिश मिलेगी, अन्यथा अब एक दाना आपका छोटा सा हो गया और एक इतना बड़ा होता हो गया, तो हिमाचल की तर्ज पर अभी तक हम लोग वो कामयाबी नहीं प्राप्त कर सके हैं। हिमाचल में क्या है कि ग्रेड होके ही माल आता है, आप देखिए मार्केट में एक पेटी में एक लेवल का जो है दाना आएगा, लेकिन उत्तराखंड के अगर आप हल्द्वानी मंडी में चले जाइए, थोड़ा बहुत 20 और 15 का जो है आपको पेटी में देखने को मिलेगा जी। इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है और बहुत से किसानों को इस पर बताना, जागरूक करना भी जरूरी है कि हमको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का ही माल बनाना चाहिए, और अगर हर किसान इस पर काम करेगा तभी जो है हल्द्वानी मंडी में भी हमारा माल व्यापारी भी उसी हिसाब से उसके दाम लगाएगा, क्योंकि हम बहुत अभाड़ कभाड़ भी भेजते हैं, तो इसकी वजह से अच्छे माल को भी जो है सही दाम नहीं मिल पाते हैं।
1: तिवारी जी, अगर हम विपणन की बात करें तो वर्तमान में किस प्रकार से विपणन कर रहे हैं और साथ ही कितना जो मूल्य है इसका आपको मिल जा रहा है फलों का?
0: बिल्कुल, अगर हम मूल्य की बात करते हैं तो हमारे मुख्यतः हम तो हल्द्वानी मंडी पर ही आश्रित हैं, तो अब जहां डिजिटल इंडिया है और आज हाईटेक सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसान अभी उन चीज़ों से जुड़ाव उसका नहीं हो पाया है मंडी का जी। व्यापारी जब हमारे माल को लेता है तो बिचौलिया जो हमारा माध्यम है, हमारा जो है मंडी आड़ती है जो कि रजिस्टर्ड है, वहाँ पर ऐसा नहीं कोई अर्जी फर्जी है, वो सारे रजिस्टर्ड हमारे लोग हैं, तो जब वो लोग हमारे माल का सौदा करते हैं तो हमको ये पता नहीं होता है कि हमारा माल क्या बिका। तो ठीक है, उसने जो बेच दिया, जो हमको पर्चा दे दिया, वही हमारी पक्की बिक्री है, और इस ओर भी सरकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है कि जो हमारी जो बोली लगती है या जो व्यापारी ले जाता है, तो वह डायरेक्ट, आज तो डिजिटल इंडिया है, आप हमारे जो भी हम माल भेज रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्ट कोई सूचना नहीं आती है, एक अफवाह होती है कि आज ये बिका माल, आज वो बिका, और कौन क्या भेज रहा है, यह जब वह हमको पर्चा देता है, एक महीने में दे या चार दिन में दे या जब भी हम हिसाब करने जाएं तब दे, तभी हमको पता चलता है कि हमारा माल ये बिका है।
1: तो तिवारी जी, ये बिचौलियों के तंत्र को ख़त्म करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिक्री के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, और साथ ही किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बिक्री को बढ़ाया जा रहा है। तो तिवारी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार खेत बचाओ अभियान की शुरुआत कर रखी है, तो किस प्रकार से खेत बच सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में?
0: जी, खेत बचाओ हमारे वहाँ अगर देखे जाए तो, क्योंकि वहाँ पर हल जो है, हल चलाना नामुमकिन है, क्योंकि उस हमारे जो बागवानी
1: खेत है,
0: क्योंकि सीढ़ीदार हैं और उसके बीच में पेड़ हैं, तो हम हल तो उसमें किसी भी हालत में नहीं चला सकते हैं। हाँ, जो हम पावर टिलर चला रहे हैं, क्योंकि वह बीच में उसमें जो नीचे से होता है वह बिल्कुल खेत को समतल करता है और मिट्टी को भी बाहर को फेंकता है, तो कहीं ना कहीं हमको जो पहले से हम जो हमारे बगीचों की खुदाई होती थी वो कुदाल से या गैंटी के माध्यम से होती थी, तो आज भी हमको अपने मिट्टी को बाहर जाने से रोकने के लिए उसी गैंटी या कुदाल का इस्तेमाल खेत पर करना चाहिए।
1: और जब कई बार हम देखते हैं कि सीढ़ीदार खेतों में जब उसकी मेड़ टूट जाती है, तो अब जो है वर्तमान में किसान भाई जो है इस हालत में नहीं है कि उसे वो दोबारा बना सके, तो थोड़ा इस पर भी आपका क्या कहना है, किस प्रकार से मदद आप सरकार से इसमें चाहते हैं?
0: नहीं, सरकार इसमें अगर प्रधान आपका भूमि सुधार के अंतर्गत ग्राम सभा के माध्यम से आप हमारा जो प्रस्ताव है वो सरकार ले रही है, तो फिर उसके बाद हमारा जैसे हम अपना ग्राम सभा में अपनी बात रखते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तो हमको जो है भूमि सुधार के अंतर्गत मनरेगा में मनरेगा, तो उसमें हमको काम मिल जाता है और हम जिससे अपनी दीवार भी बचा खेत भी बेहतर बना सकते हैं और उस

0: टूटी दीवार को भी ठीक कर सकते हैं।
1: निश्चित रूप से किसान और सरकार का ये सामंजस्य हमारी प्रवृत्ति खेती को और आगे बढ़ाएगा, जिससे हमारे प्रवृत्ति किसानों की अर्थव्यवस्था जो है सुधरेगी और एक बेहतर आय वो कमा सकते हैं। तारा दत्त तिवाड़ी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, यो भेंटवार्ता दगे आज किसानवाणी कार्यक्रम इतिके समापन हो। हमारे कार्यक्रम का प्रायोजक छी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अब दगड़ी मनीष सागर दी आज्ञा, नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। अब अगला कार्यक्रम देहरादून केंद्र से रिले होगा।

0: समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार दगड़े मी कुसुमलता पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकालक दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों के श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादून में लोकतंत्र सेनानियों और उनर परिवार वालों के सम्मानित करो। आपातकाल के भारतीय लोकतंत्र इतिहासक काओ अध्याय बता। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल नंदागौरा योजना अंतर्गत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलक 4098 पात्र चेलियों के बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए हबे सकरक धनराशि ले हस्तांतरित करी। और निर्जला एकादशी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं गंगा घाटों पर स्नान करो। अब समाचार विस्तारल सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान हत्या दिवस पर आपातकालक दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रही लोगन के श्रद्धांजलि ले अर्पित करी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी को कि आपातकाल संविधान पर सिद्ध हमला छी। प्रधानमंत्री को कि यह दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं ले निशान पर रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को की 25 जून 1975 के लगाई गो आपातकाल भारतीय लोकतंत्र इतिहासक एक काव अध्याय छी। उन्होंने को की तत्कालीन सरकार सत्ता के बचानक लीजी नागरिक स्वतंत्रताओं नाश करो। प्रेसक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाई गो और संविधानक मूल भावना के चोट पहुंचाएगी। संविधान हत्या दिवस पर आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लोकतंत्र सेनानियों और उनर परिवार वालों के सम्मानित करते हुए कहो कि लोकतंत्र सेनानियों त्याग साहस और संघर्ष के कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित है सकी। श्री धामिल कहो कि लोकतंत्र रक्षा के लिए करी गई उनर संघर्ष के हमेशा के याद रखी जाए।
2: जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा के महान निर्माताओं ने देश को समर्पित किया था आपातकाल के दौरान, उसी संविधान को तार तार करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने अपनी सच्चा को बचाने के लिए लोकतंत्र को बंधक बनाया, संविधान की गला घोटने का घोर अपराध किया और उस वक्त सारे अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और जो भी उस सरकार के खिलाफ बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। देश की जनता को भय और दमन के वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, न्यायपालिका को भी बंधक बना लिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी और क्या था। और कांग्रेस का जो विभत्स चेहरा था वो पूरे देश के सामने आया और एक परिवार के आगे, अहंकार के आगे लोकतंत्र और संविधान उसकी धज्जियां उड़ा दी गई।
1: हिमालय संरक्षण स्वच्छता और जिम्मेदार पर्वतारोहणक संदेश के लिए उत्तरखासी पर्वतारोहण

0: उपलब्धि हासिल कर है। समुद्र तलवटी करीब 7,075 मीटर उच्च माउंट संतोपा चोटी पर 9 सदस्यीय दलल सफल आरोहण कर तिरंगा फहरा। भयंकर ठंड, बर्फीली तूफानों और शून्य हवेली तापमान जैसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए टीमल शिखर फतह करो। पर्वतारोही प्रवीण लाल बता कि 3 हफ्ते ताले चली यो अभियान मा दलल कठिन हिमालयी बाटों के पार करते हुए सफलता के हासिल करो।
1: इसमें जो कि अभी माउंट सतोपंतिस गंगोत्री एरिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक और चैलेंजिंग पीक है उसको क्लाइम किया है अल्पाइन स्टाइल में। तो ये हमारा ध्येय क्या था, मेन मकसद था कि क्यों ना हम अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट में है इस तरह का एक मैसेज दें हिमालय में कि लोग गंदगी कम करें। तो इसी हिसाब से हमने जो है अल्पाइन स्टाइल में क्लाइम किया। तो उसके लिए हमने पूरा सामान खुद लेके गए, राशन खुद लेके गए और कम से कम रिसोर्सेज हमने इसको क्लाइम किया। तो ये जो है एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहा पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस। हमने गंगोत्री से शुरू किया और जो फाइनली जो हमारा समिट कैंप तक जो प्लान किया हुआ था 10-12 दिन का, बट उसमें बर्फ ज्यादा गिर गई और जिसकी वजह से 6-7 दिन हमको और ज्यादा लग गए उसमें। और फाइनली हमने 18 तारीख को जो है 6:30 बजे जो है पीक को क्लाइम किया और सेफली वापस आए।
0: वे पर्वतारोही आजाद सिंह राणाल बता कि अभियान दौरान दलक सदस्यों पर्यावरण संरक्षक संदेश के देते हुए क्षेत्र बटी 15 किलो कूड़ के इकट्ठा कर भी उके वापस ला।
2: हमने जो ये एक्सपीडिशन अपना शुरू किया था 2 जून से गंगोत्री से शुरू किया था, जहाँ से गंगोत्री से और समीर तक का जो हमारा ये सफर रहा है, ये हमने 3 जो हमने बेस कैंप तक इसमें कैंप लगाए थे। जब समीर करके हम नीचे आए तो जो हमने मुहिम लेके चली थी अपनी स्वच्छ भारत अभियान वाला, तो उसमें हमने क्या किया 15 kg कूड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क तक लाया।
3: प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: नंदा गौरव योजना के अंतर्गत आज हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला 4098 पात्र चेलों के लाभान्वित करीगो। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल DBT के माध्यम इन चेलियों के बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए हबे सकरक धनराशि ले हस्तांतरित करी। यह अवसर पर उन्होंने बताया कि 2025-26 में प्रदेश 33,251 पात्र चेलियों के 26 फरवरी 2026 के ही योजना का लाभ दी जा चुकी थी। श्रीमती आर्याल को कि हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला कुछ पात्र चेलियों का आवश्यक औपचारिकताएं एवं जिला स्तरीय समिति द्वय अनुमोदनक प्रक्रिया बखत पारे पूरी नहीं हो सकी, जय कारण ले उनके उ बखत लाभ नहीं मिल पाई थी। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज इन पात्र चेलियों के योजना सहायता राशि DBT के माध्यम प्रदान करेगी।
4: हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी, अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है। DBT के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया है और मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से नंदा गौरव योजना का लाभ प्राप्त करते हुए वे बालिकाएं आगे ऊंचे मनोबल के साथ में उच्च शिक्षण में भी अध्ययन कर रही हैं और निश्चित रूप से एक लैंगिक समानता को लेकर जो भी हमारा लक्ष्य है उस और भी निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
0: निर्जला एकादशी के अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने लीजिए मिलो। देशक अलग अलग राज्यों लाखों की संख्या में पहुंची श्रद्धालुओं गंगा घाटों पर स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करो। विशेष रूप हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं भारी भीड़ उमड़ रहे, जहां भक्तों माँ गंगा माँ आस्था डुबकी लगाबेर भगवान विष्णु के याद करो। वे आश्रम अखाड़ों माले निर्जला एकादशी पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान जलदान और अन्नदान करनल 1000 अश्वमेघ यज्ञ समान पुण्य फल मिलूं। वे स्नान पर्व के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके सतर्क रहो, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन व्यापक व्यवस्था ले करेगी ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके स्नान के कर सको। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान आज केदारपुरम स्थित नारी निकेतन बाल सुधार गृह और किशोरी गृह स्थली निरीक्षण कर वहां संचालित व्यवस्थाओं के परखो। यो दौरान उन्होंने आवासीय संस्था

0: रह रही नानतीनों और श्रेणियों के उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों को विस्तारल जांच पड़ताल ले करी।
1: और जो हमारे अंडर 18 के जो बच्चे होते हैं उनका जो निरीक्षण किया, उसमें जो व्यवस्थाएं उससे रिलेटेड या उनको जो हमारा जो प्रोबेशन ऑफिसर और एक पूरा पैराफर्निलिया देख रहा है, तो उनको रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए और उनसे इंटरेक्शन भी किया गया। उनकी समस्याओं या उनके जो फ्यूचर प्लान है, उनको बच्चों के जो स्टडीज कर रहे हैं, कई सारी बच्चियाँ स्टडी कर रही है, जो अंडर 18 जो बच्चे हैं एडोलेसेंस वाले, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को समझने की भी कोशिश की और उनकी जो ओवरऑल व्यवस्थाएं उनको भी मेरे द्वारा देखा गया।
0: पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल जिलक दूरस्थ क्षेत्रों भ्रमण कर भी दोहर दिन आज धुमाकोट, संगलिया और आसपास का गांव दौरा कर स्वास्थ्य व पेयजल व्यवस्थाओं, आजीविका गतिविधियों और विकास कार्यों के स्थलीय निरीक्षण करो। यो दौरान आयोजित चौपालों में उन्होंने गांव वालों ने सिद्ध संवाद कर उन्हें समस्याएं सुनी और अनेक मामलों के मौके पर ही समाधानक निर्देश दिए। जिलाधिकारी को की प्रशासनक उद्देश्य केवल कार्यालयों तक सीमित रहनाती, बल्कि अंतिम छोर पर बैठी मन की ताले पहुंच बेर उन समस्याओं का समाधान करना छो। उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दी कि चौपालों में प्राप्त हर एक शिकायत पर निर्धारित बखत पारे कार्रवाई पक्की करी जाओ, ताकि लोगों के ऊक असली लाभ मिल सको। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकाल दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों रक्षा करने वालों के श्रद्धांजलि ले अर्पित करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादून में लोकतंत्र सेनानियों और उनर परिवार वालों के सम्मानित करो। आपातकाल के भारतीय लोकतंत्र इतिहासक काव अध्याय ले बता। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल नंदा गौरा योजना अंतर्गत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला 4098 पात्र चेलियनक बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए हबी सकरक धनराशि हस्तांतरित ले करी। और निर्जला एकादशी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं गंगा घाटों पर स्नान करो। योका दगड़ी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारों यो अंक समाप्त हु। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आजा नाचले फिल्म से। जयदीप सहानी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

आजा नाचले फिल्म के इस गीत के बाद लीजिए पेश है अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में बेशरम फिल्म का गीत। राजीव परनवाल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है ललित पंडित ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है केके की आवाज में जन्नत फिल्म का गीत। प्रीतम के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस।

अभी आपने सुना सोनू निगम का गाया नुसरत बद्र का लिखा ये गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं गजल। फनकार हैं जगजीत सिंह।

उस्ताद अहमद और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई इस गज़ल के बाद आइए सब रस कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं गुलाम अली की गाई ये गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सब रस FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारी दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण के साथ मैं अतहर सईद आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज भी हम लेकर आए हैं खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग, यानी खेल जगत की बड़ी खबरें आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक। सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी, इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का अगला सत्र 25 जुलाई से शुरू। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में देव मीणा अनुष्का यादव ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ एशियाई खेलों के लिए अपना स्थान पक्का किया। सबसे पहले बात महिला ICC क्रिकेट की। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने आज भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 20वें ओवर में 8 विकेट पर 134 रन बना लिए हैं। इस बीच मेज़बान इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ को 38 रन से हराकर विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इन दोनों टीम ने टूर्नामेंट में इससे पहले कोई मैच नहीं गंवाया था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 186 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम 5 विकेट पर 148 रन ही बना सकी। अगर वेस्टइंडीज शनिवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड को हरा देता है तो वो भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैडमिंटन की। अमेरिका के फुलटन में US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी लवली निगम से।
1: महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। महिला सिंगल्स के पहले राउंड में तन्वी ने जर्मनी की यावुन ली को 23-21, 21-16 से हराया, जबकि देविका ने पेरू की इनेस लूसिया कैस्टिलो को 21-14, 21-14 से पराजित किया। रौनक चौहान ने पूर्व विश्व जूनियर रजत पदक विजेता एस शंकर मुथुसामी को 23-21, 21-16 से हराया। इसके बाद पांचवी वरीयता प्राप्त किदांबी श्रीकांत ने अपने ही देश के डी सनीथ के खिलाफ 21-14, 21-12 से जीत हासिल की। महिला सिंगल्स में रक्षिता श्री और मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और के मनीषा की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई है। रक्षिता ने चेक गणराज्य की टेरेसा स्वाबिकोवा को 21-15, 21-8 से हराया, जबकि सातवीं वरीयता प्राप्त मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव रावत और मनीषा ने इंडोनेशिया के वेरवान एहसान एडम और सेरेना कानी को 26 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 21-16 से हराया। पहले दिन महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिग को पराजित कर दूसरे दौर में जगह बनाते हुए अपने अभियान की शुरुआत की।
0: और अब बात फुटबॉल की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में आज कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मैक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं।
2: दक्षिण अफ्रीका ने प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 का टिकट हासिल कर लिया है। ग्रुप ए के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने दक्षिण

0: कोरिया को 1-0 से हराया। साउथ अफ्रीका की इस ऐतिहासिक जीत के नायक थापेलो मासेको रहे जिन्होंने मैच का इकलौता गोल दागा। पहले हाफ में दोनों ही टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो सका। मैच के 63वें मिनट में तेजपांग मोरेमी ने बेहतरीन रन बनाते हुए पेनाल्टी बॉक्स के किनारे में शानदार पास दिया जिसका भरपूर फायदा मासेको ने उठाया। मासेको ने गेंद को नियंत्रण करते हुए बाएं पैर से बेहतरीन शॉट लगाया जो सीधा गोल पोस्ट में पहुंचा। 3 मुकाबलों में 4 पॉइंट के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बनाई। ग्रुप ए के मुकाबले में सह मेजबान मैक्सिको ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चेकिया को 3-0 से हराया। ये पहला मौका है जब मैक्सिको ने वर्ल्ड कप में अपने तीनों ग्रुप स्टेज मैच जीते हैं और ये भी पहली बार है जब उन्होंने 1970 के बाद से अपने सभी ग्रुप स्टेज गेम्स में क्लीन शीट रखी है। मैक्सिको सिटी स्टेडियम में माटेओ शावेज ने शानदार खेल दिखाते हुए मैच का पहला गोल दागा। उन्होंने राहुल जिमनेज के पास पर डिफेंस को पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन गोल से मैक्सिको को 1-0 की बढ़त दिलाई। जूलियन क्विनोन्स ने आसान फिनिश करते हुए गोल को दोगुना कर दिया। मुकाबले के स्टॉपेज टाइम में अल्वारो फिडाल्गो ने तीसरा गोल करते हुए मैक्सिको की बढ़त को 3-0 करते हुए टीम को जीत दिलाई।
1: And a real chance opening goal. What a time for Mateo Chavez to grab his first goal for Mexico to bring the house down here in Mexico City. It's finished. Czechia 0, Mexico 3.
0: ग्रुप सी के मुकाबले में मोरक्को ने शानदार वापसी करते हुए हैती को 4-2 से हराया। इस जीत के साथ ही मोरक्को ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। मुकाबले में हैती ने 10वें मिनट में ही पहला गोल कर सभी को चौंका दिया। मैच के 39वें मिनट में अशरफ हकीमी ने पहला गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि हैती के लिए दूसरा गोल विल्सन इसिडोर ने करते हुए टीम को 2-1 से आगे कर दिया। बतौर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी सुफियान रहीमी ने कॉर्नर के रूप में मिले मौके का फायदा उठाते हुए मोरक्को के लिए तीसरा गोल किया। इसके बाद मुकाबले के 89वें मिनट में गोसिम यासीन ने चौथा गोल करते हुए मोरक्को की जीत पर मोहर लगा दी।
1: A wonderful spectacle in Atlanta ends with Moroccan joy.
0: ब्राजील ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने 2 गोल दागे जबकि मैथियस कुन्हा ने 1 गोल किया। मैच के 6 मिनट में ही ब्राजील ने 1-0 की बढ़त हासिल की। पहले हाफ के अतिरिक्त समय में विनीसियस ने फिर से गोल कर ब्राजील को मैच में 2-0 से आगे कर दिया। मैथियस कुन्हा ने शानदार फिनिश करते हुए ब्राजील को 3-0 से जीत दिलाई।
2: Scotland have gifted Brazil the opening goal of the match and it hasn't taken long. Brazil playing their beautiful game. Here's the moment many Brazilian fans have been waiting for. It's a comfortable 3-0 win for Brazil on the night.
0: ग्रुप बी के मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को एक तरफा अंदाज में 3-1 से हराया। मैच के 29वें मिनट में बॉक्स के बाहर से बेहतरीन गोल करते हुए बोस्निया हर्जेगोविना को 1-0 की बढ़त दिलाई। टीम की ये बढ़त सिर्फ 5 मिनट बाद ही दोगुनी हो गई जब कतर के गोलकीपर सुल्तान अल ब्राके एडिन जेको के क्रॉस को क्लियर करने के प्रयास में खुद का ही गोल कर बैठे। हालांकि मैच के 42वें मिनट में कतर ने मुकाबले में शानदार वापसी की। टीम के अनुभवी खिलाड़ी हसन अल हायदोस ने बेहतरीन गोल करते हुए स्कोर को 2-1 कर दिया। मैच के 80वें मिनट में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए एर्मिन महमिक ने डिफ्लेक्टेड शॉट से बोस्निया हर्जेगोविना के लिए तीसरा गोल दागा और टीम की जीत पर मोहर लगा दी। ग्रुप बी के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 2-1 से हराया। हार के बावजूद कनाडा की टीम भी नॉकआउट स्टेज में पहुंचने में सफल रही। मैच का पहला गोल स्विट्जरलैंड के लिए दूसरे हाफ में आया। रुबेन वर्गास ने बेहतरीन गोल करते हुए स्विट्जरलैंड को मैच में 1-0 की बढ़त दिलाई। टीम की इस बढ़त को जल्द ही 20 वर्षीय खिलाड़ी जोहान मजाम्बी ने दोगुना कर दिया। मैच के 57वें मिनट में मजाम्बी ने स्विट्जरलैंड की तरफ से दूसरा गोल किया। हालांकि मैच के 76वें मिनट में कनाडा ने मुकाबले में वापसी की। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी प्रॉमिस डेविड ने कनाडा के लिए पहला गोल किया और मैच को बेहद रोमांचक बना दिया। स्कोर 2-1 करने के बाद कनाडा ने बराबरी करने का काफी प्रयास किया लेकिन न्यूजीलैंड के मजबूत डिफेंस ने उन्हें कोई और मौका नहीं दिया और मुकाबले को अपने नाम किया।
3: Less than 60 seconds into the second half and it's Switzerland who opened the scoring. Switzerland top the group. Canada finished second.
0: प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
4: फुटबॉल से ही एक और खबर। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का अगला सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा और इसका फाइनल 23 अगस्त को खेला जाएगा। 138 वर्ष पुराने इस टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें दो विदेशी टीमें भी शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC टूर्नामेंट का मौजूदा चैंपियन है। मैच 5 शहरों कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग में खेले जाएंगे। और बात एशियाई खेलों की। भुवनेश्वर में खेली जा रही 65वीं अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देव कुमार मीणा ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। कलिंगा स्टेडियम में आज हुए मुकाबले में सीवा वॉल्टर ने 5.46 मीटर की दूरी तय की और राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईची, नागोया, जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 65वीं अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर प्रस्तुत है हमारी सहयोगी सरफरोजी की ये रिपोर्ट।
5: देव कुमार मीणा के लिए ये सफलता रांची में फेडरेशन कप में कुलदीप कुमार के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड साझा करने के ठीक एक महीने बाद आई, जहां दोनों एथलीट्स ने 5.45 मीटर की दूरी तय की। भुवनेश्वर में आज 1 सेंटीमीटर और ऊपर जाकर देव कुमार मीणा अब राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। ये कामयाबी देव के लगातार दूसरे राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शन को दिखाने के साथ ही भारतीय पुरुषों के पोल वॉल्ट में हो रही लगातार प्रगति को भी दिखाती है। 2 साल से भी कम समय में राष्ट्रीय रिकॉर्ड में 5 बार सुधार हुआ है। देव ने प्रतियोगिता में निरंतरता दिखाई, 5.46 मीटर पर बार को सफलतापूर्वक पार किया। इससे न केवल रिकॉर्ड बुक में उनका नाम फिर से आया, बल्कि जरूरी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट से पहले उनकी स्थिति भी मजबूत हुई है। देव की ये कामयाबी मील का पत्थर है। अनुष्का यादव ने भी हैमर थ्रो में बड़ा प्रदर्शन किया है। महिलाओं की हैमर थ्रो में एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है, जिसमें अनुष्का यादव ने इंटर स्टेट चैंपियनशिप में 65.64 मीटर तक पहुंचकर एक बड़ा थ्रो करके पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले थ्रो के साथ अनुष्का ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी करते हुए महिलाओं की 100 मीटर की शुरुआती हीट्स में नियंत्रित दौड़ के साथ एशियन गेम्स के लिए अपना स्थान पक्का किया। ज्योति ने सीजन की अपनी पहली दौड़ 3.14 सेकंड का समय निकाला। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
4: नई दिल्ली के भारत मंडपम में 26वीं एशियन सीनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप का समापन हो गया है। भारत में इस खेल की पहली महाद्वीपीय स्तर की यह प्रतियोगिता थी। प्रस्तुत है हमारे सहयोगी अर्जुन शर्मा की ये रिपोर्ट।
6: चैंपियनशिप का समापन भव्य तरीके से किया गया। इस चैंपियनशिप ने वैश्विक स्तर पर भारत की साख एक विश्व स्तरीय खेल प्रबंधन वाले देश के रूप में की। इस चैंपियनशिप में 34 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा विश्व स्तरीय एथलीटों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट इसलिए भी अहम था क्योंकि हिस्सा ले रहे एथलीट और टीमें लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक गेम्स के लिए अपना लंबा रोड मैप बना रहे थे। प्रतियोगिता में जापान 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि दक्षिण कोरिया 10 पदकों के साथ दूसरे और कजाकिस्तान 5 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत के लिए ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रशासनिक सफलता और एक तकनीकी उपलब्धि रही। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगुवाई में हुए इस टूर्नामेंट में स्थानीय एथलीटों को अच्छा अवसर मिला। भारत की प्राची लोहान और सचिन के टॉप 25 में रहने के साथ साथ टोक्यो ओलंपियन CA भवानी देवी और उभरती स्टार तनीक्षा खत्री ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और देश में फेंसिंग संरचना की प्रेरक वृद्धि पर चर्चा की।
7: फेंसिंग चैंपियनशिप एशिया लेवल का यहाँ इंडिया में करना बहुत बड़ी बात है और इसमें वर्ल्ड फेंसिंग फेडरेशन के भी सीनियर सब ऑफिशियल्स आए हैं और मैंने जो पता लगाया इंडिया के कई प्लेयर्स बहुत 1-2 पॉइंट से हार गए हैं, लेकिन काफी अच्छा खेला है। भविष्य में फेंसिंग को और आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है।
4: और अब हॉकी। अंडर 21 भारतीय पुरुष हॉकी टीम अगले महीने बेल्जियम के दौरे पर जाएगी, जहां वो मेजबान बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। और अब चलते चलते एक बार फिर क्रिकेट मैदान की ओर चलते हैं, जहां महिला T20 विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 139 रन का लक्ष्य दिया है। और शतावा समय हो चला है।

आपसे अनुमति लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे यानी अतहर सईद और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: Partnership with UK is taking many more dimensions.
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में

0: नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचाव कर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के CEO एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव के

0: समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना अभिनेत्री फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए पेश है अधिकार फिल्म का गीत आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। रमेश पंत के लिखे इस गीत को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

इंद्रधनुष कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमराज फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है रूपक, कहानी ऐसे बनती है।

0: हो सकता है कि ये सवाल बहुत पुराना हो कि आखिर कहानी का जन्म होता कैसे। कहानी यूं ही तो लिखी जाती नहीं। चलिए सुविधा के लिए मान लेते हैं कि इसके लिए किसी घटना, व्यक्ति या पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है जो अकेले या मिलकर कहानी की नींव तैयार करता है और लिखने वाला शब्दों की लय ताल पर पिरोकर एक कहानी गढ़ देता है। लेकिन सच तो यही है कि किसी कहानी के उद्भव और विकास का इतिहास कहानीकार ही बता सकता है। कहानीकार पूरी दुनिया जहान में अपनी संवेदनाओं के साथ घूमता है, सोच और दर्शन की कई परतों से होकर निकलता है, अपनी रचना धर्मिता, अपनी समझ की पोटलियों को टटोलता है, अपने भावों को खंगालता है, तब जाके बैठता है कहानी लिखने। सिर्फ और सिर्फ कहानीकार ही बता सकता है कि भाई कहानी ऐसे बनती है। कहानी ऐसे बनती है रूपक में आज हम प्रतिष्ठित कहानीकार असगर वजाहत की लिखी कहानी सरगम कोला के साथ आपके समक्ष है। सबसे पहले तो इस कहानी का आनंद लीजिए और उसके बाद असगर वजाहत से एक छोटी सी मुलाकात, ये जानने के लिए कि कहानी आखिर बनती कैसे है। तो लीजिए सुनिए रूपक, कहानी ऐसे बनती है।
1: दिल्ली शहर, देश की राजधानी। दिल्ली में कला और संस्कृति के लिए खास होता है जाड़े का मौसम। इस मौसम में शहर श्वेत वर्णी विदेशी पर्यटकों से भरा रहता है। खलखलाते, उबलते, चहकते, रिझाते, लबालब श्वेत वर्णी विदेशी पर्यटक हमारी संस्कृति के सबसे बड़े खरीदार हैं। ये भाई खरीदार हैं इसलिए मान लेते हैं कि यही असली पारखी है। और बड़े घरों की महिलाएं लिपि पुती कैलेंडर आर्ट बनकर जाड़े की शामें किसी आर्ट गैलरी में या नाटक देख के गुजारना पसंद करती हैं। सचमुच जाड़े का मौसम कला और संस्कृति का मौसम है। सूरज जल्दी ही डूब जाता है और नरम मुलायम गरम कपड़ों से टकराती ताजगी देने वाली हवा आर्ट गैलरियों और ऑडिटोरियमों के आसपास महक जाती है। ऐसी सुगंध की बस पूछिए मत। लोग कला और संस्कृति में डूब जाते हैं, कला और संस्कृति लोगों में डूब जाती है। ऐसी ही एक शाम थी। ऑडिटोरियम में पंडित भीमसेन जोशी का कार्यक्रम था। पंडित भीमसेन जोशी के गायन के परम प्रशंसक दास गुप्ता को गेट के बिल्कुल सामने खड़े होने पर जाने वाले दिखाई दे रहे थे, जो अपने कद को और ऊंचा दिखाने की नाकाम कोशिश में इस तरह लापरवाह

0: सिपाही से टहलते अंदर जा रहे थे जैसे पूरा आयोजन उन्हीं के लिए किया गया हो। लेकिन दास गुप्ता का बिना टिकट अंदर जाने का कोई जुगाड़ नहीं लग पाया था। बाहर सड़क पर एक घने पेड़ के नीचे अजब सिंह का खोखा था, चाय पान का खोखा। दास गुप्ता गेट के सामने से हटकर अजब सिंह के खोखे के पास जाकर खड़े हो गए। हाँ, सर्दी कुछ बढ़ गई थी और अजब सिंह ने तसले में आग सुलगा रखी थी।
1: कब आई बे पिया सैलानी? कसम मगाई पान की दास गुप्ता बाबू, सिर खुजाने से कुछ नहीं होगा। जोशी जी को सुनना है तो खीसे में से पैसे निकालिए, टिकट लीजिए, अंदर जाइए।
2: कितना चाय हो गया मेरा रे? 10 तो हो गया होगा।
1: 10-30 हो गई दास गुप्ता बाबू। अरे 2 तो भीमसेन जोशी जी का बोर्ड देख के ही पी ली थी आपने, गिनवाऊं क्या?
2: 30 एकदम 30 हो गया?
1: हाँ 30, वो भी तेज पत्ती की।
2: अजब, तुम चिंता मत करो, हम तुमको ना पैसा दिए बिना मरेगा नहीं। आर पिला दो ना रे बाबा, गर्मा गर्म है।
1: 3 पी के 1 गिनने वाला हिसाब किताब बहुत बढ़ जाता था, पर मुझे मत समझाइएगा। हाँ ये लीजिए। दास गुप्ता बाबू, आज जुगाड़ नहीं लगेगा?
2: अजब लगेगा, एकदम लगेगा।
1: मेरी मानिए तो अब घर जाइए, 11 बजने वाले
2: हैं। क्यों क्यों क्यों घर क्यों जाए हैं? हमको तो पंडित भीमसेन जोशी को सुनना है। तुम 2 सादा बनारसी लगा दो।
0: अचानक दास गुप्ता के मन में ये ख्याल आया कि सब तो आगे के गेट पर हैं, पुलिस वाला, ऑर्गेनाइजर का बंदा, सब लोग। अगर वो हॉल के पीछे से अंदर घुस जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। ओफो, ये आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया? ये सोचता हुआ वो हॉल के पीछे पहुंचता है जहां काफी अंधेरा था।
2: यहाँ तो कोई नहीं है, एकदम वीरान पड़ा है। बेकार में इतना देर में आगे खड़ा था। इस छोटा सा दीवार को फांद कर अंदर घुसना है, फिर तो पांडित जी के सामने बैठकर उनको सुनने का पूरा मजा लेगा।
3: कौन है वे?
2: मैं दास गुप्ता।
3: इधर क्या कर रहे हैं अंधेरे में?
2: निपटने आया हूँ। हे भगवान, इधर भी पहरा लगा दिया।
4: ओ साहब, टॉर्च था तो बुझी दो। अरे टॉर्च बुझा दो साहब, बोला तो निपटने आया हूँ।
3: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: बिना टिकट अंदर जाने की कोशिश बेकार हुई। अब चूंकि पंडित भीमसेन जोशी की आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए वो लाउडस्पीकर लगाने वालों को भी कोसता है। भीमसेन जोशी की आवाज को सुनकर दास गुप्ता सोचता है कि अंदर वालों के कितने मजे हैं, लेकिन ज्यादातर उनमें ऐसे नमूने भरे पड़े हैं जिन्हें शास्त्रीय गीत संगीत के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
2: पंडित भीमसेन जोशी का गायन ये लोग क्या समझेगा? पंडित जी का तान को एंजॉय करना इनका बस का बात नहीं है। अरे इनसे अगर बोलेगा कि पंडित जी अपना तान में मंदो सप्तक से मध्यम और मध्यम सप्तक से तार सप्तक तक सुर का पुल बना देते हैं, तो ये लोग ना घबरा कर भाग जाएगा। चलाया पंडित जी को सुनने। अरे अभी 10 मिनट में उठकर ना बाहर भागेगा।
1: दादा सर्दी है, उंगलियां ऐट रही हैं।
2: सर्दी क्यों नहीं होगा रे? दिसंबर है, दिसंबर।
1: अरे टहलने से क्या होगा दादा, थोड़ा सा बैठ लो ना।
2: अजब अजब, ये तबला पर कौन है रे?
1: अरे मुझे क्या मालूम कौन बजा रहा है तबला।
2: वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इतना गरिमा, इतना गंभीर। बाबा बंदर तो खावा जो गजब, एकदम एकदम अंदर तक आवाज उतर रहा है।
0: मुख्य द्वार के पास ही में एक छोटे से पंडाल के नीचे कैंटीन बनाई गई थी। दो मेजों का एक काउंटर सा था, वहां पर एक कॉफी प्लांट लगा था, ऊपर 200 वाट का एक बल्ब चल रहा था। खाने में भी काफी कुछ था, हॉट डॉग, हैमबर्गर, पॉपकॉर्न। दास गुप्ता ने कान फिर अंदर से आने वाली आवाज की तरफ लगा दिए। तभी वहां कुछ जवान लड़के लड़कियां आ जाते हैं। लड़की ने जींस पहन रखी थी और बाल इतने लंबे थे कि कमर तक लटक रहे थे। एक लड़की के बाल इतने छोटे थे कि कानों तक से दूर थे। लड़के ने चमड़े का कोट पहन रखा था और पैंट इतनी तंग थी कि उसकी पतली पतली टांगे फैली हुई और कुछ अजीब सी लग रही थी। लंबी और पतली टांगों वाले लड़के ने कैंटीन के बैरे से पूछा,
5: तुम्हारे पास कोला है? Do you have a cola?
6: Sorry sir, अभी खत्म हो गया।
7: Oh my God, how silly, how stupid canteen they have. We must complain.
5: Don't worry, sweeties. Let's have coffee.
7: But I can't have coffee here.
5: Why? Why, my dear?
7: I always have coffee in my house or in Oberoi.
5: Oh, I see. Fine, fine, no problem. Let's go to the Oberoi then.
6: Sir, sir, cola aa gaya. छोटू क्रेट लेकर आ ही गया, वो देखिए।
7: ओह, कोला हैज कम।
5: अरे तो सुनो, ओ पार करो करो करो करो, कोला पार करो,
7: पार कोला,
5: पार करो पार करो पार करो पार करो। अरे पिला भी दे, कम कम कम।
2: भगवान, अगर बंदूक होता ना तो अभी का अभी इनको गोली मार देता।
7: बट नाउ आई वांट टू हैव कॉफी इन ओबेरॉय।
2: जहर मिले ना पॉइजन तो वो भी पी लेना।
8: बट वी केम हियर टू लिसन टू भीमसेन जोशी ना।
5: हो, डोंट बी सिली प्लीज, ही विल सिंग फॉर द होल नाइट, फॉर गॉड सेक। अच्छा एक काम करते हैं, वी विल हैव कॉफी इन द ओबेरॉय एंड देन वी कैन कम बैक, ओके? प्लीज, इवन वी कैन हैव अ स्लीप एंड कम बैक। लेट्स गो, प्लीज प्लीज कम कम प्लीज।
0: दूर कहीं 12 बजने के घंटे की आवाज सुनाई दी। सड़क पर सन्नाटा था। सड़क किनारों पर दूर दूर तक मोटरों की लाइन लगी हुई थी। अब लोग बाहर निकलने लगे थे, ज्यादातर अधेड़ उम्र और गंभीर चेहरे वाले, उकताए और आत्मलिप्त।
2: एयो जॉब, देख रहा है, पंडित जी का प्रोग्राम में जमा ही आ रहा इनको। नींद से इनका आंख भारी हो रहा है।
1: दादा, अब आप कहेंगे टिकट बर्बाद कर दिया।
2: और क्या, अरे इसको टिकट बर्बाद करना नहीं बोलेंगे तो क्या बोले हैं? अरे पंडित जी तो 2 बजे के बाद मूड में आएंगे।
1: अच्छा।
2: अरे इनका क्या है, सब मालदार लोग हैं। ड्राइवर भेजकर टिकट मंगवा लिया होगा है? या मुफ्त का पास जुगाड़ कर लिया होगा। अरे घंटा दो घंटा बैठा उठ गया। ये लोग ना यहाँ प्रोग्राम देखने नहीं आता है अजब, ये लोग ना आता है सिर्फ पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए।
1: और आप जैसे लोग जिनको सचमुच पंडित जी की कदर है, यहाँ बाहर खड़े रहते।
2: क्या करेगा है, ऐसा लोग ना टिकट डिजर्व नहीं करता है। पैसा वेस्ट कर दिया, पंडित जी को भी वेस्ट कर दिया। ऐसा राती ऑडियंस है रे
9: दादा। अरे वो देखो, वो लोग जा रहे हैं, उनकी जगह खाली होगी।
2: हैं? लेकिन तभी ना हमको बैठने नहीं देखा। अजब, हे अजब, तुम बताओ, ये पैसा तो इनका पूरा मिल गया है तभी हमको नहीं बैठाएगा, क्या तमाशा है रे बाबा।
1: सर्दी बढ़ गई है दादा, इधर आ जाओ, आग ताप लो। कोई नहीं समझेगा कि पंडित जी का इतना बड़ा कदरदान बाहर खड़ा है।
9: दादा, आर्ट सेंटर का डायरेक्टर बाहर निकल रहा है।

0: अरे उसे लपक लो, क्या पता आपका काम बन जाए।
1: वो तो फालतू आदमी है रे, दूसरों का पेंटिंग बेच बेच कर दुई दुई कोठी बना लिया, अब सैनिटरी फिटिंग का कारोबार डाल रखा है। यहाँ आर्ट कल्चर का जाप करता है, मालूम है क्यों?
2: क्यों
1: है? क्योंकि इनको पॉप रिक्रिएशन का काम सबसे अच्छा आता है। ये लोग ना बड़ा बड़ा पार्टी देता है, एक हाथ से लगाता है दूसरा से कमाता है, अपना वाइफ के नाम पर इंटीरियर डेकोरेशन का ठेका लेता है, वो भी खुद नहीं करता है दूसरा से करवाता है, हजार दो हजार में, और कमाता है लाखों में। घटिया काम से वोट खरीदने तक सांप धंधा जानता है।
0: दादा वो देखो क्या हो रहा है वहाँ।
1: वो तो होगा ही, तू पहचाना नहीं उसको है? कुसुम गुप्ता, ये म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजर है वो।
0: वो उसके कार का दरवाजा खोल रही है जैसे वो मालिक और ये नौकर।
1: खोलेगी क्यों नहीं है? अरे ब्रोशर में दिया होगा 1 लाख का विज्ञापन,

0: तो होगा ही, तू पहचाना नहीं उसको है? कुसुम, कुसुम गुप्ता, ये म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजर है वो।
1: वो उसके कार का दरवाजा खोल रही है जैसे वो मालिक और ये नौकर।
0: खोलेगी क्यों नहीं है? अरे ब्रोशर में दिया होगा 1 लाख का विज्ञापन है, 1 लाख। ऐसा लोगों के लिए आर्ट कल्चर भी धंधा है भाई, धंधा। फैक्ट्री ना डाला, बड़ा केंद्र खोल लिया।
1: ओहो दादा, यहाँ बैठे बैठे गरियाने से कुछ नहीं होगा। अरे कुसुम गुप्ता को क्यों नहीं पकड़ लेते हो? क्या पता अंदर ही धकेल दे आपको। जाओ दादा,
2: कुछ अंग्रेजी में गिटर पिटर करो, क्या पता मान जाए।
1: अरे जाओ ना।
0: ठीक होता है, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम।
3: यस
0: मैडम, माय नेम इज बीरेन, बीरेन दासगुप्त। आई एम अ बिग फैन ऑफ पंडित भीमसेन जोशी।
3: सो
0: मैडम, कैन यू प्लीज?
3: नो नो, आई एम सॉरी, वी हैव स्पेंट 20 लाख्स टू अरेंज दिस। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री एंट्री देन सॉरी।
0: प्लीज मैडम, अभी तो अंदर बहुत जगह खाली हो गया है।
3: गेट लॉस्ट
0: मैडम, मैडम, मैडम प्लीज, आई एम अ बिग फैन ऑफ पंडित भीमसेन जोशी मैम, प्लीज मैडम,
3: लीव मी अलोन, लीव मी अलोन।
0: मैडम आप मेरे बात को सुनिए मैडम, मैडम।
1: दादा क्या हुआ?
0: 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, फायदा नुकसान के अलावा इनको कुछ नहीं समझता है। एक बांध लगा दो।
2: 32वां जोड़ा हो जाएगा दादा, ये
0: ठीक है, एकदम ठीक है।
4: My God, what nonsense is happening here?
5: Yeah, I know, it was too much.
4: Did you like the program?
5: Oh, he's so handsome.
4: Did you notice the ring he's wearing?
5: Oh, yes. So beautiful. Must be very expensive, huh?
4: Sure, sure. My mother's uncle got the same ring.
5: That is platinum.
4: Yep. Hey, 2 cup tea.
5: Cup clean hai na?
0: Sunne bhi nahi deta hai. Bakor bakor ki jata hai.
5: He has just come back from Europe. He has a house in London.
4: Must be very rich.
5: Naturally. He takes 5 lakhs for a night.
4: My God, really? Then I must call him to sing in our marriage.
0: Hey, aukat to dekho. Apna bol par ek taka bhi nahi kama sakta hai. Baap ka daulat ka bal bute par Pandit ji ko shaadi mein gaane ke liye bulayega. अरे मेरे मन में तो आता है ना उठ करके लेक्चर दूं है, और बताऊं कि पंडित जी ना तुम जैसा चीरकुटा का शादी में नहीं गाता है।
6: वही चाय साय होगी के घनी सर्दी पड़ रही।
7: अरे बैठो ड्राइवर साहब, हमारा तो चाय का ही काम है, अभी पिलाते हैं गर्मा गर्म चाय।
6: 150 किलोमीटर गाड़ी चलाते चलाते हवा पतली होगी, अब साहब को गाना सुनने की सूझरी। 2 बजे को आए, पता नहीं कब तक चलेगा ये प्रोग्राम।
7: सुबह 6 बजे तक चलेगा।
6: अरे भाई तब तो फंस गए।
7: ड्राइवर साहब ये लो चाय। कोई पास वास तो नहीं है आपके पास?
6: पास अंदर जाना है कि?
7: हाँ जी, वो अपने बड़े भाई है, उनको जाना है।
6: अरे पास तो नहीं है भाई, पर जुगाड़ हो सके।
7: अच्छा
6: अभी देखता हूँ, रुक। या गेट पर खड़े हवलदार कब काम आओगे?
8: हाँ जी भाई साहब, हाँ जी एसपी साहब का ड्राइवर हूँ जी। DYSP क्राइम ब्रांच और DSP ट्रैफिक की फैमिली ने पास मंगवाया जी, मैं आप कहो तो बात करा दूंगा आपकी। अच्छा जी,
6: लो भाई जोड़ पास
0: मिल गया। अरे ये तो कमाल हो गया, भगवान भगवान।
7: दादा अब लपक लो अंदर।
0: अच्छा ये तो 4 पास है, हम 4 पास का क्या करेगा है?
6: अरे ले लो जी, सभी रख लो, जगह बदल बदल कर बैठ जियो।
0: एक ले लेता है हम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
7: जाओ दादा जल्दी जाओ, पंडित जी को कम से कम एक कदर दाल सुनने वाला तो मिले।
0: हो जाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
9: ड्राइवर ने बचे हुए 3 पास तसले में जलती हुई आग में डाल दिए और दास गुप्ता गेट की तरफ लग गए। तो दोस्तों असगर

0: व्याहत की लिखी कहानी सरगम कोला का अंत यहीं पर होता है। आखिर पंडित भीमसेन जोशी का कदरदान उनके पास पहुंच ही गया उनको सुनने के लिए। और अब बारी है इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कि आखिर कहानी बनती कैसी है, और इसके लिए एक छोटी सी मुलाकात कहानीकार असगर वजाहत से। असगर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे श्रोताओं ने अभी अभी आपकी कहानी सरगम कोला का लुत्फ उठाया है। इससे पहले कि मैं कहानी के बारे में आपसे कुछ और चर्चा करूं, हमारे श्रोताओं के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कहानी ऐसे बनती है, ये चूंकि हमारा शीर्षक भी है, तो आप अपने शब्दों में से बताएं।
1: देखिए, कहानी ऐसे बनती है जहाँ घटना, विचार, संवेदनाएं, लोगों को आंदोलित करने के ये सारे के सारे जो उपकरण हैं, ये सारे के सारे टूल हैं, ये जीवन में परिवर्तित होते हैं, ये जीवन में घटित होते हैं, और जीवन में घटित होकर ये जीवन की व्याख्या करते हैं, जीवन की परतें खोलते हैं और जीवन को समझने का एक रास्ता दिखाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कहानी जब अपना आकार लेती है तो वो जीवन से आकार लेती है, जीवन की व्याख्या करती है, जीवन को समझने का एक उपकरण बनती है और जीवन को जानने का एक माध्यम होती है। सरगम कोला की कहानी जो है वो दरअसल एक ऐसे समाज की कहानी है जहाँ पर कला और बाजार का एक ऐसा संगम हो रहा है, जिस संगम के कारण जो कला मर्मज्ञ हैं, जो वास्तव में कलाकार हैं या कला को समझते हैं, तो वे हाशिए पर जा रहे हैं, और जो कला को कम समझते हैं या नहीं समझते हैं वो मुख्य पृष्ठ के ऊपर आ रहे हैं।
0: क्या बात है। अच्छा असगर साहब, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जो चरित्र चित्रण होता है, जो पात्र होते हैं कहानी के, वो कहाँ से उपजते हैं और कैसे उसमें आप प्रयोग करते हैं?
1: ये पात्र की कल्पना करें आप, तो वो स्वयं बताता है कि इन घटनाओं में वो क्या करेगा, क्योंकि लेखक की पात्र के साथ इतनी आत्मीयता हो जाती है कि एक प्रकार से वो पात्र के साथ रहता है। मैं आपको उदाहरण दूं, महान लेखक जो टॉल्स्टॉय हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक होटल से सीढ़ियां उतर रहे थे, सीढ़ियां इतनी पतली थीं कि एक आदमी उतर सकता था, एक चढ़ सकता था, तो जो आदमी चढ़ रहा था उसके चढ़ने के लिए ये रुक गए। तो उस आदमी ने पूछा कि आप उतर भी सकते थे, एक आदमी उतर सकता था, तो इन्होंने कहा कि मैं अकेला कहाँ था, मेरे साथ अन्ना कैरिनिना थी मेरी पात्र।
0: जी जी।
1: तो लेखक इस रूप में अपने पात्रों को जीता है।
0: जी।
1: आमतौर से ये होता है कि जो कहानी का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ पात्र जो है वो सहायक बनते हैं, तो ऐसे पात्रों की कल्पना की जाती है। लेकिन कल्पना में ये ध्यान जरूर रखा जाता है कि ये कोरी कल्पना न हो।
0: चलिए, तो बात करते हैं हम लोग सरगम कोला की। सरगम कोला कहाँ से उपजी?
1: इसका जो मुख्य पात्र है तो वो मुझे एक वास्तविक पात्र के रूप में मिला, मंडी हाउस के आसपास घूमता हुआ, दास गुप्ता का। और फिर धीरे धीरे ये पूरा का पूरी कहानी का रूप जो है वो मेरे मन में आने लगा। ये एक छोटी सी वास्तविक घटना पर आधारित है।
0: आपने जो इसमें निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग के चरित्रों को इसमें उठाया है, तो ये तीनों वर्गों को जानबूझ के आपने इसमें रखा कि आपको लगा कि शायद ये तीनों वर्ग तीन वर्गों का रिप्रेजेंट करेंगे या उसका प्रतिनिधित्व करेंगे?
1: देखिए, ये जो हमारा कहानी का जो परिवेश है ये इनके बिना बनता नहीं है। अगर आप इनमें से किसी एक वर्ग को निकाल देंगे तो कहानी का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये एक प्रकार से पूरी सोसाइटी का क्रॉस सेक्शन है, जिस क्रॉस सेक्शन में वो लोग भी हैं कि जिनको साहित्य से, संगीत से, कलाओं से कोई रुचि नहीं है, वो एक अप संस्कृति जो है, अप कल्चर जो है वो उसके लोग हैं, वे हैं जो बहुत जेन्युइन हैं, और वे हैं जो अपना पेट पाल रहे हैं। तीनों जो हैं वो एक प्रकार से मिला करके सिनेरियो को बनाते हैं। ये समझ लीजिए कि ये तीन रंग हैं, जिन तीन रंगों से ये चित्र बन रहा है। अगर हम एक रंग भी कोई निकाल देंगे तो वो चित्र हमारा अधूरा रह जाएगा।
0: चूंकि कहानी में जैसे आपने दिखाया भी है कि जो निम्न वर्ग का इंसान है, जो छोटा सा ढाबा चला रहा है वहां पर, वो फिर भी सरोकार रखता है उस शख्स से जिसको पास नहीं मिला है, या उसको लगता है कि शायद मेरा दायित्व तो है कि मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करूं। और दूसरी तरफ वो लोग जो अंदर से बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो

0: सभ्य हैं, जिनके पास पैसा भी है, जो आराम से सुन भी सके। तो ये जानबूझ के आपको लगा कि इस तरह से दिखाना जरूरी है ताकि इसका चित्रण और बढ़िया नजर आए, बहुत अच्छा निकल कर आए।
1: देखिए, कहानी का तो मुख्य जो ढांचा बन रहा है वो बन यही रहा है कि वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे चाहे कला की समझ रखते हों या न रखते हों, वही कला के संरक्षक और वही कला के पारखी माने जा रहे हैं। इसलिए कि उनके पास आयोजन करने का, उनके पास चीज़ों को मैनेज करने का साधन है, तो जानबूझकर ही रखे गए हैं ये पात्र। और ऐसा है भी कि हमारे देश में आप देखिए कि किस प्रकार से साहित्य और संस्कृति को बदल दिया गया है एक बहुत बड़े व्यवसाय में, ये शो बिजनेस बन गया है, जहाँ पर क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि ये है कि मीडिया के लिए, उसके बाद ये है कि विज्ञापनों के लिए। बिना विज्ञापन के किसी प्रकार की संस्कृति जो है हो ही नहीं सकती है, आज स्थिति है। तो बिना बाजार के संस्कृति नहीं चल सकती। तो ये सरगम और कोला, ये दो शब्द जो हैं वो संगीत और बाजार के प्रतीक हैं। तो ये है कि कहानी कहती है कि जब तक इनको आप जोड़ोगे नहीं, तब तक संस्कृति शायद जो है संस्कृति के रूप में नहीं रहेगा, सरगम नहीं होगा बल्कि सरगम कोला होगा, क्योंकि कोला उसमें आकर के एक ऐसा तत्व जुड़ा है जिसको कि मार्केट इकोनॉमी ने जोड़ दिया है कि आप उससे निकल ही नहीं सकते।
0: दो और जो चरित्र हैं, बहुत मुख्य चरित्र हैं, एक ड्राइवर और एक वो ऑर्गेनाइजर, ये जब आप उठाते हैं तो कहाँ जोड़ते हैं और किस तरीके से आप इन चरित्रों को जोड़ते हैं आप?
1: देखिए, ये ड्राइवर एक प्रकार से सत्ता का एक अंग है, इसलिए उसके लिए वो सब कुछ बहुत सरल है जो कि दासगुप्ता के लिए बड़ा कठिन है। सत्ता का एक अंश होते हुए भी क्योंकि वो निम्न मध्य वर्ग का है, तो किसी न किसी रूप में वो उसके दर्द को समझता है, दर्द को समझ रहा। हालांकि उसे संगीत में कोई रुचि नहीं है ड्राइवर को, लेकिन उसको ये जब वो देखता है कि सर्दी में एक आदमी बाहर बैठा है, इतनी देर हो गई है और इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं अंदर जा सकूं, तो उसके मन में उसके लिए सहानुभूति पैदा होती है। मतलब सहानुभूति आयोजक के मन में नहीं होती है, इस ड्राइवर को एक मानवीय आधार के ऊपर ये लगता है कि हम अगर इसकी सहायता कर सकेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो वो जाता है, वो उसकी सहायता करता है, उसको पास ला कर देता है। और कहानी ये भी स्थापित करती है कि देखिए, जेन्युइन आदमी के लिए जो कुछ पाना इतना मुश्किल है, तो एक आदमी के लिए वो सब पाना कितना आसान है। अगर वो पावर से जुड़ा हुआ है, उसने दो तीन नाम लिए, तो आयोजक जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो गए।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब।
2: अभी आप प्रतिष्ठित कहानीकार असगर वजाहत की लिखी कहानी सरगम कोला पर आधारित नाट्य रूपक सुन रहे थे। वाचन स्वर दलजीत सचदेवा का था और भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोड़ा, संजय वर्मा, सिद्धार्थ, हिम्मत सिंह नेगी, नितिन भसीन, राजकुमार नाहटा, नीलाक्षी, शालू सिंह और मनाल सईद। प्रस्तुति सहयोग किया हरदीप सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता थे विनोद कुमार।

अभी आप सुन रहे थे रूपक, कहानी ऐसे बनती है। प्रस्तुति थी विनोद कुमार की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं जमीर काजमी के कलाम के साथ। गुलुकारा हैं अनुराधा पौडवाल।

अनुराधा पौडवाल के गाए इस नगमे के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं पयाम सईदी का कलाम, फनकार हैं चंदन दास।

हरिहरन की गाई इस गजल के बाद आइए सुगम संगीत कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं तलत अजीज की गाई गजल।

नदी यानी जीवन धारा, जिसकी गोद में सदियों से पोषित और विकसित होती रही है मानव सभ्यता और संस्कृति, जिसके किनारे साक्षी हैं इतिहास के। स्थापत्य की विशिष्ट शैलियों का जहां होता रहा है जन्म और निर्मित होते रहे हैं हमारे पूजा स्थल, ज्ञान के खुलते रहे हैं चक्षु और पाते रहे हैं लोक से परलोक तक के रहस्यों की दिव्यताएं। नदी न केवल देती है जीवन मनुष्यों को, बल्कि माँ की तरह पालती है जगत के सभी प्राणियों और वनस्पतियों को। नदी का अर्थ मात्र बहता पानी नहीं है, पुरातन से नूतन के विभिन्न जीवन स्वरों की राग मालिका है नदी।

0: जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
1: भारत उपखंड की सात महानदियों में से एक है गोदावरी। पुराण प्रसिद्ध है कि मानव के जीवनहार के लिए इसे पृथ्वी पर लाए महर्षि गौतम। पश्चिम की घाटियों में एक छोटा सा गांव है त्र्यंबकेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर भी एक है। महाराष्ट्र में नासिक से 28 किलोमीटर दूर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ वही है ब्रह्मगिरी। गोदावरी का उद्भव यहीं हुआ।
2: जय देव मंगलमूर्ति।

0: सुंदरकाय कपालमाला शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय कर्पूर महामंगल निरांजन दीपम दर्शयामि।
1: अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं यहाँ।
2: महर्षि गौतम ने कोसों दूर से आकर ब्रह्मगिरी पर्वत पे कुटिया बनाई और कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए। महर्षि ने कहा,
3: हे प्रभु, आपकी जटा से गंगा माई की एक और शाखा प्रवाहमान हो।
4: तब करुणामय शिव जी ने आनंद का तांडव किया और अपने जटाजूट ढीले कर एक पतली सी धार छोड़ी। शिव जी का आशीर्वाद है गोदावरी।
2: महर्षि गौतम के बारे में एक और कथा कही जाती है।
4: इस प्रदेश में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। महर्षि गौतम ने अपनी तप शक्ति से खेत जोतकर अनाज पैदा किया और सभी को भोजन कराया। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने एक दुबली गाय उनके खेत में चरने के लिए छोड़ दी। महर्षि ने उस पर एक कुश चलाया, गाय मर गई। गो हत्या के पाप से बचने के लिए उन्होंने घोर तप किया। उस पाप को धोने के लिए स्वयं गंगा जी को उपस्थित

0: स्थित होकर उस स्थान से बहना पड़ा।
1: गौतम महर्षि की ये गंगा ही गोदावरी बनी। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि और वशिष्ठ सात शाखाओं में गोदावरी को आगे लाए। धवलेश्वर के सामने ये नदी दो शाखाओं में बट गई, पूरब में गौतमी, पश्चिम में वशिष्ठा, और वहां से फिर दो शाखाएं होकर पूरब में सागर से संगम।
2: नमस्कार राजेश दीक्षित जी, हम लोग पर्यटक हैं। गोदावरी नदी के जन्मस्थल से लेकर सागर संगम तक की यात्रा हमारा उद्देश्य है। ब्रह्मगिरी मंदिर आपका आराधना स्थल है, कृपया हमें जानकारी देंगे?
3: महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय है जो सबसे मान्यता प्राप्त है। हर 12 बरस में इधर एक कुंभ मेला होता है जहां साधु लोग अपने आध्यात्मिक अनुभव आपस में बयान करते, आपस में चर्चा करते हैं, उसको कुंभ मेला कहते हैं। इधर ब्रह्मगिरी पर्वत है, उसको प्रदक्षिणा लगाते हैं श्रावण महीने में। ये जो त्र्यंबकेश्वर आद्य ज्योतिर्लिंग है, इसी ज्योतिर्लिंग को राजा ये पदवी है। यहाँ गौतम ऋषि ने जहाँ तपस्या की है वो भी मंदिर है। तो ब्रह्मगिरी जो शिखर है ब्रह्मगिरी पर्वत का, उससे गोदावरी का उगम स्थान है। इधर पेशवे है जो पहले बालाजी विश्वनाथ पेशवे, उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और तब से वो चालू हो गया था। श्रीमंत माधवराव पेशवे उनके काल में ये पूरा हुआ। ऐसा सभी वारकरी संप्रदाय हो या नाथ संप्रदाय हो या वामाचारी तांत्रिक संप्रदाय हो, सब संप्रदाय इस भूमि से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मदेव की पूजा सिर्फ यही होती है। अपने हिंदू धर्म में ब्रह्मदेव की पूजा कभी नहीं करते, लेकिन इधर वो इस लिंग में ब्रह्मदेव की पूजा होती है। दूसरी बात ऐसी कि शिवलिंग को हम प्रदक्षिणा नहीं लगाते, लेकिन यहाँ शिवलिंग में तीनों भी देव है, विष्णु और ब्रह्मा, त्रिगुण स्वरूप है ये त्र्यंबकेश्वर। तो इसलिए इसे आद्य ज्योतिर्लिंग, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबक राज कहते हैं।
4: ये है कुशावर्त। गंगा द्वार से निकली गंगा कुशावर्त पहुंचकर ही तो गोदावरी बनी।
2: ये है केदारेश्वर। लगभग 300 साल पहले ये मंदिर बनाया गया था।

0: शुक्ल यजुर्वेद का पाठ चल रहा है। ये गंगा गोदावरी का मंदिर है। हमने सुना है कि यहाँ माघ शुक्ल दशमी को गोदावरी का जन्मदिन मनाया जाता है। 12 दिनों का उत्सव।
1: अगला उत्सव 11 जनवरी 1991 को होगा। लाखों लोग आते हैं उत्सव देखने। मानव मानव के बीच ऊंच नीच का भेदभाव न हो, यही है नाथ परंपरा का मौलिक उद्देश्य। सुप्रसिद्ध नाथ परंपरा का जन्म त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ था।
2: गोदावरी के पावन जल से पल्लवित और सिंचित है नासिक, युगों से पवित्र। कृतयुग में ये पक्षनगर था, त्रेता में त्रिकंटकम, द्वापर में इसे नवशिखा कहा गया, जो समय के साथ बदलते बदलते नासिक बन गया। गोदावरी का पूर्व तट पंचवटी कहा जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करते समय मनाया जाता है कुंभ। कहते हैं
3: एक बार गरुड़ जब अमृत कुंभ को भूमि पर ला रहे थे, तब उसमें से 4 बूंदें भूमि पर गिर पड़ी थी। जहां वे 4 बूंदें पड़ी उनमें नासिक भी एक है, बाकी 3 हैं हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन, और इन्हीं स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है।
4: रामकथा प्रसिद्ध है पंचवटी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को यहीं विरूप किया था। यहाँ पांडवों और बुद्ध की गुफाएं

0: नासिक जितना अतीत के लिए प्रसिद्ध है उतना ही आधुनिक तीर्थों के लिए भी। तुमने ये जानकारी अपनी डायरी में लिख ली है ना? आओ अब हम लोग करेंसी प्रेस देखने चलेंगे।
1: और हाँ, थर्मल पावर स्टेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कारखाना अपनी अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। कहते हैं नासिक जिले में 100 से अधिक बड़े उद्योग हैं।
0: गोदावरी नदी पर एशिया का दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध सॉइल डैम बनाया गया है जो 10 किलोमीटर दूरी पर है। इसे ही गंगापुर डैम कहते हैं।
1: अब यहाँ से हमारी यात्रा का अगला पड़ाव होगा पैठण।
0: पैठण में हमें मिलना है आचार्य ब्रह्मानंद देशपांडे जी से। ये इतिहास के विद्वान हैं।

0: गाथा सप्तशती विश्व का पहला संकलित काव्य संग्रह है। अपने राज प्रासाद में बैठकर गोदावरी के तरंगों को निहारता हुआ वह महाराष्ट्र प्राकृत में झूम झूम कर गाता था, सच्चम भण गोला वई पूव समुद्रेण सहिया संति सालाहण कुल सद्धसम जईते कूले कूलमत्थी। सच बोलो गोदावरी, तू पूर्व समुद्र तक बहते जाती है, क्या सातवाहन कुल जैसा पराक्रमी और वैभवशाली एक भी राजकुल तेरे तीरों पर बसा हुआ है? यह थी सातवाहनों की विजय गाथा। यह भूमि संतों की है, यह भूमि योद्धाओं की है, भट्टोजी दीक्षित जैसे वैयाकरणों की है जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पर टीका लिखी। यह भूमि चित्रकारों की है, लेकिन इन खंडहरों से गुजरते हुए एक भावना मन में जाग उठती है कि एक समय था कि जब पैठन समूचे महाराष्ट्र का केंद्र था, एक समय था जब पैठन समूचे भारतवर्ष का केंद्र था, एक समय था जब पैठन समूचे यूरोप और आशिया खंड का केंद्र था।
1: पैठन यानी मंदिरों का नगर, सात वाहनों की राजधानी, प्रतिष्ठान नगर, अनेक विभूतियों की जन्मस्थली। सन 1533 में स्वामी एकनाथ का जन्म यहीं हुआ था। कोई 700 वर्ष पहले चक्रधर स्वामी यहां पधारे थे और महानुभाव पंथ की स्थापना की थी। नदी के किनारे पहले बनते थे मंदिर और अब बन रहे हैं बांध और कारखाने, जो समृद्धि और विकास के चरण हैं। पैठण बांध के अलावा मजलगांव और दुधना बांध भी हैं। लगभग 4,60,000 एकड़ में सिंचाई की जाने लगी है। सिंदपण, पून और दुधना आकर यहीं गोदावरी में मिलती हैं। नांदेड़ होकर गोदावरी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बहती है और पोलवरम के पास मैदान में प्रवेश करती है। धवलेश्वरम के पास आकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, गौतमी और वशिष्ठा।
2: कहते हैं देश में तीन स्थानों पर ही सरस्वती के मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर बासरा आदिलाबाद में है। मूर्ति रेत की बनी है।
3: कालेश्वर महाक्षेत्रम को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र में गोदावरी उत्तर की ओर से मुड़कर सीधी पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। अर्धचंद्राकार दृश्यावली बड़ी मनभावन लगती है और द्राक्षारामम का भीमेश्वर, श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन मंदिरों के साथ कालेश्वर के मंदिर के कारण ही इस प्रदेश को त्रिलिंग देशम भी कहा जाता है।
2: रामावतार के 25 क्षेत्र स्थानों में भद्रगिरी प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ श्री आदि शंकराचार्य भी पधारे थे।
1: गोदावरी के किनारे किनारे अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का स्थापत्य हमें अपने गौरवशाली अतीत से साक्षात्कार कराता है।

0: पहाड़ी लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इनकी 33 जातियां हैं। अधिकारियों को कक्षाओं के आयोजन के द्वारा इनसे परिचित कराया जाता है। हमारा एक ऐसा विभाग भी है जो ये देखता है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है अथवा नहीं, क्योंकि कई गैर पहाड़ी लोग भी पहाड़ी होने का प्रमाण पत्र पाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे भी उनके समान लाभ प्राप्त कर सकें। शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष योजना आरंभ की गई है। आश्रम पाठशालाएं खोली गई हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी तरह से तैयार कराया जाता है।
1: आर्थिक योजनाओं की जानकारी लेते हैं श्री विद्यासागर से।
2: आर्थिक अभिवृद्धि पथकाल ने पद्धति प्रकार जरूरतनी मोटमोद गिरीजन मागान समाराधन अने कार्यक्रम कभुत्व भूमि ने दिन चूसी कोलची वाल पटा भूमि।
3: सरकार ने अनेक आर्थिक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। भूमि और उसके पट्टे देना, भूमि को उपजाऊ बनाना, कुएं, गहरे कुएं, तालाब आदि से लिफ्ट सिंचाई की सुविधा देना, 3 से 5 वर्ष तक उनकी देखभाल के लिए खर्चा भी सरकार देती है। रेशम उद्योग के लिए बगीचे लगाए जाते हैं, उनकी आमदनी बढ़ सके और रोजगार के नए अवसर मिल सके, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। 15 वर्षों के लिए योजनाएं बनाते हैं।
4: अपरिचित से परिचित होने का सुख कितना मधुर होता है, ये हम गोदावरी की यात्रा के समय ही जान सके हैं। हमारे साथ संस्मरणों की अनेक डायरियों की पूंजी इकट्ठी हो गई है
1: और आज हम अपने आप को संपन्न समझ रहे हैं, क्योंकि हम जान सके हैं अपना अतीत और वर्तमान। इस महान नदी के तट पर विकसित हो रही सभ्यता को अपनी आंखों देखा और किए हमने हिमालय से समुद्र तक की एकता के दर्शन। जिसे किताबों में पढ़ते रहे उसे सामने देखने का सुख सचमुच वर्णनातीत है।
5: ओम अधात पंचांग रुद्राणाम ओंकार मंत्र संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं तस्मै नकाराय नमो नमः ओम बोध वसुवः ओम नम हम कंठं नयनम।
4: गोदावरी के साथ साथ हम भी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आंखों के सामने सागर संगम के मनोहारी चित्र तैर रहे हैं।
1: लेकिन हमारी यात्रा का अगला पड़ाव तो है कुवुरु। शैव से वैष्णव की ओर मुड़ेंगे अब हम यहाँ। मेरा मतलब है कि गौड़ीय मठ चलेंगे और वहाँ हम नादल्ला वेंकटराव जी से मिलेंगे।
4: इस स्थान की विशेषता क्या है?
1: चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधारे थे और 10 दिन तक रहे थे।
4: अच्छा, तो चलो

0: రాధాకృష్ణుల యొక్క సమ్మిళితావతారమైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభువు
1: जब श्री चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते हुए यहाँ आए थे तब श्री रामानंद रायलू जो कि महान भक्त थे उनके साथ उनकी 10 रातों तक चर्चा हुई। विषय था मानव जीवन की सार्थकता क्या है। प्रश्न करते रहे श्री चैतन्य महाप्रभु और उत्तर देते रहे श्री रामानंद। मधुर भक्ति बड़ी महान है। यहाँ गुरु रूप गोस्वामी ने मठ की स्थापना की 1932 में। तब से पौराणिक विषयों पर चर्चा चलती है और पुस्तकों का प्रकाशन होता है।
2: यही पास में स्थित है खाद का कारखाना। यहाँ से कॉस्टिक सोडा का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। पास ही रॉकेट ईंधन उत्पादन करने वाला कारखाना है जिसका विशिष्ट स्थान है।
3: पट्टी सादृश क्षेत्र नास्ति ब्रह्मांड नमो देवो श्री वीरभद्र नमो देवो न भूतो न भविष्यति।
4: पट्टी क्षेत्र का पौराणिक महत्व भी है। काकतीय राजा प्रताप रुद्र और बाद के रेड्डी राजाओं ने इस क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं।
2: और राजमहेंद्री का नाम आते ही श्री विष्णुवर्धन महाराज से लेकर विजयनगर राजाओं के नाम उभरने लगते हैं।
4: टी प्रकाशम पंतुलु जैसे नेता, कवि श्रीपाद श्री कृष्णमूर्ति शास्त्री, महान कहानीकार श्रीपाद सुब्रमण्य शास्त्री, उपन्यास लेखक चिलकमर्ति लक्ष्मी

0: सिंहम न्यायपति सुब्बाराव पंतुलु इसी क्षेत्र की देन है।
1: आदि कवि नन्नया ने महाभारत का तेलुगु अनुवाद भी तो यही किया था। गोदावरी के जल को छूती हवाओं ने अनेक सृजनकारों और विभूतियों को पल्लवित किया है।
0: मेरा मन गौतमी ग्रंथालय देखने को कर रहा है।
1: हमें मन की बात जरूर सुननी चाहिए। चलिए चलते हैं।

0: येशुदास जी, आप इस गौतमी ग्रंथालय के अध्यक्ष हैं, हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए ना।
1: राजमहेंद्र लो कवि वीरेशलिंग अनुचरुलैन नाळं कृष्णाराव गारु स्थापिंचिन వీరేశలింగ గ్రంథాలయం, వసురాయ గ్రంథాలయం, రత్నకవి గ్రంథాలయం వంటి ఎన్నో గ్రంథాలయాలను
0: రాజమహేంద్రి మే నాళం కృష్ణారావు జీ నే సన్ 1898 మే ఇస్కి స్థాపన కీ। बाद में इसमें अनेक ग्रंथालय मिल गए। यहाँ लगभग 56,000 ग्रंथ हैं, तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी के। मुगल राजाओं के जमाने में छपा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, संस्कृत बाइबल, अमूल्य पुरानी पत्रिकाएं, ताड़पत्र पर ग्रंथ, ब्रजभाषा में लिखे कबीर अभंग की प्रति आदि उपलब्ध हैं। रीडर्स एसोसिएशन के अंतर्गत यहाँ गोष्ठियों का आयोजन होता रहता है।
2: पुरातत्व के संबंध में जानकारी के लिए हम किससे मिलें?
3: पुराकालीन अनुसंधान संघ के सचिव श्री यादगिरी नरसिम्हा राव जी से।
0: नमस्कार नरसिम्हा राव जी, सुना है यहाँ खुदाई हुई थी और उसमें अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं।
4: అనేక సంవత్సరాల నుంచి అనేక విధాలుగా పురావస్తు సేకరణ జరుగుతోంది। ముఖ్యంగా
5: कई सालों से यहाँ पुराकालीन वस्तुओं का संग्रह हो रहा है। यहाँ के सरकारी म्यूजियम में अनेक अनुपम कालखंड हैं, शिलालेख और ताम्रलेख भी हैं, सुंदर मूर्तियाँ भी हैं। कोई 10 वर्ष पूर्व खुदाई में अद्भुत नंदी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, काकतीय राजाओं के जमाने की। दूसरी शताब्दी के एक बौद्ध विहार का भवन भी हमें मिला है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का एक औजार भी मिला है।
0: अरे इस ओर तो देखो, जीव कारुण्य संघ। चलो भीतर चलकर देखते हैं।
3: नमस्कार श्रीमती रमन चौधरी, हम लोग पर्यटक हैं, गोदावरी दर्शन के लिए निकले हैं। आपकी संस्था का बोर्ड पढ़ा तो जानने की जिज्ञासा हुई।
6: पवित्र गोदावरी तीरंलो राजमंड्रिलो गौतमी जीवकारण संघं 1940 संवत्सरंलो स्थापिंचबडिंदि। मुख्यंगा अनाथल सेव, कुष्ठरोगुल सेव, अनाथ प्रेत संस्था।
7: 1940 में इसकी स्थापना हुई। अनाथ लोगों की सेवा, कोढ़ियों की सेवा, अनाथ शवों का दाह संस्कार, बाढ़, तूफान, आग, दुर्घटना आदि विपत्तियों के समय राहत देने और समाज निर्माण के काम चलते रहते हैं। सर्वधर्म समानता का प्रचार हमारा मुख्य उद्देश्य है। नारी कल्याण और सामाजिक वन योजना आदि कार्यक्रम भी चल रहे हैं। अनाथ, वृद्ध आदि के लिए चिकित्सा और भोजन की सुविधाएं भी दी जाती हैं।
8: गोदावरी पर धवलेश्वर के पास बना बांध अपनी विशेषता लिए हुए है। 1852 में ये बांध बनकर तैयार हुआ था। इसे सर आर्थर कॉटन की कल्पना का साकार रूप कहा जाता है।
0: लोग उन्हें आधुनिक भगीरथ कहते थे। नया बांध बन जाने के बाद पुराने बांध के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं। गोदावरी की यात्रा भी दर्शाई गई है।
3: और महान इंजीनियरों श्री विश्वेश्वरैया, के.एल. राव और एन.जी. के मूर्ति के तैल चित्र भी लगाए गए हैं। ये भी बताया गया है कि उन दिनों कैसे परिस्थितियों में ये बांध बनाया गया था। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर श्री वेंकट रेड्डी से प्राप्त करते हैं कुछ और जानकारी।
9: आनेकट निर्माणम तो गोदावरी डेल्टा प्रांतम पंट पोलाल तो सस्यश्यामलमैंदि। गोदावरी तूर्पु डेल्टा 258,000, गोदावरी मध्य डेल्टा।
10: बांध के निर्माण से गोदावरी का डेल्टा उपजाऊ हो गया है। धान मुख्य उपज है, ईख और केले के बगीचे हैं। अकेले धान की पैदावार लगभग 35 लाख टन तक पहुंच गई है, जिसका मूल्य कोई 600 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है।
8: करीब 150 वर्ष पुराने इस बांध के पास ही नया बांध बनाया गया है, जो 1989 में बनकर तैयार हुआ। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर करीब 100 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है।

0: दक्षिण भारत में इस तरह का प्रयोग पहली बार यहीं किया गया है।
1: गोदावरी यात्रा का एक भाग कोटिपल्ली में समाप्त हुआ। हाँ, तो अब हमारी यात्रा का अगला चरण आरंभ होता है।
0: यानी अब हम कोनसीमा मंदिरों के घर में हैं और यहाँ से पहुँचेंगे मुक्तेश्वर में।

0: चारों तरफ धान के खेत और नारियल के पेड़ नजर आ रहे हैं। कहते हैं यहाँ उत्तम खादी भी बनती है।
1: और एक अनोखी बात देखी, पता ही नहीं लगता कि एक गांव की सीमा कब खत्म हो गई और दूसरे की शुरू।
0: मेरी डायरी में लिखा है कि नरसापुरम में बुनाई का काम बहुत अच्छा होता है। श्री सत्यनारायण को लेस मेकर अवार्ड मिला है। चलो उनसे मिलकर बात करते हैं।
2: लेस में हमारा दर्जा अव्वल है। हमने यूरोप में नया मार्केट बनाया। करीब 1.5 करोड़ रुपए के माल का हम निर्यात करते हैं। हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि है।
1: श्री आरामम चालुक्य और पल्लव राजाओं के शिल्प के वैभव का प्रतीक है यहाँ का गोपुर। ये गोपुर राज्य के देवालयों में सबसे ऊंचा है। कहते हैं ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी ने यहाँ तप किया। यहाँ सागर और वशिष्ठा गोदावरी का पवित्र संगम होता है। माघ शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ भगवान का कल्याण मनाया जाता है। लाखों लोग यहाँ आते हैं।
3: ओम अदात पंचांग रुद्रानाम ओंकार मंत्र
1: ब्रह्मगिरी से निकली गोदावरी ब्रह्म के तप स्थल तक कल कल करती आती है और समुद्र से मिलन करती है। समुद्र के भीतर कोई 4 मील दूरी पर होता है महोत्तम संगम। ये दृश्य नीले आकाश और नीले समुद्र जल के मिलन की परछाई दिखाने वाले दर्पण सा लगता है। गोदावरी की यात्रा अतीत से वर्तमान की यात्रा, सभ्यता और संस्कृति के विकास और ज्ञान की यात्रा।

अभी आप सुन रहे थे रूपक कल कल गोदावरी FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास

0: प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals. Our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral